0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: गुरुवार 25 जून की सुबह हो चुकी है और इस वक्त ठीक 5 बजे है.
4: Rise and shine. Start.

0: Rise and shine. Start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: क्या गाना है वो भी लता जी की आवाज में नैनों में बदरा छाए बिजली सी चमकी बिजली तो चमक नहीं रही है लेकिन हाँ गीतों की बारिश शुरू हो चुकी है वो तो कभी खत्म होती भी नहीं है सो लेट मी विश यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स नीतू का प्यार भरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें सुबह के 5:04 और ये पहला गाना हमने नजर किया उस महान शख्स के नाम जिन्होंने इन ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे गीतों को कंपोज किया द ग्रेट अनफॉरगेटेबल मदन मोहन साहब जो संगीतकार रहे आज भले ही इतने सालों बाद भी ना रहे लेकिन उनके गाने तो अमर हैं और हमेशा रहेंगे तो चलिए आज काफ़ी बॉलीवुड स्टार्स के बर्थडेज हैं बारी बारी से आपको बताते चलेंगे लेकिन सुबह सुबह मदन मोहन की जो संगीत रहे जो गज़ल शहजादे उनको कहा जाता था उनके गीतों में वो जो खनक थी सुनकर दिल खुश हो जाता और सुकून भी मिलता तो बस इन सुकून भरे पलों में आपका भी हम स्वागत करते हैं आपके मैसेजेस सैकात नफ नफ दोस नफ काट पर

0: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
1: Radio Musti.
2: अभी तो जिंदगी शुरू हुई है, सो मरने की बात ना करें. जब वक्त आएगा तब वक्त आएगा. 5:12. चलिए जी, मदन मोहन की बात चल रही है. सुरों के शहंशाह, जी हाँ, हिंदी फिल्म संगीत के उन महान संगीतकारों में से एक थे जिन्होंने अपनी मधुर धुनों और दिल को छू लेने वाली रचनाओं से संगीत की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई थी. उनका पूरा नाम वैसे मदन मोहन कोहली था और उनका जन्म आज ही यानी कि 25 जून लेकिन 1924 को हुआ था. और बचपन से ही उन्हें संगीत से गहरा लगाव था और यही लगाव आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली म्यूजिक डायरेक्टर्स में शामिल कर गया. बस उनके गाने एक दो शामिल कर रही हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली 12 से 2 के बीच रेट्रोरिदम में स्पेशल आप उनके गाने सुन पाएंगे. तब तक विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग. यहाँ पर है कौन? धीरज, आयुष, विधि, शाश्विन, ज्योति, हरक परिवार, मौदार. वैसे थैंक यू सो मच शीला जी, गाने आपको अच्छे लग रहे हैं. फ्रॉम लेस्पेरांस ट्रिबुशे, अ वेरी गुड मॉर्निंग. नमस्कार आपको भी. टोनी जी फ्रॉम होशबुआ, आज आप कहते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स कैन बी लाइटेड फ्रॉम अ सिंगल कैंडल एंड द लाइफ ऑफ द कैंडल विल नॉट बी शॉर्टन. हैप्पीनेस नेवर डिक्रीजेस बाय बीइंग शेयर्ड. ये तो सच्ची बात है, जितना प्यार बांट सकते हैं बांटिए, तभी तो प्यार और बढ़ता है ना. गुड मॉर्निंग आपको. छुगालाल परिवार गुडलैंड से है. ज्योति एज यूजुअल फ्रॉम शतुबिनागस. आशनी, रेखा, सुरेखा, माधव परिवार, नमस्कार जी. गाना गुजार टुमाए, हाँ टी एन गातो आपके लिए भी आनी. चलिए एंजॉय कीजिएगा अपने टी एन गातो को. एंड यहाँ पर बिलवड पापा के नाम फ्रॉम पूनम जी टू रोय फैमिली है थ्वाबुचिक यूनियन वेल से. पापा का नाम क्या है? वैसे पापा का आज बर्थडे है और अगर हो सके तो माय डियर पूनम पापा का नाम भी भेज दीजिए, वो भी खुश हो जाएंगे. सुजीत रंगलाल फ्रॉम थ्वाबुचिक, प्लीज प्ले द नेक्स्ट गाना टू रंगलाल परिवार, गोपी परिवार, मंगरू और बिसेसा परिवार. वाई नॉट, आप ही तो हमारे परिवार हैं. सो 5499 1294 पर.

0: वही तो जो जुबां बयां कर नहीं पाती है वो नजरें बयां कर जाती है। 5:25 आज हम सेलिब्रेट कर रही है द बर्थडे ऑफ द ग्रेट मदन मोहन साहब। चलिए थोड़ी बहुत बातें उनके बारे में और जानते हैं।
1: Rise and shine, start fresh, stay sharp, wake up with the world. Welcome to RM2
2: Radio Musti.
0: उनके अनगिनत क्लासिक्स जैम्स में से बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो आज हम आपको चला रही हैं, सुना रही हैं। And 5499-1294 पर आप ही अपने मैसेजेस भेजते रहिए अपनों के नाम पैगाम। सो मदन मोहन को खास तौर पर गजलों के बादशाह के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने ऐसे अनेक अमर धुनें रची हैं जो आज भी म्यूजिक लवर्स के दिलों में बसी हुई है। उनकी धुन जो थी उनमें शास्त्रीय संगीत की मिठास, भावनाओं की गहराई और सबसे जरूरी सुरों की पवित्रता का अद्भुत संगम देखने को मिलता रहा। इसी वजह से उनके गाने समय की सीमाओं को पार करके आज भी उतने ही लोकप्रिय, इतने ही पॉपुलर हैं जितने अपने दौर में थी। और उनकी सबसे सफल जोड़ी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के साथ ही बनी अनगिनत गाने उन्होंने गाए और लता जी ने मदन मोहन के कई अमर जो कंपोजिशंस को अपनी मधुर आवाजों से सजाए। लग जा गले, नैना बरसे रिमझिम, आपकी नजरों ने समझा, वो भूली दास्तान और जरा सी आहट, गाने तो अनगिनत हैं और ऐसे गीत आज भी संगीत के अनमोल रत्न माने जाते हैं। और इन गानों को सुनते ही मन को एक अलग ही, जो इसे कहते हैं ना, फीलिंग्स दुनिया में हम खो जाते हैं, उसी दुनिया में खो जाते हैं। चलिए, तीन देवियां फिल्म से लिया गया दिस वन गुजार टू यू बोल, खास तौर से आपके नाम अब्दुल, सारा बानू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, प्रणाम आपको भी भाई सूरज शर्मा सजादा एंड फैमिलीज फ्रॉम मथियले, नमस्कार आप फैमिली, गुड मॉर्निंग फ्रॉम होशनवा।

और इस प्यार भरे रुत में आप भी हमारे हम सफर बने हुए हैं. थैंक यू सो मच हेमलता भजन. पीमा से अब लवली मॉर्निंग टू यू. पति के नाम, बेटियां, बहनें, भाई, फ्रेंड्स, फैमिलीज, सब के नाम. एंजॉय माय डियर. थैंक यू सो मच प्रेमिला जी. और प्लंदी पपाई से हैं आप पूरे परिवार पति रंजीत के नाम. और यहाँ पर है कौन, काहोलिन से. वेल, काहोलिन से तो हाँ डेफिनेटली आप हैं. मिस्टर गुलाब जगा सिंह, सभी परिवार

परिवार के नाम माला आत्मानंद एंड द सहदेव परिवार के लिए भी. सो हियर यू आर, नेक्स्ट गाना आपके लिए एंड सभी फैंस के लिए, सभी लिसनर्स के नाम, सभी दोस्तों के नाम. ऑल्सो फॉर यू सरोज, राजन, पूनम, मोनिका, पल्लवी, कैथकुबोन से एंड स्टे मोटिवेटेड. ये हुई ना बात, बस मन को आप साफ रखें, दिमाग को साफ रखें, अपनी जुबान को साफ रखें, सोच अच्छी तो सब कुछ अच्छा. कुमार देवी चंद एंड फैमिली, थैंक यू सो मच माय डियर. बस थोड़ी देर में आपका हॉरोस्कोप.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी शुरुआत करते हैं आपके साथ.
2: एरीज मेष राशि.
1: आज का दिन आपके लिए समृद्धि और नई उम्मीदों को लेकर सौगात लेने आने वाला है. जिम्मेदारियां भले ही बढ़ती हुई महसूस हो लेकिन

0: आपके भीतर का आत्मविश्वास हर चुनौती को अवसर में बदलने की क्षमता रखता है। किसी नए काम की शुरुआत का विचार मन में आ सकता है और यदि कदम भविष्य में लाभ का कारण भी बन सकता है। घर में मेहमानों की चहल पहल से रौनक बनी रहेगी।
1: टॉरस वृषभ राशि।
0: और वाइट आज भाग्य आपकी मेहनत को पहचान दिलाने में यानी कि मदद कर सकता है। समाज में आपके कार्यों की चर्चा होगी, सम्मान मिलने के योग बन रहे हैं। आपकी समझदारी और अनुभव आज कई मुश्किल रास्तों को आसान बना देंगे। छोटी यात्रा का योग भी बन सकता है जो केवल सफर ही नहीं बल्कि किसी लाभदायक अवसर का द्वार भी साबित हो सकती है।
1: जेमिनी मिथुन राशि।
0: आज सितारे आपको संतुलन का महत्व समझाने वाले हैं। आय और खर्च के बीच तालमेल बनाकर चलेंगे तो मन भी शांत रहेगा और परिस्थितियां भी आपके अनुकूल होती चली जाएंगी। किसी यात्रा का या फिर मुलाकात के दौरान किसी ऐसी जानकारी आपको मिल सकती है जो आगे चलकर बड़ा लाभ देगा। वैसे स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल ना करें।
1: कैंसर कर्क राशि।
0: आज का दिन सफलता और सावधानी दोनों का संदेश लेकर आया है। एक और कार्यक्षेत्र में उपलब्धि मिलने की संभावना है तो दूसरी ओर स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। धन कमाने के मामले में सही मार्ग ही आपके लिए शुभ रहेगा। कोई ऐसा काम जो लाभदायक पूरा हो चुका है अचानक अटक सकता है, लेकिन धैर्य रखने से स्थिति संभल भी सकती है।
1: लियो सिंह राशि।
0: और आज धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। परिवार में कुछ छोटी मोटी उलझने मन को विचलित कर सकती हैं, लेकिन आपकी समझदारी हालात को संभालेगी। किसी को वादा करने से पहले सोच विचार अवश्य करें। अधूरे कामों को टालना आज नुकसानदायक हो सकता है। आर्थिक मामलों में भी आप सावधानी बरतें, विशेषकर यदि किसी को धन उधार देने की बात हो तो।
1: वर्गो कन्या राशि।
0: आज का दिन आपको सोच समझकर कदम बढ़ाने की सलाह देता है। जोखिम भरे फैसलों से दूरी बनाए रखें, समझदारी इसी में है। कोई सरकारी कार्य लंबे समय से रुका हुआ था तो उसमें प्रगति दिखने यानी कि देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ काम आखिरी समय में अटक भी सकते हैं, दैट्स व्हाई धैर्य बनाए रखें। और यहाँ पर परिवार में किसी शुभ आयोजन की तैयारी घर को खुशियों से भर सकती है।
1: लिब्रा तुला राशि।
0: योजनाबद्ध तरीके से किया गया हर प्रयास सफलता के करीब ले जाएगा। आज रियल एस्टेट या फिर संपत्ति से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभकारी दिखाई दे रहा है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप साहस के साथ नए डिसीजंस ले पाएंगे। सरकारी योजनाओं में निवेश लाभदायक साबित हो सकता है और वाहन से जुड़ा कोई खर्च अचानक सामने आ सकता है, इसलिए आर्थिक संतुलन बनाए रखें।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आज कुछ लोग आपकी राह में बाधाएं खड़ी करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास और सूझबूझ उन्हें सफल होने नहीं देंगे। लंबे समय से चली आ रही किसी चिंता से आपको राहत मिलेगी। संतान के भविष्य को लेकर मन में हल्की चिंता बनी रहेगी, लेकिन जल्द ही सकारात्मक संकेत मिलने भी लगेंगे। स्वास्थ्य में विशेष रूप आंखों का आपको ध्यान रखना होगा।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: आज आपकी वाणी ही आपका सबसे बड़ा आकर्षण होगी। लोग आपके व्यवहार और विचारों से प्रभावित होंगे। करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं और नई नौकरी का प्रस्ताव भी मिल सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा, अन्यथा बाद में परेशानी महसूस हो सकती है। वैसे दूसरों के मामलों में ना अनावश्यक दखल देने से आपको बचना होगा।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: आज व्यापार और करियर दोनों क्षेत्रों में आपके लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपके कार्यों की सराहना होगी, पहचान में वृद्धि होगी। हालांकि कोई महत्वपूर्ण डील अंतिम समय में अटक सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। समय और धन का सही उपयोग करना आज बेहद जरूरी रहेगा।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: वेल, आज का दिन ऊर्जा, उत्साह और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रतिभा लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगी। वाहन चलाते समय बी वेरी केयरफुल। बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और परिवार के साथ

0: बिताए गए ये पल यादगार बन सकते हैं। वैसे नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध भी हो सकती है।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: फाइनली आज खुशियां जैसे आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली

0: सामने आती हैं तो इसे स्वीकार करना ही रिश्तों को मजबूत बनाएगा. विश यू अ लवली डे अहेड, बेस्ट गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक.
1: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती.

ऑलरेडी 5:53 छह बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार. ओम साई राम. आशा करती हूँ आप ठीक है. बिल्कुल ठीक हो. थैंक यू सो मच माय डियर सोनम होला. गाना आपकी एंजल्स अभिषा अश्विनी मॉम आपके सिस्टर्स भाई पूरे परिवार के लिए. नमस्कार जी. गुड मॉर्निंग. प्लीज नेक्स्ट गाना बलजो परिवार फ्रॉम प्रदीप पपाई अनीता राकेश एंड बच्चों हैं बच्चे हैं सिद्धिता और आपके सभी डियर वंस के नाम. पदेलास्का से है जश का बर्थडे. बेस्ट विशेष टू यू फ्रॉम ममा निष्ठी पापा निजल दादा ऋषि दादी सीता नक्श ज्ञाना स्वीति अवी ट्वींस है बेबी भाविया एंड आपके पूरे परिवार के नाम. बस ऐसे ही साथ निभाते रहिएगा.

दिल तो बार बार ऐसे गाने ढूंढते ही रहते हैं और ना 14th जुलाई 1975 को मदन मोहन साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके सुर आज भी अमर हैं। उनकी धुनें हर पीढ़ी को अपनी तरफ आकर्षित करती आ रही है और ये साबित करती है कि सच्चा संगीत कभी पुराना होता नहीं है। सो नॉट टू फॉरगेट 12 से 2 के बीच स्पेशल मदन मोहन साहब और भी बर्थडेज हैं, बताएंगे थोड़ी देर में।

0: मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते।
0: Radio Musti. The time is brought to you by McDonald's.
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
0: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
4: Radio Musti.
5: North. South.
4: 103.5.
5: East. West.
4: 96.4.
5: Center.
4: 99.4.
6: RM2 Radio Musti.
0: Radio Musti.
6: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
7: 6 baje hai. Sundar Sankshipt Samachar aapse Aditi Shubh namaskar aapko.
8: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। राष्ट्रीय सभा में कल बजट बहसों के दौरान एक बार फिर स्टेट एज पेंशन का मुद्दा केंद्र में रहा। जूनियर पर्यटन मंत्री सिद्धिपिया ने यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करने के विचार का विरोध किया। हालांकि उन्होंने मॉरिशनों की खरीद शक्ति बेहतर करने के लिए व्यवसाय और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे कदमों की सराहना की। बजट बहसों में कल भाग लेते हुए विदेश मंत्री रितेश्याम फल ने एमएसएम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई एक नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है। उनके अनुसार

0: पिछली सरकार ने कई कदम मात्र सत्ता पर बने रहने के लिए उठाए थे। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम में देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने का साहस है। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर है, लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपने हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में उच्च सार्वजनिक ऋण, प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए की धीमी वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन का उल्लेख किया है। इस साल के लिए आर्थिक वृद्धि 3% पर रहने का अनुमान है, जो 2025 में 3.2% पर थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, वेनेजुएला में एक के बाद एक भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर पहले की तीव्रता 7.2 और दूसरे की 7.5 अंकों की मापी गई। कई इमारतें ढह गई हैं, लोगों को तुरंत बाहर निकलने के आदेश दिए गए। अधिकारियों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 पार करने का खतरा बना हुआ है। वेनेजुएला में राष्ट्रीय छुट्टी होने के कारण ज्यादातर लोग घर पर थे जब ये भूकंप पेश आए। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर रह रहकर हमारे इलाके पर पड़ेगा। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। रात के दौरान भी कुछ पूर्वी और सेंट्रल प्लाटू वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज हो सकती है और बादलों के गरजने की भी संभावनाएं हैं। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा और विजिबिलिटी कम हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 3.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:45 पर सूर्योदय, शाम को 5:40 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Rise and shine. Start fresh. Stay sharp. Wake up with the world. Welcome to RM2.
2: Radio.

धीरे धीरे बट श्योरली आप ही हमारे दिल के मेहमान नहीं, आप तो हमारे अपने ही बन चुके हैं। 6:09 वंस अगेन गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। रियली होप योर थर्सडे मॉर्निंग आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। एंड जितने भी लोग काम पर निकल चुके हैं, जस्ट बो को हाश टू यू बोल, यू हैड योर ब्रेकफास्ट ना, और ब्रेकफास्ट के बिना आप घर से ना निकले, पेट भरा तो कंसंट्रेशन भी सही तरीके से आप फोकस कर पाओगे स्टडीज में, अपने काम में, एंड मूड भी एकदम अच्छा रहता है। सो सर्दी का मौसम है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और इन गानों के जरिए आपके मन को सुकून दिलाने की कोशिश भी कर रही है। वैसे मदन मोहन साहब का बर्थडे तो है, लेकिन आपकी प्यारी सी बेबू बेबू बेबू बेबू नो लुलु, बेबू की बड़ी बहन लुलु का आज बर्थडे है, उर्फ करिश्मा कपूर। लगे हाथ उनके सभी फैंस की तरफ से उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस इन बॉलीवुड, कपूर खानदान की बेटी का आज बर्थडे है भाई। इतने सारे खूबसूरत गाने हैं, सुनते रहेंगे दिन भर। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स।

लकी वी आर ना, लेजेंड्स हमेशा जिंदा रहते हैं, भले उनका शरीर ना रहा हो लेकिन हाँ उनके गाने उनका काम हमेशा सराहा जाता है। थैंक यू सो मच। 6:13, वेल 5:49, 9:12, 9:04 पर आपके मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर कहा जाता है प्लीज़ नीतू अगला गाना गुजार टू माई फैमिली दूधी काफी प्यादे ख्याल से एंड रघु जना परिवार। Also for you, Anj, Pompon Jose, and Mama Rekha ke liye, and to you too, Lalita Jitin.

टेंशन काई को लेने का मैं हूं ना, सभी आरजेस है ना, रेडियो मस्ती है ना आपके साथ. सो आई फील व्हेन वी आर हियर आपके साथ. थैंक यू सो मच. अ वेरी गुड मॉर्निंग आपको. यहाँ पर है कौन? कविता. एंड थैंक यू सो मच मेविन, आपको हैप्पी बर्थडे जीजू फ्रॉम वाइफ निष्ठी, तीशा, तीश, मोमिंदिरा, सास है नीता, चाची नायमा, ब्रो इन लो करण, शिक्षाना निसिस है साथ में, आरव, अभिषय, आहान, शिक्षाना, मोताबा से आपके पूरे परिवार की तरफ से ढेर सारा प्यार. एंड ऑफ कोर्स आपको भी हैप्पी 18th बर्थडे प्रिंसेस साध्विका, रामधनी अब खौबे, श्रेयस, सिमरन, रविश, प्रीशा, लवशा, सभी डियर वंस की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार. बस 6:30 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार बुलेटिन.

नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। राष्ट्रीय सभा में कल बजट बहसों के दौरान एक बार फिर स्टेट एज पेंशन का मुद्दा केंद्र में रहा। जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया ने यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करने के विचार का विरोध किया। हालांकि उन्होंने मॉरिशनों की खरीद शक्ति बेहतर करने के लिए लागू किए जा रहे कदमों की सराहना की। विदेश मंत्री रितेश रामफल के अनुसार मौजूदा सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई एक नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम में देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने का साहस है। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर, लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान बैंक ऑफ मॉरिशस

0: ने अपनी हालिया स्टैटिस्टिक बुलेटिन में सार्वजनिक ऋण प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए की धीमी वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन का उल्लेख किया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वेनेजुएला में के बाद 1.72 और 7.5 अंकों की तीव्रता वाले भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए। मरने वालों की संख्या 10,000 पार करने का खतरा। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय सभा में कल बजट बहसों के दौरान एक बार फिर स्टेट एज पेंशन का मुद्दा केंद्र में रहा। जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया ने यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करने के विचार का विरोध किया। हालांकि उन्होंने मॉरिशनों की खरीद शक्ति बेहतर करने के लिए व्यवसाय और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे कदमों की सराहना की। उनको सुनते हैं।
1: Même si notre pédagogie n'est pas ce qu'elle devrait être, notre communication a encore beaucoup de chemin à faire, mais personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a un ministère aujourd'hui qui lutte pour le pouvoir d'achat. Les subsides, le prix qui ont été réduits, tout, il y a la liste, 3 documents déposés. Donc il faut reconnaître les efforts qui sont faits ici et là.
0: बजट बहसों में कल भाग लेते हुए विदेश मंत्री रितेश रामफल ने एमएसएम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई एक नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है। उनके अनुसार पिछली सरकार ने कई कदम मात्र सत्ता पर बने रहने के लिए उठाए थे। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम में देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने का साहस है। उनको सुनते हैं।
2: C'est nous qui avons maintenant cette folle politique et financière d'apporter des changements dans le système de pension afin d'assurer sa pérennité financière pour nos aînés et pour les générations futures. On doit, Madame la Présidente, saluer le courage et la compréhension du Premier ministre. Malgré qu'il le sait que cette décision pèsera lourd sur sa politique de consolidation fiscale, et qu'il doit maintenant difficilement défendre ce budget devant les institutions internationales. Il a décidé de geler cette réforme sur la pension.
0: National Trade Union Confederation की तरफ से पेंशन सुधार योजना और मींस टेस्टिंग की धारणा की कड़ी आलोचना की जा रही है। कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ गोपी ने इस बात की निंदा की कि समस्त जनता को प्रभावित करने वाले इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पर्याप्त स्पष्टता नहीं दी है। उन्होंने कहा कि बजट 2026-2027 एक स्पष्ट रोड मैप की तरह होना चाहिए जो ये दर्शा सके कि सरकार ने जनता की अपेक्षाओं और मांगों को ध्यान में रखा है या नहीं। नरेंद्र नाथ गोपी ने साथ ही बजटीय फैसलों खासकर संचालन कमेटी से संबंधित फैसलों में कुछ गैर निर्वाचित लोगों की भागीदारी पर भी सवाल उठाए हैं। आदरणीय वाले विधिमा से बोलन।
3: Oui, au Pédiamal, il coûte beaucoup bien en solution. Mais pas tout nier leur investissement. Pénant pour augmenter qu'est-ce qui ne n'a de consolidated fund qui paye BRP.
4: निवेश पर कोई बात नहीं की गई है। बीओपी की पेमेंट के लिए कंसोलिडेटेड फंड में पाए जाने वाले पैसे की वृद्धि नहीं हो पा रही है। विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए। हमें कृषि में निवेश करना चाहिए। हमारे आसपास एक समृद्ध मंडी है। कुछ चयनित सेक्टरों में निवेश किया गया। सरकार एयरपोर्ट में 2.7 बिलियन रुपए निवेश कर रही है। फोबाक से हवाई अड्डे तक जाने के लिए 2 बिलियन रुपए निवेश किए जा रहे हैं। जमीन रिहैबिलिटेशन के लिए 100 मिलियन रुपए निवेश किए गए हैं। क्या ये सब मॉरिशस के बजट में योगदान देगा? अंतर्राष्ट्रीय निवेश का होना जरूरी है।
0: बजट 2026-2027 में ब्लू इकोनॉमी को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। हालांकि घोषित किए गए कुछ प्रावधान सर्वमान्य नहीं बताए जा रहे। गैर सरकारी संगठन एकोसिड के अध्यक्ष सेबास्टियन सोवाज के अनुसार इस सेक्टर के विकास के लिए किए गए प्रस्ताव पर्याप्त नहीं है। उनका मानना है कि इनमें व्यावहारिक दृष्टिकोण की कमी है। सुमेरा अकबर अली।
5: Gouvernement Pérévine avec un projet aquaculture dans lagon. Ce peuplan pour mettre 20 la ferme dans nos bannes lagon. Nous rappelle qu'est-ce gros fish.
6: सरकार लगूनों में एक्वाकल्चर परियोजना को अमल में लाने का इरादा रखती है। वो हमारे लगून

0: कानूनों में फार्म्स लगाना चाहती हैं। ऐसे में हम गोफिश मामले को याद करते हैं जब अदालत ने पर्यावरण से जुड़े खतरों के चलते जानकारियों की कमी का उल्लेख किया था। होटलों और नागरिकों के अलावा सी यूजर्स एसोसिएशन को भी चिंता है। आज सिविल सोसाइटी समुद्र में औद्योगिकीकरण संबंधी रणनीति नहीं चाहता है। एक्वाकल्चर से जुड़ी सभी नई परियोजनाओं पर एक मोरेटोरियम की मांग कर रहे हैं जब तक एक सार्वजनिक और आजाद राष्ट्रीय मूल्यांकन न किया जाए।
1: मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर है, लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपने हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में उच्च सार्वजनिक ऋण, प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मॉरिशन रुपए की धीमी वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन का उल्लेख किया है। इस साल के लिए आर्थिक वृद्धि 3% पर रहने का अनुमान है, जो 2025 में 3.2% पर थी। यादव विधि मासी बोरन।
2: बैंक ऑफ मॉरिशस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस की अर्थव्यवस्था 2026 में भी वृद्धि जारी रखेगी, हालांकि इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी रहने की संभावना है। इस वर्ष आर्थिक वृद्धि दर 3% रहने का अनुमान है, जबकि 2025 में ये 3.2% थी। उसी दस्तावेज के अनुसार मार्च 2026 के अंत तक मॉरिशस का सकल सार्वजनिक ऋण लगभग 675 बिलियन रुपए आंका गया है। ये आंकड़ा सार्वजनिक वित्त की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक बना हुआ है। एक अन्य संकेतक रुपए से जुड़ा है, ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बेहतर स्थिति में रहा है, लेकिन यूरो और ब्रिटिश पाउंड सहित अन्य मुद्राओं के मुकाबले इसमें गिरावट दर्ज की गई है। उपभोक्ताओं के लिए महंगाई भी एक महत्वपूर्ण संकेतक बनी हुई है। मई 2026 में ये लगभग 4% के आसपास रही। इसका मतलब है कि कीमतों में वृद्धि अभी भी महसूस की जा रही है, हालांकि ये पहले के अधिक तनावपूर्ण समय की तुलना में कम है।
1: व्यापार को बढ़ावा देना और स्थानीय महिला ठेकेदारों के कौशल का प्रदर्शन करना, ये नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल द्वारा कल आयोजित बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग एंड नेटवर्किंग इवेंट का उद्देश्य रहा। पोर्ट लुइस में आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिला ठेकेदार एकत्रित हुई। उन्हें अपनी पैदावारें और सेवाएं प्रस्तुत करने और साथ ही अपने पेशेवर नेटवर्क का विस्तार करने का मौका मिला। प्रस्तुतियों के अलावा ये गतिविधि भावी सहयोग तथा विकास की नई संभावनाओं के एक संयुक्त मंच के रूप में सामने आई। हर साल 25 जून को विचिलिगो से ग्रस्त लोगों के खिलाफ भेदभाव की रोकथाम के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समस्या के तहत प्रतिरोधक कमियों के चलते त्वचा का डीपिगमेंटेशन होता है और इसका प्रभाव शारीरिक से ज्यादा मानसिक होता है, क्योंकि कई बार इससे पीड़ित लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर विचिलिगो मॉरिशस फाउंडेशन ऐसे लोगों के समर्थन के लिए कार्यरत है। मुख्य रूप से उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। साथ ही इस फाउंडेशन ने हाल में परिवहन मंत्रालय से विचिलिगो से पीड़ित लोगों को अपनी गाड़ी में टिंटेड शीशे लगाने की अनुमति देने की मांग की। विस्तार जेनी येलापा और विधि मासी बोरन के साथ।
2: ये टिंटेड गाड़ियों के लिए एक नियम है और भूमि एवं परिवहन मंत्रालय के समक्ष एक प्रेजेंटेशन दिया गया है। एक अपवाद पाया जाता है, क्योंकि जिन लोगों को विटिलिगो है उन्हें सूरज की किरणों के संपर्क में नहीं आने चाहिए, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है।
1: सूखे की अवधि के दौरान देश में कई हिस्सों में पानी की आपूर्ति एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। देश का प्रमुख जलाशय माओवाकवा अपनी क्षमता का मात्र 43% ही भरा हुआ है। इस नाजुक स्थिति और लंबे समय से बारिश न होने के कारण CWA जलापूर्ति बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पानी के टैंकरों की व्यवस्था हो, वॉल्व का प्रबंधन हो या फिर कॉल सेंटर को मजबूत करना, बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए टीमें हर स्तर पर जुटी हुई हैं। पेश है विस्तार अब्दुल बोला की और करुणा लालू के साथ।
3: 43% ये माओवाकवा का वर्तमान जल स्तर है। ये स्तर चिंताजनक है, जो पिछले कई महीनों से वर्षा की कमी को दर्शाता है और पेयजल वितरण नेटवर्क पर भारी दबाव डाल रहा है। प्रन विलियम्स में स्थिति खास रूप से कठिन है। कई इलाकों में निवासियों को रोज

0: केवल 5 से 6 घंटे ही पानी सप्लाई की जा रही है। ओकुले में हमने CWA की एक टीम का अनुसरण किया जो निवासियों की सहायता के लिए तैनात हैं। इस पानी की टंकी के चालक के लिए कार्य दिवस लगातार लंबे होते जा रहे हैं। थोड़ा आगे उटन में CWA की तकनीकी टीमें वाल्वों का संचालन कर रही हैं ताकि जल का यथासंभव समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। इस व्यवस्था की एक और महत्वपूर्ण कड़ी CWA का कॉल सेंटर है। इस कक्ष में एजेंट लगातार शिकायतों, हस्तक्षेप मांगों और जलापूर्ति संबंधी मांगों का निपटारा कर रहे हैं। सौंद्रा शॉल ने कहा, ग्राहकों को सुनते हैं ये जानने के लिए कि उनकी शिकायत क्या है। इस असाधारण स्थिति का सामना करने के लिए CWA ने अपनी सभी टीमों को पूरी तरह सक्रिय रखा है। सुनील गोपाल ने कहा, 5 से 6 घंटे पानी देने का ये जो उपाय किया गया है, यदि इसे ठीक से प्रबंधित कर सकें, स्थिति में स्थिरता ला सकें, तो कुछ राहत होगी। वर्तमान में 43% जल स्तर में 15% कीचड़ है। ये जल भंडार सितंबर महीने तक के लिए
1: है।
0: अधिकारियों ने सामूहिक जिम्मेदारी की अपील की है। बचाया गया हर लीटर पानी जरूरी है, क्योंकि जब तक बारिश महोबाकवा जलाशय को फिर से नहीं भर देती, तब तक पानी का प्रबंधन मॉरिशस के हजारों परिवारों के लिए एक दैनिक चुनौती बनी रहेगी।
2: सनातन धर्म में गायत्री जयंती का पर्व अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माँ गायत्री के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि गायत्री माता की आराधना से जीवन में ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। ये विशेष रिपोर्ट विधि मासी बोलन के साथ।

गायत्री मंत्र केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक महाविज्ञान है। इसे महामंत्र कहा जाता है। इसके शब्दों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा समाहित है। इसका अर्थ है हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, तेजस्वी, श्रेष्ठ, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतर आत्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। ये मंत्र अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार गायत्री मंत्र की उत्पत्ति ऋषि विश्वामित्र द्वारा हुई थी। ये मंत्र वेदों का सार माना जाता है, इसीलिए इसे वेद माता कहा गया है। गायत्री जयंती के दिन भक्त ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और गायत्री मंत्र का जप करते हैं। इस दिन विशेष रूप से यज्ञ, हवन और सत्संग का आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया जप और ध्यान व्यक्ति के भीतर की नकारात्मकता को दूर कर उसे मानसिक शांति और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां मनुष्य तनाव और मानसिक अशांति से घिरा हुआ है, गायत्री मंत्र एक अचूक औषधि के समान है। ये एकाग्रता बढ़ाने, बुद्धि को कुशाग्र करने और

चरित्र निर्माण में सहायक हैं। गायत्री माता की साधना का मुख्य उद्देश्य सद्बुद्धि की प्राप्ति है, क्योंकि जब बुद्धि सही दिशा में कार्य करती है तो मनुष्य का जीवन स्वतः ही सुखमय और कल्याणकारी बन जाता है। गायत्री जयंती हमें आत्मचिंतन और आत्मशुद्धि का संदेश देती है। ये पर्व याद दिलाता है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है और सद्गुण ही मानव जीवन की असली पूंजी है। गायत्री माता की आराधना से न केवल व्यक्ति का कल्याण होता है, बल्कि समाज और राष्ट्र में भी सकारात्मकता का संचार होता है। इस दिन हमें अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश को प्रज्वलित करने का संकल्प लेना चाहिए।

बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। वेनेजुएला में एक के बाद एक भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर पहले की तीव्रता 7.2 और दूसरे की 7.5 अंकों की मापी गई। कई इमारतें ढह गई हैं। लोगों को तुरंत बाहर निकलने के आदेश दिए गए। अधिकारियों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 पार करने का खतरा बना हुआ है। वेनेजुएला में राष्ट्रीय छुट्टी होने के कारण ज्यादातर लोग घर पर थे जब ये भूकंप पेश आए। उधर कई यूरोपीय देश भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं। फ्रांस में कल तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिमी फ्रांस में 68,000 से ज्यादा मकान बिजली आपूर्ति से वंचित रहे। फ्रांस के आधे से ज्यादा शहरों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पारा 43 डिग्री सेल्सियस पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत हमारे इलाके पर पूर्व दक्षिण पूर्व से आ रहे बादलों का असर रह रहकर पड़ रहा है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। रात के दौरान भी कुछ पूर्वी और सेंट्रल प्लेटू वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज हो सकती है और बादलों के गरजने की भी संभावनाएं हैं। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा और विजिबिलिटी कम हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 3.50 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:45 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:40 पर सूर्यास्त होगा।

0: समाचारों के आखिर में सुर्खियां एक बार फिर राष्ट्रीय सभा में कल बजट बहसों के दौरान एक बार फिर स्टेट एज पेंशन का मुद्दा केंद्र में रहा। पर्यटन जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पियन ने यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करने के विचार का विरोध किया। हालांकि उन्होंने मोशनों की खरीद शक्ति बेहतर करने के लिए लागू किए जा रहे कदमों की सराहना की। विदेश मंत्री रितेश रामफल के अनुसार मौजूदा सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई एक नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिले हैं। साथ में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम में देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने का साहस है। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में वेनेजुएला में एक के बाद एक 7.2 और 7.5 अंकों की तीव्रता वाले भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए। देश विदेश की खबरों के साथ ये मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादिर हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शुभ समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

गली पोर्ट लुइस में 73 साल के 73 years old श्री त्रिलोक खेदू, श्री त्रिलोक खेदू जो सुरेश नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे के मकान नंबर 59 दौंतकास्तो गली पोर्ट लुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ले सालीन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। लक्ष्मण रोड ब्रिजेवियाजिया में, लक्ष्मण रोड ब्रिजेवियाजिया में 69 साल की 69 years old श्रीमती दमंती रिदोय, श्रीमती दमंती रिदोय पिताशी नाम तनकु जो मौसंगातु नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे इनके बेटे श्री लक्ष्मण रिदोय के मकान लक्ष्मण रोड ब्रिजे व्याजिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोंबों जो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। लॉट नंबर 18 मोसेलमा वियोरेस ऑर्जी में, मोसेलमा वियोरेस ऑर्जी में 82 साल की 82 years old की कुमारी इंद्रावती राम साहा, कुमारी इंद्रावती राम साहा जो गुमन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनकी रिश्तेदार श्रीमती गोइंदामा गोविंद के मकान लॉट नंबर 18 मोसेलमा वियोरेस ऑर्जी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू देयर हाफ ऑफ नून। एस एस ऑल इन ऑर्सेनाल में 45 साल की 45 years old श्री रोदी सीरतन, श्री रोदी सीरतन जो को कह नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 11 बजे इनकी अर्थी आज दिन की 11 बजे इनके मकान ऐसे सौली नौ सुनाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बमौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 11 AM। सविया जिलना स्ट्रीट रेजिडेंस रोजी लॉज 4 बोन में, सविया जिलना स्ट्रीट रेजिडेंस रोजी लॉज 4 बोन में 97 साल की 97 years old श्रीमती मुनावती दशरथ, श्रीमती मुनावती दशरथ पैदाशी नाम रामफल जो बिद्रा नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 9 बजे लाशा पैलोदौत एलियंसन रॉयल रोड बोबासन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए अले भैया का सेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। एक्स एयरपोर्ट रोड प्लेनमानियो में 90 साल की 90 years old श्रीमती देवलतिया लोकमन पिताशी नाम बिरिज जो बाबू नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान एक्स एयरपोर्ट रोड प्लेनमानियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लेनमानियो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। शोक में डूबे परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

6:56 इसी के साथ आज का ये सफर खत्म हो चला. बस थोड़ी देर में वेदिता के साथ मॉर्निंग बीट. हैव अ नाइस डे अहेड. स्टे सेफ. मुलाकात कल सुबह वापस 5 से 7 बजे के बीच. इन योर राइज एंड शाइन.

वर गुड मॉर्निंग जहां से भी आप साथ दे रहे हैं. सुबह के 7:05 हुए हैं. दिस इज विदिता विद यू. थर्सडे का दिन 25 जून. भाई ये वक्त तो बस निकल ही गया. जून महीना आंखों में देखते देखते कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला. कहां पहुंचे आप? वेलकम टू मॉर्निंग बीट विदिता के साथ.

सुबह के 7:25 हुए हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती पर आपका प्रोग्राम मॉर्निंग बीट। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, भूलिएगा नहीं कि अगर आप में से कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या तो फिर आप किसी को बर्थडे सरप्राइज करना चाहते हैं, उनका फोन नंबर, उनका नाम हम तक जरूर पहुंचाइए ऑन 5499912

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: भाई आज का मौसम देख के तो यही गाना का मन कर रहा है कि आज मौसम बड़ा बेईमान है। अब मुझे नहीं पता आप हमें कहां से सुन रहे हैं, जहां से भी सुन रहे हैं, प्लीज लेट मी नो ऑन 5491294। कमलदीप, गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेलकम। चलिए भाई, यहां पर भी काफी सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनको भी गुड मॉर्निंग कह देते हैं। तो नेक्स्ट गाना भाई नेक्स्ट होगा मान की तरफ से, उनकी वाइफ हिमा के लिए जो रहते हैं कैटरबोन, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ये है धनेश्वर, उनकी पत्नी सुनीता, साथ में है मीना, ऋषि, तहान, हंसवी एंड फैमिली जो इस समय हमें सुन रहे हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। चलिए अब इसी के साथ हम वेट कर रहे हैं कि आप हमें उनका नाम भेजे और उनका नंबर भेजे जिनको हम कॉल करके गा सके हैप्पी बर्थडे टू यू। कौन होगा जानेंगे थोड़ी देर में।
0: मॉर्निंग बीट
1: RM2 रेडियो मस्ती इन द मिक्स।
2: याद रखिए कि आज जो भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, जिन्हें लकी ड्रॉ में उनका नाम आएगा, उनको लोलो हाइपर मार्केट के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा, यानी कि उनकी तरफ से मिलेगा एक वाउचर।

0: A good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: न्यूज जैसा हमने आपसे कहा था कि हम अभी वेट कर रहे हैं कि कोई फ़ोन उठा ले. इतने सारे हमारे बर्थडे बॉयज बर्थडे गर्ल्स हैं जिनको हम कॉल करते हैं, वो फ़ोन उठाते नहीं है. लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हम कोशिश तो कर रहे हैं कि हम संगीता हरिराम जी से बात कर ले, लेकिन लगता है कि वो काफ़ी बिजी हैं. हो सकता है काम पर होगी, हो सकता है कि उनका जो फ़ोन है. एनीवे, संगीता हरिराम जो रहती हैं पीछे गाफ़े, उनका आज लकी ड्रॉ के बाद नाम आया है, जिसके चलते आज हमारी बर्थडे गर्ल हैं संगीता हरिराम जी. तो उनको हम कहेंगे हैप्पी हैप्पी बर्थडे हमारी पूरे रेडियो मस्ती टीम की तरफ से.

0: from Radio Masti.
1: And yes, संगीता जी को बहुत बहुत सारा प्यार and ढेरों शुभकामनाएं हैं यहाँ पर उनकी बेटी प्रिया और वर्षी सिल्विया और पिशकाफ़े and wishing you a great birthday. उम्मीद करती हूँ आज का दिन आपके लिए बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो और हर कोई चाहता है कि उनका जो बर्थडे है वो खास हो. तो आज का जो दिन है आपके लिए अपने फैमिली के साथ तो खास ही है, लेकिन लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से भी हम इसको स्पेशल बना रहे हैं. सो आपको मिल रहा है लोलो हाइपर मार्केट की तरफ से एक वाउचर जिसे आपको कलेक्ट करना होगा आज नहीं तो कल. और आपके पास बस दो दिन है अपने आईडी कार्ड के साथ. प्लीज एमबीसी आइए और अपना ये जो वाउचर है उससे एमबीसी से कलेक्ट कर लीजिए. हैप्पी बर्थडे.

0: Morning beat.
1: Oh God, one more remix.
0: A good beat for your morning show.
2: RM2 Radio Musti in the mix.
3: गाइस थोड़ी देर में हम बढ़ने जा रहे हैं स्पोर्ट्स न्यूज की ओर, क्योंकि अरविंद एकदम सेट हो गए हैं अपने खबरों के साथ। मिलते हैं इस गाने के बाद।

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: जी हमारे स्पोर्ट्स गुरु चलिए उनसे मिलते हैं. वैसे वो बात कर रहे थे ब्राज़ील मोरक्को और इनके अलावा एक और नाम जुड़ गया है ना. गुड मॉर्निंग अरविन.
4: गुड मॉर्निंग आपको. गुड मॉर्निंग RM2 लिसनर्स. द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. ब्राज़ील मोरक्को स्विट्जरलैंड कनाडा मेक्सिको और साउथ अफ्रीका नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई हुए. ग्रुप सी का टॉपर बना ब्राज़ील. ला सेलेसाओ ने 3-0 से स्कॉटलैंड को रफा दफा किया. विनिसियस जूनियर का डबल और माचुस कुन्हा का एक गोल. इसी ग्रुप में मोरक्को ने आईटी को 4-2 से हराया. फर्स्ट हाफ में स्कोर 2-2 था. अशरफ हकीमी, साइबागी, रहीमी और यासीन स्कोर कर पाए मोरक्को के लिए. जबकि 52 साल बाद आफ्टर 52 ईयर्स आईटी वर्ल्ड कप में गोल स्कोर कर पाया. एक ऑन गोल गोलकीपर बुनू का और एक विलियम इजिडो का. मोरक्को ग्रुप का रनर अप बनकर क्वालिफाई हुआ. आईटी को अलविदा जबकि स्कॉटलैंड को इंतजार करना होगा बेस्ट थर्ड प्लेस के लिए जो संडे तक पता चलेगा. ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराया. इस ग्रुप में वो टॉपर बना और कनाडा भी क्वालिफाई. पहली बार के लिए कनाडा की टीम वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज पार कर पाई. इसी ग्रुप में बोस्निया ने 3-1 से कतर को हराया. कतर का वर्ल्ड कप सफर पूरा हुआ. बोस्निया के पास 4 अंक है. बेस्ट थर्ड प्लेस से नॉकआउट राउंड में जाने की उम्मीद है पर इंतजार करना होगा क्योंकि 12 ग्रुप से केवल 8 बेस्ट थर्ड प्लेस स्पॉट है. ग्रुप ए में आज सुबह चेक रिपब्लिक आउट हुआ. मेक्सिको ने उसे 3-0 से हराया. मेक्सिको अभी तक वो मात्र टीम है 3 out of 3 वो भी बिना कोई गोल कंसीड किए. मेक्सिको के पास है 9 अंक और सरप्राइज सरप्राइज साउथ अफ्रीका ने साउथ कोरिया को 1-0 से हराया और अपने इतिहास में पहली बार के लिए साउथ अफ्रीका की टीम नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई हुई. साउथ कोरिया के पास 3 अंक है. उसे भी इंतजार करना होगा जाने के लिए अगले राउंड में बेस्ट थर्ड प्लेस के रूप में. आज के मैच ग्रुप ई में मिडनाइट किक ऑफ कुरासाओ आइवरी कोस्ट इक्वाडोर जर्मनी. यहां पर जर्मनी के पास 6 अंक है. क्वालिफाई है जर्मनी. आइवरी कोस्ट के पास है 3 अंक. इक्वाडोर के पास 1. कुरासाओ के पास 1. मतलब सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए आज के मैच निर्णायक डिसाइसिव होंगे. फिर कल सुबह 3 बजे एक ही समय ग्रुप एफ में जापान वर्सेस स्वीडन, ट्यूनिजिया वर्सेस नेदरलैंड्स. टाइट ग्रुप है ये क्योंकि नेदरलैंड्स के पास है 4 अंक, जापान के पास भी 4 अंक है और स्वीडन के पास 3 अंक. और कल सुबह 6 बजे ग्रुप डी में पाराग्वे ऑस्ट्रेलिया, जो जीतेगा क्वालिफाई तुर्की यूएसए के खिलाफ खेलेगा. यूएसए 6 अंक लिए क्वालिफाई है इस ग्रुप में. ऑस्ट्रेलिया और पाराग्वे के पास है 3-3 अंक. तुर्की के पास 1 भी अंक नहीं है. फ्रांस न्यूज. वेस्ट हैम यूनाइटेड के माचुस फर्नांडिस के लिए टोटनहम हॉटस्पर 85 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग देने के लिए तैयार है पर मैनचेस्टर यूनाइटेड भी रेस में है. दोनों क्लब बोर्नमुथ के एलेक्स स्कॉट को भी टारगेट कर रहे हैं. आर्सेनल भी एलेक्स स्कॉट को साइन करना चाहता है. एलियट एंडरसन के लिए मैनचेस्टर सिटी ब्रिटिश रिकॉर्ड ट्रांसफर फी देने के लिए तैयार है. एटलेटिको मैड्रिड अपने स्टार खिलाड़ी जूलियन अल्वारेज को ला लीगा राइवल्स बार्सिलोना और रियल मैड्रिड से नहीं बेचना चाहता. ऐसे में आर्सेनल का रास्ता खुल सकता है पर दाम गर्म होगा. क्रिकेट में वीमेन T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड की महिला टीम. आज टीम इंडिया का सामना बांग्लादेश से होगा. इनके ग्रुप में दोनों के पास 4-4 अंक हैं. सो दैट्स इट द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड. चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें. ब्राज़ील मोरक्को मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप. पहली बार के लिए वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में

0: नमस्ते, पेशवा भोजपुरी के समाचार। राष्ट्रीय सभा में काल बजट बहस के दौरान एक हलाफेरों से स्टेट एज पेंशन के मुद्दा केंद्र में रहल जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया। यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करे के विचार के विरोध करलन, हालांकि वो मॉरिशन लोग के खरीद शक्ति बेहतर करे खातिर व्यवसाय और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय दिनी से लागू करल जाए होला सब कदम की सराहना करले हवन। बजट बहस में भाग लेवे बखत काल विदेश मंत्री रितेश रामफल MSM की कड़ा आलोचना करलन। बोलन की मौजूदा सरकार के गल सरकार देने से छोड़ल गल एगो नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिलल बाटे। उनकर अनुसार गल सरकार कई गो ऐसन कदम उठले रहल जिमें वो खाली सत्ता परी बनल रही। वो एक संगे ही बोलन की प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय बकिर आवश्यक फैसला लेवे के साहस रखेलन। नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन देने से पेंशन सुधार योजना आर मीन्स टेस्टिंग के धारणा की कड़ा आलोचना करल जाता। काल एगो प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ गोपी ई बात के निंदा करलन की समस्त जनता के प्रभावित करे होला ई अत्यंत संवेदनशील मुद्दा पर ही प्रधानमंत्री पर्याप्त स्पष्टता नहीं दे रहे हवन। उबोलन की बजट 2026-2027 एगो स्पष्ट रोड मैप नियन हो के चाहत जे ई दर्शावे सकी कि सरकार जनता की अपेक्षा आर मांग के ध्यान में रख ले हा कि नहीं। नरेंद्र नाथ गोपी एक संगे ही बजटीय फैसला खासकर संचालन कमेटी से संबंधित फैसला में कादगो गैर निर्वाचित आदमियों की भागीदारी पर भी सवाल उठैले हवन। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर बाटे, बकीर 2026 खातिर एकर में हल्का कमी आवे के अनुमान बा। बैंक ऑफ मॉरिशस अपन हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में उच्च सार्वजनिक ऋण प्रमुख विदेशी मुद्रा के मुकाबला में मॉरिशन रुपया की धीमा वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन के उल्लेख कर लेवा। ये बरिस खातिर आर्थिक वृद्धि 3% पर रहे के अनुमान बाटे जे 2025 में 3.2% पर ही रहल। व्यापार के बढ़ावा देवे के और स्थानीय महिला ठेकेदार लोग के कौशल के प्रदर्शन करे के ई नेशनल वीमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल दिनी से काल आयोजित बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग आर नेटवर्क इवेंट के उद्देश्य रहल। पोर्ट लुइस में आयोजित ई बैठक में विभिन्न क्षेत्र में सक्रिय महिला ठेकेदार लोग एकत्रित होल हवन जा उ लोग के अपन पैदावार आर सेवा प्रस्तुत करे के और एक संग ही अपन पेशेवर नेटवर्क के विस्तार करे के मौका मिलल। दूसरा देश के खबर में वेनेजुएला में एक के बाद एक भूकंप के दुगो बड़ा झटका महसूस करल गल। रिक्टर पैमाना परी पहला की तीव्रता 7.2 अंक और दूसर का के 7.5 अंक के मापल गल रहल। एकर से कई गो इमारत ढह गल बा, आदमी लोग के तुरंते बाहर निकले के आदेश देवल गल। अधिकारी लोग के अनुसार मरे होला लोग की संख्या 10,000 ले पहुंचे के खतरा बनल बाटे। मलबा से आदमी लोग के निकाले की कार्यवाही चलावल जाता। वेनेजुएला में राष्ट्रीय छुट्टी होवे के कारण से जस्ती ले जस्ती जना घर पर रहलन जा जब ई भूकंप पेश आयल। त ई रहल भोजपुरी के समाचार, तो ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: L'habitude, ils avaient poussé en zé, multi time avec Formland.
3: Madame Sheila, mais petit déjeuner.
2: Asté, et nous céréales à boire Formland Family Céréales. Tac, tac, tac, le petit déjeuner ne paraît.
3: Ah, ben oui, Madame Sheila, ou toujours bien smot.
2: Mais non, mal. Et quand vous sortez du travail, ben appli réconfortant qui retrouve la famille, autour d'une ben bonne préparation avec Formland.
3: Mmh, ou fais-moi faire.
2: Asté avec Formland Hot Chocolate, la vie en complice, ta mam.
3: C'est à tout qui s'agose pour les cinq goûts. Passez.
2: Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
3: Asté avec Formland, nous gagnons encore beaucoup plus.
2: Formland, ça même nous, Smart Choice.
4: Morning Beat.
5: Oh God, one more remix.
4: A good beat for your morning show.
6: RM2, Radio Musty, in the mix.

बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेस बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो

0: Good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musty.
2: नदिया की बेटा बड़ी माड़ी माड़ी लो, मजा आया मजा आया होगा इस गाने को सुनने के बाद। आप लोग भी झूम रहे होंगे, स्पेशली जो लोग अभी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करने में भूल गए, ट्रैफिक है, अच्छी बात है। 8:11 हुए हैं, विनीता का साथ है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, स्वागत है आप सबों का हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है मॉर्निंग बीट, और हम लेकर आते हैं इसे आपके लिए रोज मॉर्निंग 7 to 9। और मैं विनीता आपके साथ हूँ। बाहर का मौसम देखा आपने? आज मौसम बेमान लग रहा है। अब मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ हूँ। ऐसा करते अदिति से जानते हैं, मिलते हैं उनसे।
0: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: आम हालत, पूर्व दक्षिण पूर्व से आ रही बादलों का असर रह रहकर हमारे इलाके पर पड़ेगा अगले 24 घंटों के लिए अनुमान। आज सुबह आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। रात के दौरान भी कुछ पूर्वी और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर रह रहकर बारिश तेज हो सकती है और बादलों के गरजने की भी संभावनाएं हैं। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा और विजिबिलिटी कम हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण

0: दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 3 मीटर 50 तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम 15 से 17, अधिकतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 19 से 21, अधिकतम 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:45 पर सूर्योदय, शाम को 5:40 पर सूर्यास्त होगा।
1: Your weather forecast on RM2.
2: Radio Musti.
3: C'est le moment que tout le monde attendait. La fièvre du foot débarque chez Winners avec des offres à ne pas manquer. Profitez d'offres exceptionnelles sur vos produits préférés. Les 250 grammes de croquettes Samoussa Spring Rose poulet ou poisson Mariga Jack à 84 roupies 95, et toute la gamme de déodorants Axe 24 heures à 138 roupies 95, et à l'achat de 400 roupies de la gamme Axe, recevez un déo Axe FIFA en cadeau. Et pour prolonger la victoire, rendez-vous au Winners de Goodlands samedi 27 juin de 9h à 17h pour notre grand déstockage et des prix qui marquent des points.
4: On est tous winners!

0: au défi de longs shifts. Commence par une bonne décision. Nescafé.
1: दोस्तों, इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। अब हर कोई तो परफेक्ट नहीं होता लाइफ में। गलती होना इंसान की फितरत है, लेकिन जानबूझकर गलत करना उनकी नीयत दिखाता है। गलती से सीखने वाला बेहतर बनता है और गलत को जानकर करने वाला अपना चरित्र कमजोर करता है। गलत होना यानी कभी कभी क्या होता है कि बिना इरादे के गलत फैसले या काम हो जाता है। अगर इंसान उसे समझे, स्वीकार करे और सुधारे तो वही गलती एक सीख बन जाती है। लेकिन जानबूझकर गलत करना, जब किसी को पता हो कि काम गलत है फिर भी अपने फायदे, गुस्से या अहंकार के लिए करे, तो वो सिर्फ गलती नहीं बल्कि नीयत की कमी होती है। गलतियों से शर्मिंदा मत हो, उनसे सीखो, लेकिन ऐसे नीयत से बचो जो सही और गलत का फर्क जानते हुए भी गलत रास्ता चुने।
0: Avant de défi, de long shift, de premier pas qui capable sens tous audi, il a toujours un pause, un souffle, un moment. Nescafé first. Après tout fait une différence. Li pas une simple tasse, li un nouveau départ, un nouveau l'énergie, un nouveau vision. Peu importe ta mission, peu importe ta question, commence par une bonne décision. Nescafé. De défi de long shift. Commence par une bonne décision. Nescafé.
2: Morning Beat.
3: James. RM2, Radio Musty in the mix.

और ये गाना खास तौर पे हम डेडिकेट करते हैं करिश्मा कपूर के सभी फैंस के लिए, क्योंकि आज करिश्मा कपूर बना रही है अपना बर्थडे। एक छोटी सी भेंट उनके सभी फैंस के लिए फ्रॉम द मूवी रिश्ते। एंजॉय करिए और डोंट फॉरगेट टू सेंड योर मैसेजेस ऑन 5491294। अरविंद से मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड कप स्पेशल मैगजीन।

0: It's the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
1: Get ready for the biggest World Cup ever!
2: 2026 FIFA World Cup.
1: पहली बार होंगी 48 टीम्स 104 मैचेस। रेडियो मस्ती की टीम के साथ चलिए यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और

0: लेट्स गो। जी हाँ, चलने का अभी समय हो गया है और अरविंद से मिलने का भी। अरविंद,
1: वर्ल्ड कप स्पेशल ऑन RN2। वैसे शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि ये वर्ल्ड कप स्पेशल है, अलग है।
0: या
1: और वैसे आप लोग गरिता, आप जादू टोना पर विश्वास करते हैं?
0: What?
1: कम से कम इस वर्ल्ड कप में ऐसा हो रहा है, ये मैं नहीं कोई और कह रहा है। अभी बाद में इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल काफी स्पेशल है क्योंकि साउथ अफ्रीका पहली बार के लिए वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई। मेक्सिको की टीम पहली बार के लिए 3 out of 3, वो भी बिना गोल कंसीड किए। कनाडा भी पहली बार के लिए वर्ल्ड कप के नॉकआउट राउंड में, और ब्राजील, मोरक्को, स्विट्जरलैंड तो आते जाते रहते हैं। सो ब्राजील, मोरक्को, स्विट्जरलैंड, कनाडा, मेक्सिको और साउथ अफ्रीका नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई हुए। ग्रुप सी का टॉपर बना ब्राजील। ला सिलेसाओ ने 3-0 से स्कॉटलैंड को रफा दफा किया। विनीसियस जूनियर का डबल और माचुस कुन्हा का एक गोल। इस ग्रुप में मोरक्को ने आईची को 4-2 से हराया। फर्स्ट हाफ में स्कोर 2-2 था। अशरफ हकीमी, साइबागी, रहीमी और यासीन स्कोर कर पाए मोरक्को के लिए, जबकि 52 साल बाद आफ्टर 52 ईयर्स आईची वर्ल्ड कप में गोल स्कोर कर पाया। एक ऑन गोल गोलकीपर बुनू का और एक विलियम इजीदो ने स्कोर किया। मोरक्को ग्रुप का रनर अप बन के क्वालिफाई। आईची को अलविदा, जबकि स्कॉटलैंड को इंतजार करना होगा। ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से हराया और ग्रुप में टॉप पोजीशन ले पाया। कनाडा भी क्वालिफाई पहली बार के लिए। और इसी ग्रुप में बोस्निया ने 3-1 से कतर को हराया। कतर का वर्ल्ड कप सफर पूरा हुआ। बोस्निया के पास 4 अंक है। बेस्ट थर्ड प्लेस से नॉकआउट राउंड में जाने की उम्मीद है, पर इंतजार करना होगा क्योंकि 12 ग्रुप से केवल 8 टीमें बेस्ट थर्ड प्लेस ले पाएंगी। ग्रुप ए में आज सुबह मेक्सिको ने चेक रिपब्लिक को 3-0 से हराया और साउथ अफ्रीका ने सरप्राइज साउथ कोरिया को 1-0 से हराया। साउथ अफ्रीका पहली बार के लिए नॉकआउट राउंड में पहुंची। मेक्सिको 3 out of 3, 9 points। साउथ अफ्रीका के पास 4 अंक, साउथ कोरिया के पास 3 अंक, वो भी क्वालिफाई हो सकता है बेस्ट 8 थर्ड प्लेस में, और चेक रिपब्लिक आउट, उसके पास केवल 2 अंक है। आज के मैच ग्रुप ई में मिडनाइट किक ऑफ, कुरासाओ आइवरी कोस्ट, इक्वाडो जर्मनी। जर्मनी के पास 6 अंक है क्वालिफाई। आइवरी कोस्ट के पास 3 अंक है, इक्वाडो के पास 1, कुरासाओ के पास 1। सो आज के मैच खासतौर पर आइवरी कोस्ट और इक्वाडो कुरासाओ के लिए निर्णायक होंगे, मतलब सेकंड और थर्ड प्लेस के लिए आज के मैच डिसाइसिव। फिर कल सुबह 3 बजे एक ही समय ग्रुप एफ, जापान वर्सेस स्वीडन, ट्यूनिशिया वर्सेस नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स के पास है 4 अंक, जापान के पास भी 4 अंक, स्वीडन के पास 3 अंक, ग्रुप टाइट है। और कल सुबह 6 बजे ग्रुप डी में पाराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, जो जीतेगा क्वालिफाई। टर्की, यूएसए, यूएसए की टीम पहले से ही क्वालिफाई है। ऑस्ट्रेलिया के पास है 3 अंक, पाराग्वे के पास 3 अंक। गाना, ये बात कर रहे थे जादू टोना, इस पर अभी बात करेंगे। वैसे ये खबर बता दें आपको, पेनाल्टी शूटआउट का नया नियम लागू करना चाहता है फीफा। अभी कॉइन टॉस से एक टीम चुनती है कहां पर पेनाल्टी शूटआउट हो, दूसरे ड्रॉ से पहला पेनाल्टी शूटआउट कौन लेगा ये डिसाइड होता है। फीफा के अनुसार अगर एक टीम दोनों टॉस जीतती है तो दूसरी टीम पेनालाइज होती है। ऐसे में एक प्रपोजल आया है कि पहला टॉस जीतने वाला कप्तान वो डिसाइड करेगा कि वो उसकी टीम पहला पेनाल्टी शूट आउट लेगा या कहां से लेगा। ऐसे में दूसरी टीम को एक मौका मिलेगा। ये नियम इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड इफाप के यहां रखा गया है, उसकी मंजूरी चाहिए। हाँ, गाना के डुक्ते लोकाल यानी ओझा, जादू टोना करने वाला, जिसने दावा किया था कि उसने हैरी केन को गाना के खिलाफ गोल स्कोर करने से बांधा था, कर्स्ड हैरी केन, अब उसने अपनी जादुई शक्ति को हटा लिया है। वर्ल्ड कप में विश्वास, अंधविश्वास सब होता है। गाना के खिलाफ सच में केन नहीं स्कोर कर पाया था, अब जब जादुई शक्ति हट गई, लेट्स होप केन गोल स्कोर करना जारी रखे। So that was the latest from the World Cup. I'll catch you this afternoon. Till then, have a wonderful time listening to Radio Masti.
0: Thank you so much, Arvind. आपने तो मुझे बस confusion में डाल दिया. जादू टोना जादू टोना आई डोंट नो मंजुली का है क्या.
2: It was the World Cup magazine on RM2 with Mighty.
3: Informelen, nous gagnons beaucoup plus.
4: RM2
5: Radio.

0: मॉर्निंग बीट वेदिता के साथ और रेडियो मस्ती पर थोड़ी मस्ती जरूर। अभी तो अरविंद बात कर रहे थे जादू टोना के बारे में, मंजुलिका मिलने आ गई हमसे, गुड मॉर्निंग बोल के आई और पहला काम तो उन्होंने ये बोला कि भाई एसी ऑफ करवा दो, यहाँ पे कितनी ठंडी है भला बोलो। मंजुलिका को अब ठंडी भी लगती है। मैंने बोला भाई आप की मॉर्निंग किस कैसे शुरू होती है, बोला मेरे लिए मॉर्निंग का मतलब नाइट का ओवर टाइम, यानी कि 4 बजे तक हॉन्टिंग करती है, फिर एक कप अदरक वाली चाय पीकर नेक्स्ट लोकेशन। मैंने बोला आप चाय भी पीती है, बोला बिल्कुल भूत हूँ रोबोट नहीं हूँ। और मैंने बोला ब्रेकफास्ट, बोला ब्रेकफास्ट में मैं सोशल मीडिया कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, इससे ज्यादा स्कैरी चीज आज तक नहीं देखी। वैसे वैलिड पॉइंट। हाँ, मैंने ये भी पूछा कि अगर किसी ने आपके बारे में लिखा कोई कमेंट, जैसे कि मंजुलिका इज ओवररेटेड, फिर तो कहते उसके घर का वाईफाई जो है 3 घंटे के लिए बंद कर देती हूँ। मैंने कहा रियली? बोला हाँ। मैंने बोला लोग आपसे सेल्फी मांगते हैं? बोला हाँ, उल्टे पैरों से आती हूँ, लोग बोलते हैं वन मोर पोस्ट प्लीज। चलो भाई, ये तो है मंजुलिका। अभी क्या ना कि अब हम आगे बढ़ेंगे। वैसे एक सवाल मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप बड़ी फिट लगती हैं, जिम जाती हैं? कहती हैं हाँ, मैं लिफ्ट यूज़ नहीं करती, सीधा दीवार पे चढ़ जाती हूँ। ये कहता है फिटनेस गोल्स। चलो आप भी अपने फिटनेस पे ध्यान रखो और हम भी रखते हैं। इसी के साथ थोड़ा मूड सेट करते हैं। कहते हैं एक्सरसाइज करो ना करो, अगर स्माइल करोगे ना तो चेहरे पे जो झुर्रियाँ हैं ना वो दूर हो जाती हैं। तो चलो स्माइल करो। ब्यूटीफुल मंडे है, गुड मॉर्निंग।
1: Morning beat. Oh God! One more remix. A good beat for your morning show.
2: RM2 Radio Musty in the mix.

0: good beat for your morning show. RM2
1: Radio Musti.
2: वेल काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो इससे में हमें सुन रहे हैं. वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं. यलेश राम, थैंक यू सो मच. सुई नाम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपको हमारे गाने अच्छे लग रहे हैं, जानकर अच्छा लगा. नेक्स्ट गाना होगा, ये है रिव्या जिपर्स से अंशनी. डेडिकेट करती हैं गाना फॉर फैमिली जो हैं श्रिया और यनेश, उनके लिए. और साथ में यहाँ पर आज बहन का बर्थडे है कल्याणी कौतूहल से, उनको बहुत सारा प्यार है. विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. और साथ ही साथ यहाँ पर बाकी और भी बहुत सारे दोस्त अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनको भी हम कहेंगे अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. यहाँ पर आज मॉर्निंग आपका ब्यूटीफुल बन रहा है हमारे गीतों के साथ, जानकर बहुत अच्छा लगा. चलिए जी, यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन है हमें सुन रहे हैं, उनके लिए गाना होगा. आनी चान आनंद एंड चंगदू फैमिली जो है साथ दे रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू.

भोपाल में भी काम करने वाले सभी लोग हमें सुन रहे हैं इसके लिए थैंक यू सो मच एंड वी हैव द नेक्स्ट गाना विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू साक्षी फ्रॉम दिवाशी याना इयान शमम रूबी एंड डैड धीरज और साथ में ये गाना जो है हम राखी के नाम डेडिकेट करना चाहेंगे जो इस समय हमें सुन रही हैं और हमारे गाने एंजॉय कर रही हैं

0: के लिए बहुत सारा प्यार है. विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे.
1: मॉर्निंग बीट.
2: ओह गॉड, वन मोर रिमिक्स.
1: A good beat for your morning show.
3: RM2, Radio Musti, in the mix.

0: God. One more remix.
1: A good beat for your morning show.
2: RM2, Radio Musti in the mix.
3: चलिए दोस्तों, जाने का समय हो गया है। मेरे बाद आ रही है निर्मली आपका साथ देने के लिए मॉर्निंग मस्ती में। मैं आपसे मुलाकात करूंगी मंडे, भूलिएगा नहीं, आप ही के प्रोग्राम में मॉर्निंग बीट ऑन रेडियो मस्ती।

0: राज्यसभा में कल बजट बहसों के दौरान एक बार फिर स्टेट एज पेंशन का मुद्दा केंद्र में रहा। जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पियर ने यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करने के विचार का विरोध किया। हालांकि उन्होंने मर्शनों की खरीद शक्ति बेहतर करने के लिए व्यवसाय और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे कदमों की सराहना की। बजट बहसों में कल भाग लेते हुए विदेश मंत्री रितेश रामफल ने एमएसएम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई एक नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है। उनके अनुसार पिछली सरकार ने कई कदम मात्र सत्ता पर बने रहने के लिए उठाए थे। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम में देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने का साहस है। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर है लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपने हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में उच्च सार्वजनिक ऋण प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मॉरिशन रुपए की धीमी वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन का उल्लेख किया है। इस साल के लिए आर्थिक वृद्धि 3% पर रहने का अनुमान है जो कि 2025 में 3.2% पर थी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कई यूरोपीय देश भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं। फ्रांस में कल तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिमी फ्रांस में 68,000 से ज्यादा मकान बिजली आपूर्ति से वंचित रहे। फ्रांस के आधे से ज्यादा शहरों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पारा 43 डिग्री सेल्सियस पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुआ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
0: And yes, पूरे जोश के साथ we are back आपके ही मस्ती मॉर्निंग शो के साथ. It's Nirmani, good morning. मेरे पहले थी वेदिता जिन्होंने उफ़ कैनर्जी के साथ आपको बूस्टअप किया. ना मेरी बारी है तो वॉल्यूम को भी ऑन कर दीजिए. 12 बजे तक इट्स योर मस्ती मॉर्निंग. रोज़कूप के साथ टिप्स भी होंगे एंड हाँ जी बाहर घुमाने भी ले जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड राइट हियर ऑन RM2 रेडियो मस्ती.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: मैं लापता। तू लापता। वैसे होशोहवास में लापता होना अच्छी बात होती है। कॉन्शियसली जो डिसीजंस हम लेते हैं, इट्स वेरी गुड टू मिक्स अप विद सम मस्ती। एंड आपको वही मस्ती फैक्ट देने के लिए आरएमचू रेडियो मस्ती यहाँ पर है। सो गुड मॉर्निंग, अगर आप अभी अभी कनेक्टेड हुए हैं हमारे साथ, एंड कुछ ही देर में इट्स गोना बी योर होरोस्कोप टाइम, तो यहीं पर ट्यून्ड इन रहना, चुनो कि आज का दिन कौन सा कलर नंबर आपके लिए शुभ है। अभी के लिए लेट्स डाइव राइट बैक इनटू द म्यूजिक।
0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए अभी टाइम हो चला है ये जानने के लिए कि आज के सितारे आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं. तो शुरुआत करते हैं विद
2: एरीज मेष राशि.
1: Well, आज आपका एनर्जी लेवल हाई रहेगा, लेकिन हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं होता. किसी छोटी बात को ईगो का इशू मत बनाइए. काम में एक अनएक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन मिल सकती है. लकी कलर आज आपके लिए है रेड और नंबर है 9.
2: टॉरस वृषभ राशि.
1: आज कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का दिन है. जो काम आप पोस्टपोन कर रहे थे उसे स्टार्ट कर दीजिए. फाइनेंशियल मैटर्स में पेशेंस रखिए. लकी कलर आज आपका है ऑलिव ग्रीन और नंबर है 6.
2: जेमिनी मिथुन राशि.
1: आज आपकी बातों में जादू होगा. नेटवर्किंग इंटरव्यूज या प्रेजेंटेशंस के लिए दिन अच्छा है. बस गॉसिप से दूर रहिए. लकी कलर आपका है स्काई ब्लू और नंबर है 5.
2: कैंसर कर्क राशि.
1: दिल और दिमाग के बीच चल रही टग ऑफ वॉर आज खत्म हो सकती है. फैमिली से जुड़ी कोई खुशी भी मिल सकती है. इमोशनल डिसीजंस जल्दी में ना ले. लकी कलर आपका है सिल्वर और नंबर आपका है 2.
2: लियो सिंह राशि.
1: स्पॉटलाइट आपकी तरफ आ सकती है, लेकिन असली लीडरशिप दूसरों को भी शाइन करने देने में है. आज कॉन्फिडेंस और ह्यूमिलिटी दोनों का बैलेंस रखिए. लकी कलर आपका है गोल्डन येलो.

0: नंबर है एक, वर्गो कन्या राशि। हर चीज परफेक्ट नहीं होती और आज यही लेसन मिल सकता है। छोटे मिस्टेक्स पर स्ट्रेस मत लीजिए, हेल्थ रूटीन पर भी फोकस करें। लकी कलर आपका है बेज और नंबर है 4।
1: लीब्रा तुला राशि।
0: आज किसी पुराने दोस्त या कलीग से इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो सकती है। रिलेशनशिप्स में भी क्लैरिटी आएगी, बैलेंस बनाए रखिए। लकी कलर आपका है लैवेंडर और नंबर है 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
0: आपकी इंट्यूशन आज बहुत स्ट्रांग रहेगी। किसी के वर्ड्स से ज्यादा उनके एक्शंस पर ध्यान दीजिए। सीक्रेट अपॉर्चुनिटीज भी सामने आ सकती हैं। लकी कलर आपका है मरून और नंबर है 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: एडवेंचर सिर्फ ट्रैवल नहीं होता, कभी कभी नए आइडियाज भी सफर होते हैं। आज कुछ नया सीखने का मौका है। लकी कलर आपका है पर्पल और नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: मेहनत का रिजल्ट धीरे धीरे दिखने लगेगा। आज किसी सीनियर या एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस काफी यूजफुल होगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी अच्छा दिन है। लकी कलर आपका है चारकोल ग्रे और नंबर है 10।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: आपका यूनिक सोचने का आइडिया आज किसी प्रॉब्लम का सलूशन बन सकता है। क्रिएटिव आइडियाज नोट करके रखिए, काम आएंगे बाद में। लकी कलर आपका है इलेक्ट्रिकल ब्लू और नंबर है 11।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: एंड फाइनली हमारे पाइसेस बडीज के लिए आज यूनिवर्स आपको थोड़ा स्लो डाउन करने को कह रहा है। अपने इंट्यूशन और इनर वॉइस को इग्नोर करते ही ना कीजिए। क्रिएटिव कामों में सक्सेस मिलेगी। लकी कलर आपका है समुद्री हरा और नंबर है 12।
2: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
2: And yes, आप कनेक्टेड हो चुके हैं मस्ती मॉर्निंग के सहारे ने इट्स नमनी। कुछ लोग ऑफिस तक पहुंचने के लिए रोड्स का सहारा लेते हैं और कुछ लोग अपनी ड्यूटी निभाने के लिए समंदरों को अपना रास्ता बना लेते हैं। आज है इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फारर एंड स्पेशल सल्यूट उन सभी हीरोज के लिए जो क्रूज शिप्स, कार्गो वेसल्स और मर्चेंट नेवी में काम करते हैं। जब हम हॉलीडेज एंजॉय करते हैं, क्रूजेस पर सफर करते हैं या दुनिया भर से

0: ड्रग्स हम तक पहुंचती है उसके पीछे हजारों सिफारिश की मेहनत होती है एंड देन रात तूफान हो या शांत समंदर घर से दूर रहकर भी वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी डेडिकेशन के साथ निभाते हैं सो हैप्पी सिफारे डे टू यू एंड नेक्स्ट गाना हम उन सभी लोगों के नाम करते हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड दिस वन गोज आउट टू यू
1: वेलकम टू आरएम2 मस्ती मॉर्निंग्स रेडियो मस्ती

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: 9:50 हुए हैं। गुड मॉर्निंग, अगर आप अभी भी कनेक्टेड हुए हो RM2 रेडियो मस्ती के साथ। एंड दोस्तों, बॉलीवुड की बात करें तो आज बॉलीवुड की ओरिजिनल स्टाइल आइकॉन और 90s की सुपरस्टार करिश्मा कपूर का बर्थडे है। राजा हिंदुस्तानी से लेकर दिल तो पागल है, बीवी नंबर वन और हीरो नंबर वन जैसी सुपरहिट फिल्मों से करिश्मा ने 90s को अपना कर दिया था। उनके गाने आज भी हर प्लेलिस्ट को फिट करते हैं, तो हो जाए आपके लिए एक रीमेक वाला वर्शन। सुबह है, आपको थोड़ी स्लीपी करा सकती है। सो हियर वी गो, वाइब करते हैं टू दिस नेक्स्ट सॉन्ग।
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned. Stay musty. Radio Musty.

0: to
1: Radio Musty.
2: इस गाने के साथ फर्स्ट आओ हमारा खत्म हुआ, मिलते हैं थोड़ी देर में संक्षिप्त समाचार के साथ।
3: तेरी अख कतल करे लख कतल, जदो मूव करे करे लख कतल, असला भी लोड करे टाले जा छे अखा नाल।

0: listening to Radio Misty.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Musti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Good morning, सुबह के 10 बजे है. चलिए अभी के लिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. आपसे अदिति नमस्कार.
6: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार. नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की तरफ से पेंशन सुधार योजना और मींस टेस्टिंग की धारणा की कड़ी आलोचना की जा रही है. कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ गोपी ने इस बात की निंदा की कि समस्त जनता को प्रभावित करने वाले इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पर्याप्त स्पष्टता नहीं दी है. उन्होंने कहा कि बजट 2026-2027 एक स्पष्ट रोड मैप की तरह होना चाहिए जो ये दर्शा सके कि सरकार ने जनता की अपेक्षाओं और मांगों को ध्यान में रखा है या नहीं. नरेंद्र नाथ गोपी ने साथ ही बजटीय फैसलों, खासकर संचालन कमेटी से संबंधित फैसलों में कुछ गैर निर्वाचित लोगों की भागीदारी पर भी सवाल उठाए हैं. बजट 2026-2027 में ब्लू इकोनॉमी को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है. हालांकि घोषित किए गए कुछ प्रावधान सर्वमान्य नहीं बताए जा रहे. गैर सरकारी संगठन इकोसिड के अध्यक्ष सेबास्टियन सोवाज के अनुसार इस सेक्टर के विकास के लिए किए गए प्रस्ताव पर्याप्त नहीं हैं. उनका मानना है कि इनमें व्यावहारिक दृष्टिकोण की कमी है. व्यापार को बढ़ावा देना और स्थानीय महिला ठेकेदारों के कौशल का प्रदर्शन करना, ये नेशनल विमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल द्वारा कल आयोजित बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग एंड नेटवर्किंग इवेंट का उद्देश्य रहा. पोर्ट लुइस में आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिला ठेकेदार एकत्रित हुई. उन्हें अपनी पैदावारें और सेवाएं प्रस्तुत करने और साथ ही अपने पेशेवर नेटवर्क का विस्तार करने का मौका मिला. और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, वेनेजुएला में के बाद एक भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर पहले की तीव्रता 7.2 और दूसरे की 7.5 अंकों की मापी गई. कई इमारतें ढह गई हैं. कम से कम 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. अधिकारियों के अनुसार मरने वालों की संख्या 10,000 पार करने का खतरा बना हुआ है. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो गया. दीजिए नमस्कार.
7: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Welcome to RM2
4: Musti Mornings Radio Musti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: लेकर हम दीवाना दिल आपके लिए हर जगह पहुंच जाते हैं. आपको बस ट्यून इन न करना है RM2 रेडियो मस्ती के साथ. नौ सौ कुछ ही देर में आपको स्टूडियो से बाहर ले जाएंगे टू मीट विद गिनीशा एंड योर RM2 टीम जो कि म्युनिसिपैलिटी ऑफ कैथोबोन पर है. तो कुछ ही देर में उनको लाइव लेंगे. अभी के लिए आप म्यूजिक को एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून टू RM2 रेडियो मस्ती.
3: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
3: Pour un petit déjeuner tout en douceur, pour des desserts encore plus savoureux, pour des grillades encore plus croustillantes et pour aider à combattre une grippe, ce n'est qu'avec du miel Wescoby. Wescoby, le miel 100% pur de l'Australie. Le miel Wescoby, c'est zéro additif, zéro colorant, zéro conservateur, zéro sucre ajouté. Pour 100% de douceur et 100% de bienfait. Wescoby, du bon miel australien 100% pur.
0: RM2
1: Radio Musty.

0: Fashion Tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Yes, it's your fashion tip for time. Keep it classy, keep it simple. आज mustard yellow, beige, cream या फिर olive green shades को try कीजिए एक elegant look के लिए. Style tip ये है कि best outfit होता है आपका confidence. आप वही पहनिए जिसमें आप comfortable feel करें और उसे own कीजिए. And घर से निकलने से पहले अपनी smile को पहनना मत भूलिएगा क्योंकि वो हर look को complete कर देती है.
0: Fashion Tips was powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments. RM2 Radio Musti.

0: RM2 Radio Musti.
1: And yes, as promised, आपको ले चलते हैं स्टूडियो के बाहर गिनिशा से मिलने के लिए. Good morning, गिनिशा.
2: A very good morning to you, Nirmani. Good morning to everyone who's tuned to RM2 Radio Musti. Ji haan, जैसे कि आपने बोला है, हम स्टूडियो से बाहर हैं आज. We are at the municipality of Quatrebon. क्यों? क्योंकि there is a job and training fair organized by the Ministry of Labour and as well we in collaboration with the municipality of Quatrebon. Actually, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, सभी लोगों को invite करना चाहेंगे. Do come here and join us right now, क्योंकि we have बहुत सारे है जो कंपनीज हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट है टू ऑफर यू सम जॉब. एक्चुअली इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू वांट टू बिल्ड अ कैरियर एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे बहुत सारे है कंपनीज है. वी हैव पॉलिटेक्निक्स ऑफ मॉरिशस, वी हैव अकेडमी ऑफ डिजाइन एंड इनोवेशन, वी हैव जॉब स्किल्स एज वेल MITB एंड एज वेल वी हैव सो मेनी कंपनीज जो यहाँ पे बैठे हैं आपको एडवाइस देने के लिए कि आप लाइफ में क्या कर सकते हैं. तो चलिए, अगर आप हमें सुन रहे हो, आप बस अपना CV लेकर, अपना ID लेकर यहाँ पे पहुँच सकते हैं. कोई भी क्षेत्र में अगर आप अपना कैरियर बिल्ड करना चाहोगे तो वाई नॉट. अगर आपको जैसे कंस्ट्रक्शन में भी कोई इंटरेस्ट है तो वाई नॉट, यू कैन ज्वाइन अस, क्योंकि यहाँ पे ऑन स्पॉट इंटरव्यू भी किया जा रहा है. So just to let you know, we have a company like TSC Cleaning Maintenance Company Limited. We have Mansur Saxon Contracting, National Insurance Company Limited, System Building Contracting, and Fancy West, which is Euro, CFM Mauritius, and many other companies like Woolworth, Super U, Carrefour, and Grays. And we do have Anila, Jaffrey Carsons, ABC Motors. These are the companies here present. So you just have to come here to get your CV and do join us right now. It's already 9 o'clock. It's going to end afternoon till 3 p.m. So it's an occasion not to miss. If you're a little bit worried, if you're thinking where to go, where to find a job, where to find a job, it's just a walking interview happening right now at the municipality of Quatrebon, where you can join. It's organized by the Ministry of Labour in collaboration with Municipality of
1: Quatrebon. Thank you, Ginisha. And yes, jaise ki Ginisha ne kaha hai, it's a walk-in interview. And agar aapko job ki talash thi, you know where to go, Municipality of Quatrebon. Abhi ke liye enjoy karte hain gaano ko aapke hi RM2 Radio Masti par.
0: Welcome to RM2 Masti Mornings Radio Masti.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings Radio Musty.
2: गाने के बोल है फिसला फिसला, वैसे फिसलना रोज का होता है, लेकिन हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए पूरा दिन बदलने की जरूरत नहीं होती, बस एक अच्छी सी हैबिट काफी होती है। एंड आज आप ना बस 10 मिनट के लिए मी टाइम निकालिए, चाहे वो वॉकिंग हो, रीडिंग हो, या बस फोन से थोड़ा ब्रेक। छोटे छोटे चेंजेस ही बड़े रिजल्ट्स लाते हैं, तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी वेलबींग ही आपकी असली धन होता है। तो धन से याद आया कि आपके लिए हम आपको हम घुमाने ले चलेंगे बारी बारी में, लेकिन अभी के लिए गानों का मजा लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन गुज आउट टू ऑल ऑफ यू जो भी कनेक्टेड है हमारे साथ RM2 रेडियो मस्ती पर।

0: RM2 Radio Musti.
1: A very good morning to all of you, to all our lovely listeners जो हमारा साथ दे रहे हैं on RM2 Radio Musti. जी हाँ, it's Megan Isha and हमारी पूरी टीम. We are present at Catrabona, the municipality of Catrabona. वैसे आपका टैलेंट आपकी पहचान है मेरी जान, और सही मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है. इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड म्यूनिसपैलिटी ऑफ कैट्रोबोन लेकर आए हैं जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर स्पेशली आप लोगों के लिए. एक्चुअली ये सिर्फ एक फेयर नहीं बल्कि आपके फ्यूचर के लिए एक गेट, एक गेट अवे है. एंड चलिए, जैसे कि बोलते हैं कि चाहे आप पहली नौकरी ढूंढ रहे हो, कैरियर स्विच करना चाहते हो, या नए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में जानना चाहते हो, ये इवेंट आपके लिए वाकई में बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है. सो एम्प्लॉयर्स से मिलिए, एक्सपर्ट से सलाह लीजिए और अपने सपनों को एक मजबूत रास्ता दीजिए. और हाँ,

इंटरव्यू लाना मत भूलिएगा, क्योंकि इंटरव्यू का मौका भी आपका इंतजार कर रहा है। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ कैटरबोन, आप आओगे तो आपको कैरियर एडवाइस भी मिलेगी, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रिक्रूटर्स एंड ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज भी चल रहा है। सो आइए सीखे समझे और अपने फ्यूचर को एक नई उड़ान दीजिए। एंड यू कैन कम हियर, यहाँ सुबह 8:30 से शुरू हो चुकी है।

0: यहाँ पे दे आर रिक्रूटिंग मैनेजर मोटो क्लेम्स क्लेम्स हैंडलर मोटो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव एंड इवन इंश्योरेंस एडवाइजर सिस्टम बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड जो है दे आर लुकिंग फॉर प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन एसी टेक्नीशियन एंड वेल्डर एंड ट्रांस इन्वेस्टर जो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है दे आर लुकिंग फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर टाइलर कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर मेसन एंड इवन कारपेंटर और अगर आप वूलवर्थ में काम करना पसंद करोगे तो दे आर लुकिंग फॉर शॉपर असिस्टेंट stock room assistant assistant accountant we have the company of Euro CRM Mauritius Limited they are looking for televendeur conseiller à clientèle and a super huge grand behind and they are recruiting cashier shelf worker and pricing clerk and CCTV operator and yes Carrefour mein agar aap kaam karna pasand karoge they are recruiting for cashier shelf worker and DCF Roots Company Limited they are recruiting for factory operator office clerk admin sales representative and even helper to dosto deri ki is baat ki agar ghar pe baithe baithe aap bhi pareshan ho chuke hain aapko nahi pata ki kahan pe jana hai you are looking for a job aur kuch bacche abhi jo education khatam kar chuke hain they have need some advice to know कि career में कौन सी direction में जाना है और अगर हो सकता है it's not the kids मम्मी पापा आप सुन रहे हो कोई आपके पड़ोसी सुन रहे हैं कोई आपके families जो family member हैं RM2 Radio Masti को सुन रहे हैं ना आप हमें सुन रहे हो you would love to pass on the message to the person who are really in need of a job so this is the right place जहाँ पे आप आ सकते हैं अभी फिलहाल at the municipality of the Catrabone hallway में है and This job and training fair is organized by the Ministry of Labour in collaboration with Municipality of Catrabone. So it's an occasion not to miss. We are all waiting for you. 9:30 से शुरू हो चुकी है और आपके पास टाइम है 3 बजे तक आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं अपना आईडी, अपना सीवी, अपना जो एड्रेस प्रूफ है सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा जरूर वी आर वेटिंग फॉर यू
1: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे अदिति नमस्कार।
1: नमस्कार नीलवानी, श्रोताओं को भी नमस्कार। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर है, लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपने हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में उच्च सार्वजनिक ऋण, प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मॉरिशन रुपए की धीमी वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन का उल्लेख किया है। इस साल के लिए आर्थिक वृद्धि 3% पर रहने का अनुमान है, जो 2025 में 3.2% पर थी। बजट बहसों में कल भाग लेते हुए विदेश मंत्री रितेश्राम फल ने एमएसएम की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार द्वारा छोड़ी गई एक नाजुक आर्थिक स्थिति विरासत में मिली है। उनके अनुसार पिछली सरकार ने कई कदम मात्र सत्ता पर बने रहने के लिए उठाए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने देश और जनता के हित में गैर लोकप्रिय लेकिन आवश्यक फैसले लेने का साहस किया है। राज्यसभा में कल बजट बहसों के दौरान एक बार फिर स्टेट एज पेंशन का मुद्दा केंद्र में रहा। जूनियर पर्यटन मंत्री सिडनी पिया ने यूनिवर्सल पेंशन समाप्त करने के विचार का विरोध किया। हालांकि उन्होंने मॉरिशनों की खरीद शक्ति बेहतर करने के लिए व्यवसाय और उपभोक्ता सुरक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किए जा रहे कदमों की सराहना की। हर साल 25 जून को विचिलिगो से ग्रस्त लोगों के खिलाफ भेदभाव की रोकथाम के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस समस्या के तहत प्रतिरोधक कमियों के चलते त्वचा का डीपिगमेंटेशन होता है और इसका प्रभाव शारीरिक से ज़्यादा मानसिक होता है, क्योंकि कई बार इससे पीड़ित लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर विचिलिगो मॉरिशस फाउंडेशन ऐसे लोगों के समर्थन के लिए कार्यरत है। मुख्य रूप से उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। साथ ही इस फाउंडेशन ने हाल में परिवहन मंत्रालय से विचिलिगो से पीड़ित लोगों को अपनी गाड़ी में टिंटेड शीशे लगाने की अनुमति देने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कई यूरोपीय देश भीषण गर्मी का कहर झेल रहे हैं। फ्रांस में कल तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज की गई। पश्चिमी फ्रांस में 68,000 से ज्यादा मकान बिजली आपूर्ति से वंचित रहे। कम से कम 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। फ्रांस के आधे से ज्यादा शहरों में गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पारा 43 डिग्री सेल्सियस पार करने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार।

0: श्रोक समाचार सुनिए। तमिल टेम्पल रोड लागेमा साई पियामी, तमिल टेम्पल रोड लागेमा साई पियामी 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सरदम्बल मुचिया, श्रीमती सरदम्बल मुचिया पैदाशी नाम मुचिया, जो देवी नाम से जरा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे, इनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे इनके बेटे सदा सिवेन मुचिया सिवेन के मकान तमिल टेम्पल रोड लागेमा साई पिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कौन साई पिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में, ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड श्री सुलेश गोकुलक, श्री सुलेश गोकुलक, जो सुलेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले SSRN अस्पताल में पूर्वाटेंडेंट थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी इनकी पत्नी श्रीमती माला गोकुलक के मकान ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इसी दोज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। समय सूचित नहीं किया गया है। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC

0: RM2 Radio must be. बिल्कुल जी, वेलकम बैक ऑन ऑल टू रेडियो मस्ती. चेक योर टाइम, 11:06 हो चुके हैं एंड यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. जी हाँ दोस्तों, वी आर नॉट इन द स्टूडियो अभी फिलहाल के लिए, वी आर एट कैथ्रो बोन. मौसम सुहाना है और अच्छे अच्छे न्यूज़ आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं. सो वी आर एट द म्यूनिसपैलिटी ऑफ कैथ्रो बोन फॉर अ जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर. जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर के दरवाजे खोलने का वक्त तो वैसे आ ही गया है. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड म्यूनिसपैलिटी ऑफ कैथ्रो बोन के साथ जुड़िए जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर में और यहाँ आपको मिलेगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां अपॉर्चुनिटीज और टैलेंट का मिलन होता है. जी हाँ, आपको करियर गाइडेंस मिलेगी, ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलेगी और कई एम्प्लॉयर्स से मिलने का मौका. और अगर आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हो तो ये इवेंट आपके लिए है. गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. अपना CV साथ लाएं, प्रोफेशनल से मिलिए, इंटरव्यूज में भाग लीजिए और अपने फ्यूचर को नई रोशनी दीजिए. आज का एक कदम कल की बड़ी सफलता बन सकता है. और एक्चुअली कुछ और जानकारी प्राप्त करने के लिए वी डू हैव द मेयर हमारे साथ. यस द मेयर मिस्टर सुविराज गंगा बिसुन, अ वेरी गुड आफ्टरनून. आपका स्वागत है ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
1: गुड मॉर्निंग, नमस्ते. आज नगर पालिका में एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. इस जॉब फेयर जैन लोग के अपॉर्चुनिटी रे हुआ था कि चाहिला यहाँ पर आवे के डिफरेंट डिफरेंट स्टोन बातें. और ये जो स्टोन बातें वो है MITD, वो है कंस्ट्रक्शन कंपनी और होटल वर्कर्स ऑल्सो. आप यहाँ पर आ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं. यहाँ के दरवाज़े खुले हैं आप लोग को, सब नगर पालिका लोग के, सब कथोबोने लोग के. चाहिला आए के देखे के कि कहाँ पर ही जॉब मिला था. और ये एगो वन स्टॉप शॉप जैसे बातें, इंटरव्यू हुआ था, फॉर्म भरा था और यहाँ पर ऑन स्पॉट जॉब मिला था. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आप लोग साज कर सकते हैं कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन कंपनी में जानकारी है, होटल सेक्टर में जानकारी है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं और एक जॉब के साथ आप घर जा सकते हैं.
0: बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि वैसे ही बहुत सारे लोग जो हैं जॉब ढूंढ रहे हैं. मैंने देखा है कि यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हो, आपके बस कुछ टैलेंट होना चाहिए. कुछ आपके जो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं जो ढूंढ रहे हैं, जैसे कि मैंने देखा है कि सुपर मार्केट्स में, यहाँ फील्ड्स में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं. यू कैन वर्क एज अ, जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप काम करना चाहते हो.

0: सिक्योरिटीज एंड एवरीथिंग. तो एक्चुअली म्यूनसिपैलिटी ऑफ कैटोबो ने ऑर्गेनाइज किया है इन कोलाब्रेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. अभी आपने ये ऑर्गेनाइज किया है तो आई गेस इट्स नॉट ओनली फॉर द पीपल ऑफ कैटोबो, इट्स सब के लिए. जहाँ तक हमारी और आपकी आवाज़ पहुँच रही है ये सब के लिए. एक्चुअली हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे ऑन आर एम टी रेडियो मस्ती, इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब यू गाइज आर डूइंग. क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग अपनी परेशानी में इतने घुस जाते हैं कि दे डोंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू, किससे बात करनी है, कहाँ जाना है. और यहाँ पे मैंने देखा है कि ऑन स्पॉट इंटरव्यूज यहीं पे हो चल रहे हैं और यहीं पे रिक्रूटमेंट चल रही है. बिल्कुल. सो अ लास्ट मैसेज फॉर एवरीवन जो आपको सुन रहे हैं ऑन आवर एंड टू रेडियो मस्ती.
1: क्वालिफिकेशन की दिक्कत नहीं है, हम आप जब आपके पास अगर फॉर्म फ्री हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर्म फ्री हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, जॉब एक जॉब ढूंढ सकते हैं. और मेरी मांग है कि ये प्लेटफॉर्म जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और म्यूनिसपालिटी ऑफ काठोबोन जो है, आप लाभ उठाए, यहाँ पर आए और कुछ ना कुछ आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पर लेके जाए.
0: खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, जॉब लेके ही जाएंगे आज. दैट्स वेरी गुड. ये है, दैट्स द स्पिरिट. थैंक यू सो मच मिस्टर मेयर सुबिराज गंगा बिसुन. इट्स अ वेरी नोबल जॉब दैट यू गाइस आर डूइंग राइट नाउ. एक्चुअली जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आपके पास आपका CV है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके ID की कॉपी, सब कुछ आप लेकर यहाँ पे आ जाइए. और अगर आपको जॉब की जरूरत है, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू ग्रैब समथिंग टुडे. सो नॉट टू मिस This is an occasion. 3 PM तक आप यहाँ पे आ सकते हैं. At the municipality of Quatrebon, in collaboration with the Ministry of Labour, there is a job and a training fair happening right now.
2: RM2 Radio Masti.
3: सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ. एन एवरग्रीन आफ्टरनून, एन एवरग्रीन आफ्टरनून. सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ. 2 hours का सुनहरा सफर इस बार मोसलमो सैतान्द्रे कम्युनिटी सेंटर में, जहां बेजितोंबो कोइराची और मोसलमो सैतान्द्रे एसोसिएशन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे. ऑन दिस फ्राइडे 26 June दिन के 12 PM से लेकर 2 PM तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. साथ ही RM3 रेडियो मनोरंजन के फेसबुक पेज और टिकटॉक पर भी लाइव फॉलो कर पाएंगे. सो भूलिएगा मत इस शुक्रवार 26 जून को दिन के 12 PM से लेकर 2 PM तक मोसलमो सैतान्द्रे कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: FRM2
1: Radio Musti.
2: थैंक यू सो मच साथ देने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. जी हाँ दोस्तों, वी आर ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी ऑफ कैथरबोन. सो माय डियर लवली लिसनर्स, सपने तभी पूरे होते हैं जब हम उनके लिए पहला कदम उठाते हैं, और ये कदम कोई आपके लिए नहीं उठाने वाला है. यू जस्ट हैव टू हेल्प योर सेल्फ. यानी कि इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, आप यहाँ पे आ सकते हैं. वी हैव अ जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर हैपनिंग राइट नाउ, ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इन कोलैबोरेशन विद द म्युनिसिपैलिटी ऑफ कैथरबोन. अगर आप रोजगार की तलाश में हैं और या अपने स्किल्स को और मजबूत बनाना चाहते हो, तो मिस मत कीजिए जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर हैपनिंग राइट नाउ. सुबह 9:30 से शुरू हो चुकी है एंड इज गोइंग टू एंड टिल 3 PM. सो आपके पास अभी वक्त है, आप यहां पे आ सकते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड म्यूनसिपैलिटी ऑफ कैथरबोन के इस इनिशिएटिव का जो मकसद है, आपको बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटीज से जोड़ना. यहाँ आपको मिलेगी कैरियर एडवाइस, ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद रिक्रूटर्स ऑन द स्पॉट इंटरव्यूअर्स. तो आइए कुछ सीखिए. और वैसे भी अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ जॉब ही आप को मिल सकते हैं यहाँ पे, तो इट्स नॉट ओनली दैट, क्योंकि हमने बोला कि ट्रेनिंग फेयर भी है. अगर अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, स्पेशली फॉर किड्स जिन्होंने अभी अभी अपना SC HSC कंप्लीट कर लिया है, बट स्टिल यू डोंट नो व्हाट टू डू, कहाँ पे जाना है, यू वांट टू परस्यू अ कैरियर, लेकिन कौन से कोर्स में आप दाखिल होना चाहते हो और एक्चुअली ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहते हो, इतना कन्फ्यूजन है ना आपके दिमाग में कि आप किस से एडवाइस ले सकते हैं. वेल, अपनों से तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पे यू हैव पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस, HRDC यानी कि नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड अकेडमी ऑफ डिज़ाइन एंड इनोवेशन. यू हैव MITD स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. ये सारे के सारे कंपनीज यहाँ पे बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको एडवाइस देने के लिए कि आप लाइफ में आगे जाके क्या परस्यू करना चाहते हो और कैसे करना है. वैसे यू विल गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द कोर्सेज दैट यू वॉन्ट टू डू इन लाइफ. वैसे अगर आप हमें सुन रहे हैं, यू वुड लव टू जॉइन अस राइट नाउ एट दिस जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर, सो यू कैन जस्ट जॉइन अस. अपने CV लेकर आइएगा, अपना ID, अपने सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, आप बस ग्रैब कीजिए और यहाँ पे पहुँच जाइए. मम्मी पापा को साथ लेकर आना चाहते हो तो आप आ सकते हैं, ताकि आपके पेरेंट्स को भी हम सब ये लोग जो बैठे हैं, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पीपल फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन जो बैठे हैं यहाँ पे, आपके मम्मी पापा को भी बता सकते हैं कि जो जिस चीज़ में आप कैरियर परस्यू करना चाहते हैं उसमें कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं. और यहाँ पे रिक्रूटमेंट भी चल रहा है, ऑन स्पॉट इंटरव्यूज भी चल रहा है. एंड टू ऑल दोज जो सोच रहे हैं कि नहीं, हमने तो कोई कोर्स नहीं किया, अब क्या करेंगे लाइफ में, कि हमें जॉब चाहिए, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, और जहाँ पे आप जॉब नौकरी कर रहे थे आपकी नौकरी छूट गई, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आ सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली कोर्सेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब की भी बात कर रहे हैं. अगर आप एज अ क्लीनर काम करना पसंद करते हो, तो PST क्लीनिंग मेंटेनेंस कंपनी लिमिटेड इज प्रेजेंट हियर. दे आर डूइंग ऑन स्पॉट इंटरव्यू एंड रिक्रूटिंग एट द सेम टाइम. मैंसर सैक्सन कॉन्ट्रैक्टेड लिमिटेड जो है वो यहाँ पे दे आर हायरिंग अ स्कीमर, ग्रेनाइट इंस्टॉलर, बिल्डिंग पेंटर, मैसन रेंडरिंग, स्कीमिंग ग्रेड 2, मैसन ब्लॉक लेयरिंग, एंड वी हैव टाइलर, शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, टीम लीडर, कैबिनेट मेकर, BIM मॉडलर, इलेक्ट्रो टेक्नीशियन भी चाहिए उनको, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, प्लम्बिंग सुपरवाइजर, SR HVAC टेक्नीशियन, सीनियर चिलर स्पेशलिस्ट. एंड इवन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब एज अ प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन एंड AC टेक्नीशियन एंड अ वेल्डर, सिस्टम बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड इज प्रेजेंट हियर. आप उनके जो टेबल है उनके स्टॉल पे जा सकते हैं, एंड दे आर हियर डूइंग ऑन स्पॉट इंटरव्यूज. तो देरी किस बात की, आप बस जल्दी से यहाँ पे पहुँच जाइए, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू बिल्ड अ वेरी सक्सेसफुल कैरियर विद ऑल दीज कंपनीज. सो वेटिंग फॉर यू एट द म्युनिसिपैलिटी ऑफ कैथरबोन इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. यस, दे आर हैविंग अ job and training fair till 3 PM.
0: RM2 Radio Musti.

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little Musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
1: RM2.
0: Radio Musti.
2: Well guys, I really hope that you are really enjoying these beautiful and lovely गानों का selection जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए on RM2 Radio Musti. Time beta चला जा रहा है, सारे 11 बजने वाले हैं and you are listening to Ginisha right now straight away from the municipality of Quatrebonne. अरे मेरी जाना पूछ रहे हैं ना कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. आज एक job and training fair है organized by the Ministry of Labour and in the collaboration of municipality of Quatrebonne. Actually आप लोगों की फिक्र बहुत करते हैं कि आप लोग अगर jobless हैं, looking for a job, अभी पढ़ाई खत्म कर ली है और you just want to do something in life, कहाँ जाना है, किससे काउंसलिंग करना है, you want to get some courses done, लेकिन किस फील्ड में जाना है आपको, ये सारी सारी चीज़ें जो हैं आपको बस यहाँ पे आना है and you will get the right person to guide you to the right door. वैसे ड्रीम जॉब की तलाश खत्म हो सकती है यहीं पर and वैसे चाहे आप स्कूल लीवर हो, ग्रेजुएट हो, जॉब सीकर हो या करियर चेंज करना चाहते हो, ये इवन

0: है आपके लिए करियर काउंसलिंग ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज एक्सपर्ट एडवाइस एंड ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज एज वेल। आज ही अपने फ्यूचर की तरफ एक मजबूत कदम बढ़ाइए। और थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि वी हैव डिफरेंट इंस्टीट्यूशन प्रेजेंट हियर राइट नाउ टू गाइड यू माई लवली लिसनर्स। तो अभी के लिए वी डू हैव मिसेस साधना जवाहिया हमारे साथ जो है फ्रॉम MITD। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड वेलकम ऑन आवर रेडियो मस्ते।
1: Good afternoon, everybody.
0: तो साधना जी आप हमें बताइए, do give all the information to our listeners who's listening to you right now on our own to read MST. What are the services MITD is providing today?
1: तो आप लोग सोमो पांसे कर रहे हैं कि क्यों हम लोग आज हैं इन जॉब फेयर में। Important that everybody understand that you get a job, it's only when you get a training, right? So आज हम लोग यहाँ हैं surtout इंफॉर्मेशन देने के लिए लोबान कू जो हम लोग कर रहे हैं। सो कू जो है हमारे पास वो है ICT हॉस्पिटैलिटीज दैट इज सब चीज जो बोला जला लोटेल में ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स जे लोग इलेक्ट्रिशियन ou bien plombier ou bien aircon ou bien l'automotive man, c'est-à-dire qui travaille dans camp karne hain automotive tradesman. Surtout jo hamaro females hain uske liye hain hairdressing, beauty care, child care, textile and garment making. So hamare paas hain a vast variety of courses. अब आप लोग कैसे ये सब कोर्सेज कर लेते हैं तो आप लोगों का जॉब गारंटीड है। तो इसीलिए हम लोग
0: जॉब प्लेसमेंट भी करते
1: हैं एक एक चीज़ है जो हम कहते हैं अप्रेंटिसाज। से ये अप्रेंटिसाज में क्या है, यहाँ लोग स्टूडेंट्स लोग और एनीबॉडी हैं ही एक वन डे हमारे स्कूल में रहते हैं और द अदर डेज दैट इज 4 to 5 days वो लोग हैं एंटरप्रीज में। सो वो लोग को क्या मिलते हैं, वो लोग को वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो दैट कि ये व्यक्ति जो आते हैं हमारे पास उन लोग को मिलता है 8,000 rupees मंथली और है उन लोग का ट्रांसपोर्ट ये सब है ग्राचुई। सो ये तो एक बहुत अच्छा स्कीम है एंड जो लोग अभी काम में सर्च कर रहे हैं सो एक एक मिच्छे कैसे बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे गेट अ काइंड ऑफ अ स्किल दे बिकम अ स्किल्ड वर्कर। एंड हम लोगों का अपील है कि आइए हमारे पास, आइए MITD अप्लाई करिए। बहुत सा स्कूल हैं डॉन सुसेंजी स्कूल हैं एंड आपको श्योरली यू विल फाइंड अ जॉब।
0: हाँ जी, अगर आप सोच रहे हो कि लाइफ में क्या कर सकते हैं तो 70 different कोर्सेज हैं, मतलब कि मल्टीपल चॉइसेस हैं यहाँ पे टू चूज व्हाट यू वांट टू डू इन योर करियर। वैसे मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मिसेस साधना जवाहिया जी, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए MITD को?
1: यहाँ पर हमारे पास ऐसा है कि इवन आपके हैं पास एक फॉर्म 3 ऊ फॉर्म 4 ऊ फॉर्म 5 ऊ लोअर 6 एट HSC। हम लोगों का पास में सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज हैं टू सूट एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन। हम लोग बिलीव करते हैं कि नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड।
0: ओके,
1: इसीलिए बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं वेरी बेसिक लेवल
0: ऑफ व्हिच एज यू कैन स्टार्ट।
1: यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एज 16
0: मैक्सिमम।
1: वी डोंट हैव द मैक्सिमम।
0: ओके, दैट्स गुड। तो आई गेस के दैट्स द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं ऑन आवर एमटी रेडियो मैसेज, जैसे कि साधना जी ने आपको बोला है कि आप आइएगा जरूर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी नॉट टू मिस। कैरियर बिल्ड करना चाहते हो, यू डोंट नो व्हाट टू डू, एक्चुअली रेडियो पे शायद इस वक्त बहुत सारे मम्मी पापा पड़ोसी चाचा चाची सुन रहे हैं, तो प्लीज़ पास ऑन द मैसेज टू दोज यंगस्टर्स जो काफ़ी कन्फ्यूज हैं, पढ़ाई खत्म नहीं की तो सोच रहे कि दे जस्ट वॉन्ट टू गेट अ जॉब बट दे डू हैव अ टैलेंट। यू नेवर नो कि उनके हाथ में ऐसी क्या जादू हैं कि वो कुछ ना कुछ तो बन ही सकते हैं लाइफ में। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आप उनको उन बच्चों को अभी फ़ोन कर लीजिए, उनको बोलिए कि अपना CV अपना जितने सर्टिफिकेट्स अपने जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं उनको साथ लेकर आइएगा ज़रूर एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू गेट टू बिल्ड अ करियर।
1: And they can also go to any MITD centers.
0: Exactly.
1: 21 schools हैं, तो आप लोग जो जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक MITD center होगा, so आप लोग जा सकते हैं।
0: So we are around the island waiting for you, MITD center. जी हाँ दोस्तों, so it's an occasion not to miss, जैसे कि हमने बोला है। And even अगर आप फिलहाल आप यहाँ पे आना चाहते हो, we are

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: खूबसूरत गानों के साथ साथ आप लोगों के लिए एक खबर बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटीज लेकर आई हैं एट द जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर हैपनिंग राइट नाउ एट म्युनिसिपैलिटी ऑफ कैथरबोन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने कैरियर को एक नई पहचान देना चाहते हो तो मिस मत कीजिए जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर ऑर्गेनाइज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड म्युनिसिपैलिटी ऑफ कैथरबोन। यहाँ एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, ट्रेनिंग ऑप्शंस बताएंगे और एम्प्लॉयर्स से सीधा मिलने का मौका भी आपको मिल रहा है। इट्स ऑल अबाउट अ वॉकिंग इंटरव्यू, सो डू bring all your important documents, जो है आपकी CV, आपकी ID, आपके जो address proof है, आपके जितने भी certificates हैं, सब कुछ लेकर आइएगा ज़रूर। और यहाँ on the spot interview भी जब हो रहे हैं, आपका recruitment भी हो सकते हैं। So आपको जो आपका talent है, आपका future है, आपका आपको हम मौका दे रहे हैं just to get a job, your dream job। एक CV, एक interview और शायद एक नई जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और अभी तक आपको कहीं पे भी जॉब नहीं मिले, आपने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए लेकिन स्टिल कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिला, सो जस्ट लेट यू नो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी नॉट टू मिस। अगर आप हमें सुन रहे हो राइट नाउ ऑन RM2 रेडियो मस्ती, मैं आपको बता दूं कि आपके पास टाइम है दिन के 3 बजे तक यहाँ तक पर आने के लिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर, एंड यू कैन गेट अ जॉब। यहाँ पे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, दे आर रिक्रूटिंग फॉर मैनेजर मोटो क्लेम्स, क्लेम्स हैंडलर मोटो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के लिए भी दे आर रिक्रूटिंग, एंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव में अगर इसमें काम करना चाहोगे सो वाई नॉट इंश्योरेंस एडवाइजर भी रिक्रूट कर रहे हैं। सिस्टम बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड, दे आर रिक्रूटिंग प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, AC टेक्नीशियन, वेल्डर। ट्रांसइन्वेस्ट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेबर, टाइलर, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर, मेसन और कारपेंटर भी रिक्रूट कर रहे हैं। यूरो CRM मॉरिशस लिमिटेड, टेलीवेंडर और कौनसे क्लियंटेल भी रिक्रूट किया जा रहा है। और अगर वुलवर्थ कंपनी के साथ आप काम करना पसंद करोगे सो वाई नॉट, दे आर रिक्रूटिंग फॉर शॉप असिस्टेंट, स्टॉक रूम असिस्टेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट। सुपर यू घोंबे में अगर आप काम करना पसंद करोगे एंड यू लिव इन द नॉर्थ, इट्स गोना बी ईजी फॉर यू। दे आर रिक्रूटिंग फॉर कैशर, शेल्फ वर्कर, प्राइसिंग क्लर्क, CCTV ऑपरेटर एंड सुपर जो काफू है, कैशियर एंड शेल्फ वर्कर रिक्रूट कर रहे हैं। DCF रूट्स कंपनी लिमिटेड, दे आर रिक्रूटिंग फॉर फैक्ट्री ऑपरेटर, ऑफिस क्लर्क एंड एडमिन के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, एंड इवन दे आर रिक्रूटिंग फॉर हेल्पर्स। PST क्लीनिंग का जो कंपनी, मेंटेनेंस कंपनी लिमिटेड है, दे आर रिक्रूटिंग फॉर क्लीनर। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो एज अ क्लीनर, सो दिस इज द प्लेस दैट यू शुड कम एंड गेट द जॉब। मेंस सैक्सन कॉन्ट्रैक्टिंग लिमिटेड, दे आर रिक्रूटिंग फॉर स्कीमर ग्रेड 2, ग्रेनाइट इंस्टॉलर ग्रेड 2, बिल्डिंग पेंटर ग्रेड 2, मेसन रेंडरिंग स्कीमिंग ग्रेड 2, मेसन ब्लॉक लेयरिंग ग्रेड 2, टाइलर ग्रेड 2, शटरिंग कारपेंटर ग्रेड 2, स्टील फिक्सर ग्रेड 2, एंड टीम लीडर, फोरमैन चाहिए कैबिनेट में।

0: ग्रेड थ्री है, यानी जब हम आपको ग्रेड बता रहे हैं, सो यू जस्ट ओनली हैव टू हैव द क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेड टू एंड ग्रेड थ्री एंड बी आई एम मॉडलर इलेक्ट्रो टेक्नीशियन एच वी ए सी भी रिक्रूट कर रहे हैं, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन प्लम्बिंग सुपरवाइजर एस आर एच वी ए सी टेक्नीशियन सीनियर चिलर स्पेशलिस्ट. अगर आप इन सब जॉब्स में इंटरेस्टेड हो एंड यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ सम इयर्स, आप आना चाहोगे फॉर अ वर्किंग इंटरव्यू, सो दिस इज द राइट टाइम. जस्ट जॉइन अस राइट नाउ. द आर एन टू रेडियो मस्ती टीम, म्यूनसिपैलिटी ऑफ कैथरबोन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है ये फेयर, यानी कि जॉब एंड ट्रेनिंग फेयर. सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर यू, विल बी हेयर दिन के 3 बजे तक.
1: You're listening to RM2, a Radio Masti.

रेडियो मस्ती। वैसे आपका टैलेंट आपकी पहचान है, ये मेरे रोज़ और सही मौका आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और ये मौका आपको आज मिल रहा है। आप द म्यूनिसपैलिटी ऑफ कैथरबोन हॉलवे में आ सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे टीम है, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे आपकी वेलकम करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और म्यूनिसपैलिटी ऑफ कैथरबोन लेकर आई है अ जॉब एंड अ ट्रेनिंग फेयर। सो ये सिर्फ एक फेयर नहीं बल्कि आपके फ्यूचर के लिए एक गेट वे है, और चाहे आप पहली नौकरी ढूंढ रहे हो या कैरियर स्विच करना चाहते हो, या हो सकता है आपको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है ताकि आगे जाके लाइफ में आप अपने कैरियर को और भी बेहतर बना सकते हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हो, ये इवेंट सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। सो एम्प्लॉयर्स से मिलने का मौका ना छोड़िए, एक्सपर्ट्स से सलाह लीजिए और अपने सपनों को एक मजबूत रास्ता दीजिए। और हाँ, बिल्कुल ना भूलिएगा अपना CV लेकर आना एंड अपने जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ज़रूर लेकर आना, क्योंकि इंटरव्यू का मौका भी आपका इंतज़ार कर रहा है। वैसे इफ़ यू वांट टू लुक फॉर अ जॉब इन डिफरेंट फील्ड्स, जैसे कि अगर आप क्लीनिंग के फील्ड में काम करना पसंद करोगे और आप सोच रहे हो कि मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है, सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे अगर हम

ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं और बच्चों के बारे में सोच रहे हैं कि वो आगे जाके अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, दे डोंट हैव अ प्रॉपर गाइडेंस कि उनको कैसे गाइड करें. मम्मी पापा बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बच्चे क्या करना पसंद करेंगे जो आगे जाके इस फील्ड में, जिस फील्ड में ये लोग जाना चाहते हैं, एक कैरियर में हो सकता है और उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे काम करने की और उनकी प्लेसमेंट भी हो सकती है. तो यहाँ पे पॉलिटेक्निक्स मॉरिशस एच आर सी जो है नेशनल

0: आपकी मदद करने के लिए एंड वेल गाइस, वैसे अगर आपको नौकरी की भी ज़रूरत हो सो आई गेस दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी नॉट टू मिस. वेल आप यहाँ पे आइएगा ज़रूर, अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमसे मिल सकते हैं यहाँ पे एट Municipality of Quatre Bornes, जहाँ पे there is a job and even a training fair happening right now. तो चलिए फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे, if you would love to join some companies, आपकी जो dream companies हैं शायद जिनके साथ आप मिलकर काम करना पसंद करोगे, so just to let you know कि यहाँ पे you can join the company PST Cleaning Maintenance Company Limited, Manson Saxon Contracting Limited, National Insurance Company Limited, System Building Contracting Limited, Trans Invest Construction Limited, Euro CRM Mauritius Limited, and we have Woolworth Mauritius, Super U Grand Bay, Carrefour, DCF Roots Company Limited, Votre Pote AG Limited, Grays Inc. Limited, Meadows Feeds Limited, MVM Confections Limited, Anelia Resort and Spa, Dakri Cartons Limited, ABC Motors Company Limited, Timers Holding Limited, Velogic Limited, and Precigraph Limited. All these companies are waiting for you right now, right away at the municipality of Quatre Bornes. This is a job and a training fair organized by the Ministry of Labor in collaboration with the municipality of Quatre Bornes. And just to let you know, subah 9:30 baje se shuru ho chuki hai ye fair, and it's going to end at 3 PM, यानी कि 3 बजे तक आपके पास टाइम है. तो मम्मी पापा चाचा चाची जस्ट पास ऑन ऑल द मैसेज टू एवरीवन, बच्चों को आप यहाँ भेज सकते हैं. अगर आप पेरेंट्स खुद आना चाहोगे सो व्हाई नॉट, आप यहाँ पे आ सकते हैं एंड यू विल गेट अ प्रॉपर गाइडेंस फॉर द कैरियर ऑफ योर किड्स. एंड टू ऑल दोज लुकिंग फॉर अ जॉब, अगर आप नौकरी की तलाश में हो, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो और नौकरी नहीं मिल रही है, सो दिस इज़ द राइट प्लेस, आपको आ जाना चाहिए. तो चलिए जी, आई गेस की सारे इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुँचा दी है. All our team broadcasting live from the municipality of Quatre Bornes, and this is a job and a training fair organized by Ministry of Labor and Municipality of Quatre Bornes for you.
1: RM2 Radio Masti.

0: time to Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
2: टाइम चेक दोपहर के 12 बज रहे हैं. सभी को नमस्कार. अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. अदिति आपको नमस्कार.
3: नमस्कार पूनम. श्रोताओं को भी नमस्कार. राष्ट्रीय सभा में आज विपक्ष नेता जूलियस रुंगा का पीएनक्यू बजट 2026-2027 में घोषित पेंशन सुधार पर आधारित है. उन्होंने खास तौर पर सुधार का प्रस्ताव देने के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी के गठन, उसके सदस्यों को दिए जाने वाले अलाउंस, आय आधारित मानदंड लागू करने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट और उन प्रस्तावों की समीक्षा करने वाली स्टीयरिंग कमेटी के काम में के बारे में जानकारियां मांगी हैं. नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन की तरफ से पेंशन सुधार योजना और मींस टेस्टिंग की धारणा की कड़ी आलोचना की जा रही है. कल एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संघ के अध्यक्ष नरेंद्र नाथ गोपी ने इस बात की निंदा की कि समस्त जनता को प्रभावित करने वाले इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने पर्याप्त स्पष्टता नहीं दी है. उन्होंने कहा कि बजट 2026-2027 एक स्पष्ट रोड मैप की तरह होना चाहिए जो ये दर्शा सके कि सरकार ने जनता की अपेक्षाओं और मांगों को ध्यान में रखा है या नहीं. नरेंद्र नाथ गोपी के साथ ने साथ ही बजटीय फैसलों, खासकर संचालन कमेटी से संबंधित फैसलों के बारे में गैर निर्वाचित लोगों की भागीदारी पर भी सवाल उठाए हैं. व्यापार को बढ़ावा देना और स्थानीय महिला ठेकेदारों के कौशल का प्रदर्शन करना, ये नेशनल वीमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल द्वारा कल आयोजित बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग एंड नेटवर्किंग इवेंट का उद्देश्य रहा. पोर्ट लुइस में आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिला ठेकेदार एकत्रित हुई. उन्हें अपनी पैदावारें और सेवाएं प्रस्तुत करने और साथ ही अपने पेशेवर नेटवर्क का विस्तार करने का मौका मिला. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, वेनेजुएला में के बाद एक दो भूकंप के दो बड़े झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर पहले की तीव्रता 7.2 और दूसरे की 7.5 अंकों की मापी गई. कई इमारतें ढह गई. कम से कम 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. 700 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं. इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त है. थोड़ी देर में शोक समाचार. शोक समाचार सुनिए. विक्टोरिया लेन रोशनो में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड श्री संजीव ओरिसिंगाला अपादू जो संजीव नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी माँ श्रीमती राधिका ओरिसिंगाला अपादू के मकान विक्टोरिया लेन रोशनो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो रात 11 AM. चतरगुन लेन लेस्कालिये में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड श्रीमती संताबाई कुशनिया गणेश पैदाशी नाम कुशनिया जो सांता नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल दिन के ग्यारह बजे इनके बेटे श्री मोहन गणेश के मकान चतरगुन लेन लेस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासें कारंग लेस्कालिये की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमिशन टुमारो रात 11 AM. तमिल टेम्पल रोड लागेमाउ सैपियामे 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड श्रीमती सरादम्बल मुचिया पैदाइशी नाम मुचिया जो देवी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके बेटे श्री सदाशिवन मुचिया सिवन के मकान तमिल टेम्पल रोड लागेमाउ सैपिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैकुंसाउ सैपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM. ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड श्री सुलेश गोकुलक जो सुलेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और पहले SSRN अस्पताल में पूर्वातन थे, इनकी मृत्यु हो गई है. इनकी पत्नी श्रीमती माला गोकुलक के मकान ऋषि दयानंद लेन मौलाशो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इजी दोज की

0: जन्मभूमि ले जाई जाएगी, समय सूचित नहीं किया गया है। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Retro Rhythm. RM2, Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:13 हो चुके हैं। नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का मौसम देखा है आपने, हाई बारिश भी है और ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है। ऐसे में दिल खुद ही अपनी पुरानी यादों की तरफ चला जाता है और कहता है, हाय मुझे यादों से बाहर बिल्कुल मत निकालिए। तो अगर आप भी उसी की यादों में हैं, खोए हुए, चाहे वो कोई भी अपना दोस्त हो, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या आपके खुद के बचपन के दिन हो, अगर आपको वो यादें याद हैं तो बस हमारे साथ जुड़ जाएं। आप हैं हमारे साथ, यानी कि रेट्रो रिदम के साथ, मैं हूँ आपके साथ इस समय पूनम। और मैं तो यही कहूँगी, अगर आपकी यादें बहुत ही प्यारी और तरोताज़ा करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5499124 पर। और हमारे साथ इस समय पहले से ही ऑलरेडी बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं रेट्रो रिदम सुनते ही, क्योंकि ये प्रोग्राम होता है पुराने गानों का, जहाँ पर थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है। और ये टाइम जो होता है ना 12 से 2 का, वो है सुकून भरा हुआ और आपके लिए। तो इन्जॉय कीजिए आपके गाने, और अगर आपकी भी कोई फरमाइश है तो भेज दीजिए। क्यों रोक रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल रोके मत। मैं यहीं पर हूँ आपके साथ, आपके मैसेजेस के साथ और आपके गानों के साथ।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम। 12:25 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ यानी कि आरएम टू के साथ अपने ही रेट्रो रिदम प्रोग्राम में। तो चलिए बात करते हैं रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब जो थे बहुत ही कूल थे, मतलब इतने इतने प्यारे से बड़े बड़े से स्ट्रॉन्ग गाने गाने के बाद भी उनमें इतनी हम्बलनेस थी, इतना झुक के रहते थे हमेशा। जब भी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती थी तो मूवी डायरेक्टर से या डायरेक्टर से या म्यूज़िक डायरेक्टर से पूछते थे, क्या मैं एक और टेक दे दूँ, क्या ये सही मैंने गाया था, क्या आपको लगता है कि इसमें और ज़्यादा कुछ अच्छा कर सकते थे, या मैं कहीं रह गया या मैंने कुछ चूक कर दी। इतना हम्बल होना, इतनी बड़ी हस्ती, ऐसी आवाज़ जो कि कहते हैं बॉलीवुड में उनसे ऐसा कोई हुआ ही नहीं। और उसके बाद जैसे कि आज है मदन मोहन जी का बर्थडे, उनसे भी पूछते थे क्योंकि वो म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनसे भी पूछते थे क्या मैं ठीक गा रहा हूँ, क्या मैंने कुछ गलती तो नहीं की। तो जब ये छोटी छोटी सी बातें एक बड़ी हस्ती करती है तो सच में एहसास होता है कि ये जो लोग थे उस ज़माने के लोग, उनमें कितनी बात थी, क्या चीज़ थे। क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, आप किसी भी पोजिशन पर पहुँच जाइए पर आप अगर वो हम्बल हैं तो मुझे लगता है कि सारे लोग आपको सरो आँखों पर बिठाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम चलें तो मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का गाना ना हो रेट्रो रिदम में तो हो नहीं सकता। तो हम चलाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ का भी एक प्यारा सा गाना और मदन मोहन जी का भी, और उसके बाद लेंगे आप सभी के मैसेजेस।
1: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

ये हंसी आंख जवां जुल्फ ये बहकी हुई चाल, कौन से दिल में नहीं तेरी मोहब्बत का ख्याल, जिस पे महबूब भी मर

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:35 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं आप भी अपने प्रोग्राम के साथ यानी कि रेट्रो रिदम के साथ, जहां पे चलते हैं आपके पुराने गाने और ये होते हैं मस्त मस्त इसलिए क्योंकि हमें लेके जाते हैं हमारे पुराने समय में, जहां पे हमारे नानी दादी और दादा या नाना या चाचा वगैरह सब ये प्रोग्राम सुनते होंगे या ये गाने सुनते होंगे और फिर भी हमारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिल की किसी जगह पे ये गाने फिट हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं हम कहां आपका साथ छोड़ने वाले हैं, तो वो बस अब हमारे भी गाने बन चुके हैं और हम भी उन गानों को या तो गुनगुनाते हैं या हम अपनी रिक्वेस्ट करते हैं। तो इस समय हमारी बहुत ही प्यारी सी रिक्वेस्ट आई है जीना जी, जो कि इस समय पेरिस से हमें सुन रही हैं। उनके एक फरमाइश सिर्फ इतनी है कि सब अपना ख्याल रखें मॉरिशस में, क्योंकि थोड़ा सा मौसम कहते हैं ना कि ठंडा गर्म हो गया है, तो बस अपना ध्यान रखें, कवर करके चलें, अपना ख्याल रखें, ये बस यही बोला उन्होंने। और अब्दुल जी और सायरा बानो जी, सायरा बानो कहती हैं अब्दुल मैं तुमको सबसे ज़्यादा बहुत इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि तुम मेरा सारा कहना मानते हो। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है जब हस्बैंड जो है अपनी वाइफ का कहना मान ले या जो कोई मोहब्बत करने वाला हो उसके दिल की बात को सुन ले, तो और अच्छा लगता है। उसके साथ में इस समय विश्वानी जी हमारा साथ दे रही हैं और कह रही हैं मैं अपनी बहन इंदिरा शारदा को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हूँ और मेरी बहन जैसी जो दोस्त हैं सहेलियाँ हैं उनको भी मैं ये सुनाना चाहती हूँ, नीला प्रतिभा शोभा को, कि तुम मेरी हो तो सहेलियाँ पर हो मेरी बहन ही शायद, बट ममा डिफरेंट रहे। कोई बात नहीं, यही होता है, सहेलियाँ बहुत अच्छी लगती हैं हर किसी को और अपनी सहेलियों के लिए कोई रिक्वेस्ट करता है तो अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। अनिता जी साथ दे रही हैं, ज्योति जी शातो बनारस से आशनी रेखा सुरेखा AMD मधु फैमिली के लिए गाना सुनना चाहती हैं, तो बिल्कुल हम चलाने वाले हैं एक एक करके आपके पसंद के गाने और आप बस लिखते जाइए, हमें बताते जाइए आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है। इंजॉय कीजिए आपका गाना।
0: रेट्रो रिदम
2: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेट्रो रिदम।
1: 12:56 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं रेट्रो रिदम के साथ और हमारे दोस्त भी सारे यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने कहा कि भैया हमारा तो दिल नहीं लगता रेट्रो रिदम के बिना, हमारे पुराने गानों के बिना, तो हम आपको भी बोलेंगे हमारा भी दिल नहीं लगता। चलिए जी, हम आप सबको इतना कहेंगे जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनको ज़रूरत है, जिनको अपग्रेड करना है अपने आप को, जिनको नई चीज़ें कुछ एक्सप्लोर करनी है और बहुत ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा आज का दिन है। आप जा सकते हैं काथुबुन म्यूनसिपैलिटी जहाँ पे गिनीशा है, अभी सुबह से वो लोग वहाँ पर हैं और पूरा स्टाफ है RM2 का, उसके साथ में ही बहुत सारे और भी लोग हैं जहाँ पर जिनको भी जॉब्स की ज़रूरत है वहाँ पर 3 बजे तक रहेंगे। अगर आपको भी कहीं पर भी जॉब की ज़रूरत है या आपको नया कुछ चेंज चाहिए या लाइफ में कुछ एक्सप्लोर ऐसा करना है जो आपके दिल की इच्छा है और आप कर नहीं पा रहे, तो ये आपके लिए राइट मोमेंट होगा। तो जाइए, इंजॉय कीजिए गानों के साथ साथ। हम आपको इतना ही कहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहे RM2 के साथ।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti RM

0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
3: टाइम चेक दोपहर के एक बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। याचना आपको नमस्कार।
4: नमस्कार पूनम, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में आर्थिक वृद्धि सकारात्मक राह पर है, लेकिन 2026 के लिए इसमें हल्की कमी आने का अनुमान है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने अपने हालिया स्टैटिस्टिक्स बुलेटिन में उच्च सार्वजनिक ऋण

प्रमुख विदेशी मुद्राओं के मुकाबले रुपए की अधीमी वृद्धि और नियमित इन्फ्लेशन का उल्लेख किया है। इस साल के लिए आर्थिक वृद्धि 3% पर रहने का अनुमान है, जो 2025 में 3.2% पर थी। हर साल 25 जून को विटिलिगो से ग्रस्त लोगों के खिलाफ भेदभाव की रोकथाम के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। इस समस्या के तहत प्रतिरोधन कमियों के चलते त्वचा का डिपिगमेंटेशन होता है और इसका प्रभाव शारीरिक से ज़्यादा मानसिक होता है, क्योंकि कई बार इससे पीड़ित लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। स्थानीय स्तर पर विटिलिगो मॉरिशस फाउंडेशन ऐसे लोगों के समर्थन के लिए कार्यरत हैं। मुख्य रूप से उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। सनातन धर्म में गायत्री जयंती का पर्व अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माँ गायत्री के प्राकट्य दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। ऐसी मान्यताएं हैं कि गायत्री माँ की आराधना से जीवन में ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। विदेश में वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक के बाद एक आए भूकंप के तेज झटकों के कारण भारी तबाही मच गई है। कम से कम 32 लोग मारे गए और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। मलबों तले दबे लोगों की तलाश जारी है। कई इमारतें ढह गई हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 की मापी गई। वहाँ आपात स्थिति की घोषणा की गई है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। शातोगुन लेन लिस्कालिये में सरसठ साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सांताबाई कुशनिया गणेश पैदाशी नाम कुशनिया और जो सांता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे मोहन गणेश के मकान चातोगुन लेन लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासेंका होंग लिस्कालिये की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो 8:11 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।

रेट्रो रिदम। 1:09 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने प्रोग्राम रेट्रो रिदम के साथ, और मुझे उम्मीद है कि ये गाने जो हैं आपका साथ दे रहे होंगे। आप जहाँ भी होंगे, चाहे आप खेत में हो, घर पे हो, किचन में हो, ड्राइव कर रहे हो, या आप कहते हैं ना कभी कभी बस कुछ नहीं कर रहे, कोने में बैठ के सोफा पे लेटे हो, या अपने बेड पर लेटे लेटे सुन रहे हो और थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल रहे हो, जहाँ पे कहते हैं ना हम 15-10 मिनट की नैप, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर इस समय आप कहीं पर लंच कर रहे हैं तो इन पुराने गानों को एंजॉय करो, क्योंकि पुराने गाने जो है ना सीधा दिल में जाके उतर जाते हैं, और उतर जाके जब लैंडिंग करते हैं ना, बस इतना ही कहते हैं कि भैया हम तो तुम्हारे साथ हैं। और यही बात है, सच बात है, आपके मैसेजेस का साथ जब मिलता है या आपके फ़ोन कॉल्स का, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं यलेश जी और जो कि इंजॉय कर रहे हैं आरएम टू रेडियो मस्ती को, और कह रहे हैं मुझे बहुत मज़ा आता है, कभी कभी तो मैं पुराने गाने सुनता हूँ और कभी कभी नए गाने सुनता हूँ, कहते हैं कि दोनों में ही मैं फुल इंजॉय करता हूँ। तो थैंक यू यलेश, इंजॉय करो। आपने बहुत ही प्यारी फोटो भेजी है पूरे लंच की, जिसमें मेरे मुंह में पानी बिल्कुल आ गया था और मैंने सोचा चलो भाई मेरा काम खत्म होने के बाद मैं खाऊंगी। तो 18th बर्थडे है आज प्रिंसेस साध्विका का, जो साध्विका रामधनी जी हैं, और जो गॉम्बे से हैं डैरन श्वेता रवि रविश

0: ट्रिशा एंड लुएशा आपादू फैमिली उन्हें विश कर रहे हैं, उनको बस इतना ही कह रहे हैं बहुत ही अच्छे बच्चे हो, 18th बर्थडे में हमेशा अपनी सारी खुशियां पूरी करो, बहुत अच्छे बन के रहो, और तुम्हारा बर्थडे में हमेशा तुम्हारे को कहते हैं ना कि सारे गिफ्ट्स वो मिलें जो तुम्हारी खुशी के हों। तो भाई हम भी यही कहेंगे, आपकी खुशी है हमारे साथ और हमारी खुशी है आपके साथ, तो आपका पूरा परिवार आपका साथ दे रहा है, तो इन्जॉय कीजिए अपना बर्थडे साध्विका, और आपने मस्ती में रहना, और जब कुछ केक कट करो तो हमें ज़रूर याद करना। थैंक यू सो मच। इस समय सुरेश शर्मा साजदा जी हैं और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और अपने बेटे को सिर्फ इतना कह रहे हैं कुछ और नहीं करना है, कोई गाने नहीं सुनने, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करो। ये सच बात है, इस समय भैया एग्जाम्स रेस चल रहे हैं, तो पेरेंट्स भी बहुत धीरे धीरे वॉल्यूम करके, जिनके बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, धीरे धीरे वॉल्यूम करके अपने रेट्रो रिदम हो या पूरे आरएम टू रेडियो मस्ती को तो सुन रहे हैं, पर बच्चों को इतना ही कह रहे हैं कि पढ़ाई साथ साथ करो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजन रघुपत जी जो कि लंदन से हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते, और हमें भी बहुत अच्छा लगता है सर आपके मैसेज आने का, हमें भी पूरी तरीके से इंतज़ार होता है आपके मैसेजेस का। तो इन्जॉय कीजिए अपने गाने और हमें बताते रहिए कौन कौन से गाने सुनने, तब तक सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में एक प्यारा सा गाना।
1: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti.

0: रेट्रो रिदम, आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में और शमशाद बेगम की आवाज़ में कजरा मोहब्बत वाला, बहुत ही प्यारा गाना सा है क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि सारी तरह के स्टाइल और जो उस जमाने में रोमांटिक मूड होता होगा शायद इसी तरीके से होता होगा। बहुत ही मस्त गाना था, पर अभी जो आने वाला गाना है इसकी डिमांड अचानक से दो लोगों ने की है। चलिए, मेरे साथ तो पहली बार हुआ है कि ये जना जी ने ये रिक्वेस्ट की है अपने पूरे परिवार को ये गाना सुनाने के लिए और कह रही है मेरी बिटिया जनिता शेष्टा अश्विनी वीना एंड यूवी कृष्णी स्वसरन फैमिली फ्लाग से जो कि ये गाना सुनाना चाहती हैं और कह रही हैं कि मुझे ये गाना ज़रूर सुनना है। और उसके बाद सीधा ही रेशमा जी जो हैं वो भी इसी मूवी का हमराही मेरे हमराही गाना सुनाना चाहती हैं और कह रही मेरी स्वीट डॉटर्स मिष्टी हिमाक्षी एंड हबी आशीष फ्रॉम रेशमा सेल्फी रिनो वाकवा से। तो क्या बात है भाई, बेटियों के लिए इतना प्यारा सा गाना, बहुत अच्छी बात है। जब माओं को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है तो पर हम ज़रूर कहेंगे आपके लिए नेक्स्ट गाना उन्हीं के लिए चलाने जा रहे हैं। बेस्ट विशेज फ्रॉम कमला रीता वीना वृंदा शारदा रेखा ब्रदर मुकेश प्रदीप सूरज राज एंड दोभा, इनको बहुत ही प्यार दे रही हैं और सीता भोला राम मॉम भगवंती जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और बस सबको ये बोल रही हैं कि अपना ख्याल रखें। इंदिरा निर्मला एंड बस वरुषा अरमोगन एंड गणेश एंड मापू से और उनके लिए भी बहुत विशेष भेज रहे हैं। ललिता जीतन जी कह रही हैं कि सब बस अपना ख्याल रखो, मौसम थोड़ा सा नासाज है और बस हम सबको यही कहेंगे खाओ पियो मस्त रहो इंजॉय करो। थैंक यू जीतन जी, यही होना चाहिए, ऐसा ही प्यार एक दूसरे में बांटते रहे। इंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गाना आपकी पसंद का जो कि दो परिवारों से है, तो हम कहेंगे खुश रहे इंजॉय कीजिए।
1: RM2 Radio Musti

का सफर हमारे अपनों के साथ एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ। दो घंटों का सुनहरा सफर इस बार मोसलमों सैतान्द्रे कम्युनिटी सेंटर में, जहां बेजितोंबो कोई राची और मोसलमों सैतान्द्रे एसोसिएशन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 26 जून दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 26 जून को दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मोसलमों सैतान्द्रे कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।

रेट्रो रिदम। 1:33 हो चुके हैं और हम सुन रहे थे तेरा जलवा तौबा। क्या बात है, किशोर कुमार की आवाज़ और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये ऐसे दो लेजेंड हैं ना, जिनकी बात करने तो कहें कि किशोर दा जब गाना गाते थे तो हमेशा ऐसे गाना गाते थे कि मतलब अगर बहुत ही सीरियस गाना गा रहे हैं, स्टूडियो के अंदर हैं और हर तरफ मतलब सैडनेस है, सब लोग आंसुओं में हैं, पर उनको पता नहीं क्या हो जाता था, अचानक से वो हंसने लग जाते थे, मुस्कुराने लग जाते थे, चीखने लग जाते थे, चिल्लाने लग जाते थे और सब चीज़ों को लाइट कर देते। ऐसे ही होता है शायद ज़िंदगी में भी, कई बार हमारी ज़िंदगी में अप एंड डाउन आते रहते हैं तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए किसी बड़ों से। तो इसलिए तो कहते हैं ना लेजेंड होते हैं, इन लोगों से कुछ सीखना चाहिए। जब ज़िंदगी बहुत ही टफ से गुजर रही हो तो थोड़ा सा हंस लो, मुस्कुरा लो, गानों को इन्जॉय कर लो और उसके बाद अपने वो काम करो जो आपको करने हैं। तो कभी भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। मोहम्मद रफ़ीक की बात करें तो वहाँ पर वो बहुत ही अलग थे कि अगर उन्हें बोला जाता था कि आपको एक प्यारा सा हंसी वाला गाना गाना है तो क्या हुआ करते थे कि एकदम से सैड से हो जाते थे और उसके बाद कहते थे कि सारा स्टूडियो में जितने भी लोग होते थे वो मोहम्मद रफ़ी को हंसाने शुरू कर देते थे, क्योंकि वो कहते थे कि जो ये इमोशंस हैं ना बड़ी मुश्किल से बनते हैं, बहुत ज़िंदगी में इमोशंस आने चाहिए हर तरह के, हंसने के, मुस्कुराने के और सैडनेस के, और अगर आपने इन चीज़ों को सीख लिया और इसमें जीना सीख लिया तो क्या बात है, फिर तो इंसान परफेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई ये गानों के साथ साथ इन्जॉय करते हैं। एक प्यारा सा गाना, एक फरमाइश आई थी, जब जब बाहर आए और फुल मुस्कुराए, उसके साथ में हम एक और हमारी एक दोस्त हैं जो कि आज 60 साल की हो चुकी हैं, कल्याणी सेतुल जी, जिनके भाई ने उनके लिए विशेष भेजी हैं और कहती हैं गीता किचरन एंड लाल माटी से, और वो 7 सिस्टर्स हैं और 2 भाई हैं और वो कह रहे हैं हमारी सिस्टर का आज बर्थडे है तो उनको लंबी उम्र मिले, हमेशा खुश रहें। साथ में अनीता जी भी जुड़ी हुई हैं फ्लिक ऑफ फ्लक से और उन्होंने भी एक तरह सा गाना मांगा है, पर उन्होंने शायद गाने का नाम थोड़ा सा हो गया, मूवी का नाम वो नहीं मुझे नजर आ रहा, तो अगर दोबारा से भेज देंगे तो बिल्कुल गाना चलाएंगे। तो एंजॉय कीजिए अपने गाने और हमेशा मुस्कुराते रहें।

0: रेट्रो रिदम।
1: 1:47 हो चुके हैं भाई। देखिए सुबह से हम लोग लगते हैं आपको खुश करने के लिए। सबसे पहले आपके साथ आई थी नीतू शाह, फिर वेदिता, फिर आ गई थी नीलमनी। बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे तीन आरजेज आपके साथ हर पल हर समय जुड़े रहते हैं। उसके बाद आ गई मैं और मेरे बाद आएंगी परी। परी का साथ आपको मिलेगा, फिर आप सुन पाएंगे मस्ती भरे वो गाने जिससे आपको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, जिससे आपके जो आने वाला आधा दिन है और बहुत थरा से कह सकते हैं मस्त होने वाला है, क्योंकि परी हमेशा ऐसे गाने चलाती जिससे भाई सारा माहौल ना थोड़ा सा लाइट हो जाता है। तो चलिए भाई, ये गाने के साथ साथ जो नेक्स्ट गाना आने वाला है ये है मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ में, जिनको पसंद किया है ललित जी ने, जो कि यूएसए से हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वेदिता जी, उसके साथ में जुड़ी हुई हैं हमारे साथ नीतीशा जी, उसके साथ में ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं विनीता जी, जो कि ग्लेन पार्क से हैं और प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं। तो भाई हम सबको बोलेंगे थैंक यू सो मच, इन्जॉय कीजिए अपने गाने।
0: Retro Rhythm
2: RM2 Radio Musti
0: RM2 Radio Musti

0: RM2 Radio Masti.
1: एक बजकर 52 मिनट हो चुके हैं. आज आपका सबका साथ मिला, फिर कुछ नए गानों के साथ मिलेंगे कल सेम टाइम पे 12 से 2. तब तक खुश रहिए और RM2 सुनते रहिए. और लास्ट सॉन्ग जिसमें आपको साथ मिलेगा किशोर दा का, रवि साहब का और मुकेश जी का. तो एंजॉय कीजिएगा लास्ट गाना. टेक केयर, कल मिलते हैं. बाय बाय.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's.
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North. South.
0: 103.5.
3: East. West.
0: 96.4.
3: Center.
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty. Feel the musty.
5: Time check, exactly 2 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. हर 25 जून को विटिलिगो से ग्रस्त लोगों के खिलाफ भेदभाव की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है. इस समस्या के तहत प्रतिरोधक कमियों के चलते त्वचा का डिपिगमेंटेशन हो जाता है और इसका प्रभाव शारीरिक से ज़्यादा मानसिक होता है, क्योंकि कई बार इससे पीड़ित लोगों को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है. स्थानीय स्तर पर विटिलिगो मॉरिशस फाउंडेशन ऐसे लोगों के समर्थन के लिए कार्यरत है. मुख्य रूप से उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं. साथ ही इस फाउंडेशन ने हाल में परिवहन मंत्रालय से विटिलिगो से पीड़ित लोगों को अपनी गाड़ी में टिंटेड शीशे लगाने की अनुमति देने की मांग की है.

0: व्यापार को बढ़ावा देना और स्थानीय महिला ठेकेदारों के कौशल का प्रदर्शन करना, ये नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल द्वारा कल आयोजित बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग एंड नेटवर्किंग इवेंट का उद्देश्य रहा। पोटवी में आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिला ठेकेदार एकत्रित हुई। उन्हें अपनी पैदावारें और सेवाएं प्रस्तुत करने और साथ ही अपने पेशेवर नेटवर्क का विस्तार करने का मौका मिला। प्रस्तुतियों के अलावा ये गतिविधि भावी सहयोग तथा विकास की नई संभावनाओं के एक संयुक्त मंच के रूप में सामने आई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप सी में आज सुबह मोरक्को का सामना हुआ आईटी के साथ, स्कोर रहा 4-2। ब्राजील की टीम ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया, जबकि ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया के बीच स्कोर रहा 1-0। चेकिया और मेक्सिको के बीच का मैच भी काफ़ी रोमांचक रहा। मेक्सिको की जीत 3-0 के स्कोर पर अभी के लिए 9 अंकों के साथ ग्रुप ए में मेक्सिको सबसे आगे है, ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड और ग्रुप सी में ब्राज़ील 7 अंकों के साथ। विदेश में वेनेजुएला की राजधानी कारकास में एक के बाद एक आए भूकंप के तेज झटकों के कारण भारी तबाही मच गई है। कम से कम 32 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मलबे तले दबे लोगों की तलाश जारी है। कई इमारतें ढह गई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 की मापी गई, वहां आपात स्थिति की घोषणा की गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: Crikey's
1: Radio Musty.
2: Radio Musty.
3: फ्रेंड्स धीमे धीमे एक बार फिर आ गए हैं इस थर्सडे में आपका वेलकम करने 2:11 मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज जहां पर बी टाउन की गर्मा गर्म अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं एंड आई डू होप दैट यू आर एंजॉयिंग हमारा प्रोग्राम जहां पर आपकी इस आफ्टरनून को हम बनाते हैं थोड़ा सा चटपटा इन अपडेट्स के साथ और लेकर आते हैं कुछ लेटेस्ट सॉन्ग्स सो उम्मीद करते हैं दर आपका आज का थर्सडे एकदम मस्त एकदम जबरदस्त बीत रहा है और इसे और भी खास बनाएंगे बिकॉज आज है थर्सडे कल आने वाले हैं फ्राइडे और उसके बाद रहेगा इंतजार फॉर द वीकेंड सो अभी के लिए तो हम कह सकते हैं दैट प्री वीकेंड मूड ऑलरेडी सेट हो रहा है और आप भी हमारा साथ दे रहे हैं सो वेल फ्रेंड्स कुछ गुड म्यूजिक होने वाला है आपके लिए राइट हियर ऑन द वेव्स ऑफ आरएम2 रेडियो मस्ती परी का साथ टिल 4 PM
0: आरएम2
2: रेडियो

0: Mikey's Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: तो वेल फ्रेंड्स, बी टाउन की अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं और आज का ये आज की आफ्टरनून इट्स अ वेरी स्पेशल बिकॉज कल रिलीज होने वाली है मच अवेटेड फिल्म वेलकम टू दी जंगल। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल, रवीना टंडन, दिशा पाटनी सहित मल्टी स्टार फिल्म वेलकम टू दी जंगल को लेकर फैंस जो है वो जबरदस्त एक्साइटेड है। वेलकम फ्रेंचाइजी की फिल्म होने के चलते फिल्म की रिलीज से पहले काफी माहौल बना हुआ है और ऐसे में फिल्म की एडवांस बुकिंग भी अब शुरू हो गई है। तो चलिए जानते हैं वेलकम टू दी जंगल ने अपनी प्री टिकट सेल में कितना कलेक्शन कर लिया है।

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार की अपकमिंग कॉमेडी फिल्म वेलकम टू दी जंगल का काफी बज देखा जा सकता है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसकी पहले दिन के लिए जमकर एडवांस बुकिंग हो रही है। इसी के साथ इसने अच्छी खासी प्री टिकट सेल्स भी कर ली है और रिलीज से पहले ही करोड़ों रुपए कमा डाले हैं। सो लेट मी टेल यू दोस्तों, इंडस्ट्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेलकम टू दी जंगल ने अभी तक 39,267 टिकट्स का सेल किया है और इसमें कुछ ब्लॉक टिकट्स भी शामिल है जिसका कलेक्शन 89.42 लाख बताया जा रहा है। और वहीं ब्लॉक टिकट्स के साथ इसकी प्री टिकट सेल की कमाई 2.74 करोड़ ऑलरेडी हो चुकी है। अभी फिल्म को रिलीज होने में एक दिन बचा है और ऐसे में प्री टिकट सेल्स और भी बढ़ेगी। और वहीं मेकर्स ने 25 जून को शाम 7:30 बजे प्रीपेड स्क्रीनिंग रखी है, यानी कि ये जो स्क्रीनिंग है वो आज रात होने वाली है और इसके लिए भी एडवांस बुकिंग हो चुकी है एज फ्रॉम 22nd of June। सो काफी बस बना हुआ है वेलकम टू दी जंगल। और मेरे लिए तो सबसे बड़ी एक्साइटमेंट की बात यही है दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम गोइंग टू सी अक्षय कुमार एंड रवीना टंडन एक साथ ऑन द बिग स्क्रीन। अब क्या होने वाली है उनकी केमिस्ट्री, क्या होने वाली है मस्ती, क्या होने वाला है धमाल इन द मूवी, इसके लिए करना है बस एक दिन का इंतजार। So that's taken from the film Welcome to the Jungle. Yell hai aapka, well दोस्तों हम आपका भी तो welcome कर रहे हैं, but this is not the jungle, ये है आपका अपना RM2 Radio Masti, जहां पर आपके लिए हम लेकर आते हैं best mix of music, beat down की updates, अभी से लेकर 4 बजे तक मैं हूं परी आपके साथ।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Mustache.

0: रेडियो मस्ती।
1: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगा, लच्छास, जोधपुरीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड अपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2 Radio Musti.

0: Talkies. Radio Musty.
1: Radio Musty.
2: सो वेल फ्रेंड्स, 2:40 हो चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. मैं हूं परी आपके साथ एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. वेल दोस्तों, आपको बता दें, बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस मशुमार करिश्मा कपूर आज अपना 52nd बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है. कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाली करिश्मा ने महज 16 साल की उम्र में बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी शुरुआत कर दी थी. अपने करियर में उन्होंने लीड रोल निभाने के अलावा सपोर्टिंग रोल्स भी निभाए और एक सपोर्टिंग रोल के लिए उन्हें की झोली में नेशनल अवार्ड भी आ गया. लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये किरदार उनसे पहले 4 एक्ट्रेसेस ने रिजेक्ट किया था और उसके बाद करिश्मा ने इस रोल को एक्सेप्ट किया. कौन सा है ये रोल, कौन सी है ये फिल्म, इसके बारे में हम बात करेंगे. सो 25th of June 1974 को करिश्मा कपूर का जन्म मुंबई में हुआ. अपनी 17th बर्थडे के 4 दिन पहले उनकी डेब्यू फिल्म

प्रेम कैदी, जी हाँ ये आई, ये रिलीज हुई और इसी से उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई इन द ईयर 1991। जिगर, उसके बाद राजा बाबू जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाली करिश्मा कपूर राजा हिंदुस्तानी से स्टार बन गई। ये फिल्म साल 1996 में आई, जबकि साल 1997 में आई फिल्म दिल तो पागल है उनकी करियर की सबसे यादगार फिल्म रही। दिल तो पागल है में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित ने अहम किरदार निभाया था और करिश्मा ने इसमें सपोर्टिंग रोल किया था। वो निशा के किरदार में थी, लेकिन उनके पास ये रोल आने से पहले चार और एक्ट्रेसेस के पास गया था। निशा का किरदार पहले जूही चावला, उसके बाद उर्मिला मातोंडकर, काजोल और फिर मनीषा कोइराला को ऑफर किया गया था और इन चारों एक्ट्रेसेस ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। करिश्मा ने इस रोल को अपनाया और उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी दिखाई और इस फिल्म के लिए उन्हें मिला नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। सो वेल, आज सेलिब्रेट कर रही हैं अपना बर्थडे, सो हमारी पूरी टीम की ओर से विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे। उनके सभी फैंस जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, दिस वन गोज आउट फॉर यू।

So well friends, a good music aapke liye aur aapke mood ko set karne ke liye. We have this beautiful indie pop. Suniti Chauhan ke fans, this one goes out for you. Unka chand, unka jo saath hai dete hue Chotu Khan. Aur is waqt aap humara saath de rahe hain. So thank you so much. Humare saath judhe hue humare sabhi listeners, wishing you all a lovely afternoon. थोड़ी ही देर में बढ़ने वाले हैं समाचारों की ओर, उसके बाद लौट कर आएंगे विद सम गुड म्यूजिक. यह है आपका अपना आरएम टू रेडियो मस्ती. इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 पीएम.

0: RM2 Radio Masti.
1: The time is brought to you by McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
2: I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee. Share the taste. Share happiness.
0: Radio Masti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
5: Time check exactly 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना. आपको नमस्कार.
6: नमस्कार परी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. 2300 से ज्यादा परिवार मॉरिशस के सोशल रजिस्टर में पंजीकृत होने वाले हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से सहायता मिलेगी. पहली जुलाई से इसके लिए योग्यता की सीमा बढ़ाई जा रही है. बजट 2026-2027 में इसका ऐलान किया गया. इसका उद्देश्य है ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करना. अभी के लिए सोशल रजिस्टर में 5200 परिवार पंजीकृत हैं. अफ्रीकी इलाके में फिनटेक की दुनिया में मॉरिशस की पहचान मजबूत करना और इसके लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाना, ये मॉरिशस नेशनल फिनटेक स्ट्रेटेजी 2026-2030 के मकसदों में शामिल है. यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका इस तकनीकी सहायता से ये दस्तावेज बनाई गई है. आज इसकी औपचारिक लॉन्चिंग की गई. व्यापार को बढ़ावा देना और स्थानीय महिला ठेकेदारों के कौशल का प्रदर्शन करना, ये नेशनल वीमेन एंटरप्रेन्योर काउंसिल द्वारा कल आयोजित बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग एंड नेटवर्किंग इवेंट का उद्देश्य रहा. पोटली में आयोजित इस बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय महिला ठेकेदार एकत्रित हुई. उन्हें अपनी पैदावारें और सेवाएं प्रस्तुत करने और साथ ही अपने पेशेवर नेटवर्क का विस्तार करने

0: खरीदने का मौका भी मिला। विदेशी समाचारों में वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक के बाद एक आए भूकंप के तेज झटकों के कारण भारी तबाही मच गई है। कम से कम 32 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मृतकों की संख्या के बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। मलबों तले दबे लोगों की तलाश जारी है। कई इमारतें ढह गई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 की मापी गई है। वहां आपात स्थिति की घोषणा की गई है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री दीपनाथ हरलुल जो शैलेश के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे मोगा फ्यूनरल पृथ्वीया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। रारोड बनमेया में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री रामदत्त कोकिल जो जीवन गाम्बो के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनकी पत्नी कमला कोकिल के मकान रारोड बनमेया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेदिन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: On NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: More music in the mix.
3: Aaj Azadi hai.
4: Bombay Talkies.
5: Radio Musti.
6: Radio Musti.

0: मस्ती।
1: सो वेल फ्रेंड्स, दैट्स योर रेडियो मस्ती, जहां पर आपका हम वार्म वेलकम कर रहे हैं। 3:18 हो गए हैं, थर्सडे आफ्टरनून, 25th of June। आई डो होप इस सर्दी वाले मौसम में आप अपना ख्याल रख रहे हैं। वैसे हम तो है यहां पर वार्म आप तक पहुंचाने के लिए विद सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, आपकी इस आफ्टरनून को हम सजा रहे हैं। मैं हूं परी आपके साथ, एंड इट्स टाइम फॉर योर बॉम्बे टॉकीज। बी टाउन की खबरें और साथ में आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस इस आवर में जरूर शामिल होंगे ऑन 5499-1294। मैं कर रही हूं आपका इंतजार, अभी के लिए टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन, लेकिन with a twist with this beautiful track. Enjoy this one.

सो वेल फ्रेंड्स, आप हमारा साथ दे रहे हैं एंड जैसे हम कहते हैं कि बॉलीवुड सितारे हम इनकी चकाचौंध देखते हैं, इनकी जो लग्जूरियस लाइफस्टाइल है वो देखते हैं, लेकिन कभी कभार ये जो सितारे हैं उनके पीछे की जो स्ट्रगल होती है, यानी कि स्टार्स बनने से पहले की जो स्ट्रगल थी और जिंदगी कैसी थी, ये शायद हम कभी नहीं देखते हैं। सो बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुनील शेट्टी ने अपने दम पर इंडस्ट्री में पहचान बनाई। बिना किसी गॉडफादर के वो इंडस्ट्री में टिके रहे और कामयाबी भी उन्होंने हासिल की। उन्हें अपनी पहली फिल्म से पहचान मिल गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बेकार एक्टर तक कहा गया और उन्हें लोगों ने इडली वड़ा बेचने की सलाह भी दी थी। बता दें कि उन दिनों सुनील शेट्टी एक रेस्टोरेंट चलाते थे और सुनील शेट्टी ने एक रेडियो शो के इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब उनकी डेब्यू फिल्म बलवान 1992 में सफल हुई, इसके बावजूद क्रिटिक ने उन्हें ताने मारे थे। सुनील शेट्टी ने बताया, जब बलवान रिलीज हुई तो ये एक ब्लॉकबस्टर थी, हालांकि एक बहुत बड़े क्रिटिक ने कहा था कि इसकी फिल्म भले ही चल गई हो, लेकिन ये एक बहुत खराब एक्टर है, इसे चलना नहीं आता और इनका शरीर काफी अकड़ा हुआ है और उन्हें अपनी दुकान में इडली वड़ा बेचने चाहिए। एक्टर ने आगे बताया कि उन्हें लगा कि वो मेरा अपमान कर रहे हैं, लेकिन इडली वड़ा ये मेरा डेली ब्रेड एंड बटर था और इससे मेरी बहनों और मुझे उन लोगों की कही बेहतर शिक्षा दी जिनके पिता इडली वड़ा ही बेचते थे और साउथ इंडियन बिजनेस भी चलाते थे। उन्हें लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अगर मैं 35 साल बाद भी इंडस्ट्री में जीवित हूँ तो ये इडली वड़ा रेस्टोरेंट और मेरे बिजनेस की वजह से ही है। मैं सब कुछ करता था, मैं टेबल साफ करता था, काउंटर पर खाना परोसता था और किचन में खड़ा रहता था, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तब भी सुनील शेट्टी था और मैं आज भी सुनील शेट्टी हूँ। सो ये तो हम जानते हैं दैट ही इज सच अ ग्राउंडेड पर्सन और इंडस्ट्री में अगर कोई बड़े दिल वाला एक्ट्रेस है तो उसमें सुनील शेट्टी का नाम जरूर शामिल होता है। जब भागम भाग रिलीज हुई थी तो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ सुनील शेट्टी ही नजर आने वाले थे, लेकिन उस टाइम पर गोविंदा उनके पास गए और उन्होंने सुनील शेट्टी से कहा कि आई नीड वर्क, मेरे पास काम नहीं है, और बिना कुछ सोचे सुनील शेट्टी ने अपना रोल गोविंदा को दे दिया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। भागम भाग में गोविंदा की कॉमिक टाइमिंग को लोग आज भी याद करते हैं एंड कह सकते हैं कि अगर बड़े दिल वाला कोई एक्टर है तो वो बस सुनील शेट्टी है एंड मोर पावर टू हिम। ऐसे हम देखते हैं कि भाई जितने वो ग्राउंडेड है उतने ही वो अमीर है और इसके बावजूद वो हमेशा जब भी हो सके लोगों की मदद जरूर करते हैं। सो दैट सुनील शेट्टी आपके लिए। 1992 में डेब्यू हुआ एंड इन 2026 जल्द ही हम उन्हें देखने वाले हैं बिग स्क्रीन पर वंस अगेन इन वेलकम टू द जंगल।

So well friends, after B-Town updates, अब टाइम है कि हम आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस आपके अपनों तक पहुंचाए. So फटाफट आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर, and that's your Bombay Talkies. अभी के लिए मूड को सेट करते हैं with this one.

0: Bombay Talkies. Radio Musti.
1: Radio Musti.
2: तो चलिए दोस्तों, वक्त हो चला है कि मैं आपसे लूँ अलविदा, लेकिन जाने से पहले जो वादा किया उसे निभाकर जाएंगे। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5499-1294 पर यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम। आप है यलेश एंड एंजॉयिंग द शो ऑन रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच यलेश। अगला गाना डेडिकेट करेंगे फॉर ऑल शाम फैमिली ऑफ सुरनाम, हमेशा साथ देने के लिए शुक्रिया। एंड साथ ही यहाँ पर रोशनी हमारा साथ दे रही हैं, आप आती है तो आ जाती है रोशनी आपके साथ साथ, थैंक यू जी। सो वेल, जलराज की आवाज़ में गानों को आपने पसंद किया, एंड थैंक यू डियर फॉर ऑलवेज सेंडिंग सच लवली ब्यूटीफुल मैसेजेस हम तक। कुमार देवीचंद एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम एंड अभी कार वॉश भी कर रहे हैं, देखिए क्या बात है। ऐसे हम लगा रहे हैं म्यूजिक का तड़का और देखते ही देखते काम भी हो जाएगा कंप्लीट। साथ ही डेडिकेट कर रहे हैं

गाना मेरे नाम, दैट्स रियली स्वीट, थैंक यू सो मच. एंड गाना आपके लिए भी मिस्टर कुमार, साथ देने के लिए शुक्रिया. ललिता जीतन एंजॉय कर रही है प्रोग्राम अपनी गर्मा गर्म हॉट हॉट कॉफी के साथ एंड एंजॉयिंग द शो फुल वॉल्यूम पर. साथ ही गाना होगा फॉर ऑल जीतन परिवार ऑफ ला वॉन्चर, बिल्कुल जी गाना होगा आपके नाम. एंड यहाँ पर किरण बेटू साथ दे रहे हैं फ्रॉम पीतो, हमारा साथ दे रहे हैं आप, एंड थैंक यू जी हमारा साथ हमेशा देने के लिए और हमेशा साथ निभाने के लिए. अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम and sending loads of good wishes. So, chaliye dosto, next track ke saath, it's time for Pari to say goodbye. Lekin gaano ka karma jari rahega. It's going to be your Raftaar vibes on the waves of RM2 Radio Masti.

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम याचना के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको याचना।
1: नमस्कार या सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। 2300 से ज्यादा परिवार मॉरिशस के सोशल रजिस्टर में पंजीकृत होने वाले हैं और उन्हें नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से सहायता मिलेगी। पहली जुलाई से इसके लिए योग्यता की सीमा बढ़ाई जा रही है। बजट 2026-2027 में इसका ऐलान किया गया। इसका उद्देश्य है ज़रूरतमंद परिवारों की मदद करना। अभी के लिए सोशल रजिस्टर में 5200 परिवार पंजीकृत हैं। अफ्रीकी इलाके में फिनटेक की दुनिया में मॉरिशस की पहचान मजबूत करना और इसके लिए लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को और आसान बनाना, ये मॉरिशस नेशनल फिनटेक स्ट्रेटजी 2026-2030 के मकसदों में शामिल है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका की तकनीकी सहायता से ये दस्तावेज बनाई गई है। आज इसकी औपचारिक लॉन्चिंग की गई। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप सी में आज सुबह मोरक्को का सामना हुआ आईटी के साथ। स्कोर रहा 4-2। ब्राजील की टीम ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया, जबकि ग्रुप ए में साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया के बीच स्कोर रहा 1-0। चेकिया और मेक्सिको के बीच का मैच भी काफी रोमांचक रहा, मेक्सिको की जीत 3-0 के स्कोर पर। अभी के लिए 9 अंकों के साथ ग्रुप ए में मेक्सिको सबसे आगे हैं, जबकि ग्रुप बी में स्विट्जरलैंड और ग्रुप सी में ब्राजील 7 अंकों के साथ।

0: और विदेश में वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक के बाद एक आए भूकंप के तेज झटकों के कारण भारी तबाही मच गई है। कम से कम 32 लोग मारे गए, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मलबों के तले दबे लोगों की तलाश जारी है, कई इमारतें ढह गई। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 की मापी गई, वहां आपात स्थिति की घोषणा की गई है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, हमें आगे दीजिए, नमस्कार।
1: RM2 Radio Musti Raftar Vibes Filmy Rides RM2

हेलो जी, नमस्ते, सभी का स्वागत है और नारम टू रेडियो मस्ती। दिस इज योर रफ्तार वाइब्स रिया के साथ है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। थर्सडे की शाम है लेकिन महसूस तो बिल्कुल फ्राइडे ईव जैसा हो रहा है, क्योंकि फ्राइडे ईव ही तो है। अभी घड़ी हमारी बता रही है कि 4:06 हुए हैं और रेडियो मस्ती पर शुरू हो गया है आपका पसंदीदा प्रोग्राम, दैट इज रफ्तार वाइब्स। सो इट्स योर फेवरेट ड्राइव टाइम शो और इसलिए हम एक एक गाना चुनकर लाते हैं खास आप सभी के नाम। इस समय क्या सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ रहा है, ऑफिसेज के लिफ्ट भर रहे हैं, पार्किंग लॉट्स खाली हो रहे हैं और स्टीयरिंग व्हील के पीछे बैठकर कई लोग घर की तरफ सफर शुरू कर चुके हैं। कुछ लोग अभी भी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने हैं, डेडलाइन पूरी कर रहे हैं, लेकिन फिक्र आप मत कीजिए, कतई मत कीजिए। अगले घंटे, वैसे एक दो घंटे

0: थे, हम बहुत ही खूबसूरत, एक दो घंटे क्यों, हम हमेशा आपके लिए बहुत ही अच्छे गाने चलाते ही रहते हैं, पर दिस फर्स्ट आवर ऑफ रफ्तार वाइब्स हम बहुत ही इंटरेस्टिंग गाने लेकर आए हैं आप सभी के नाम पर. एंड एज यू नो दैट द फर्स्ट आवर ऑफ रफ्तार वाइब्स हम चलाते हैं मूड को एनर्जेटिक फील देने वाले गाने. गाने होंगे धमाकेदार, वाइब्स होगी पॉजिटिव और मस्ती होगी फुल ऑन. तो सीट बेल्ट आप लगाइए, वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ाइए और ट्रैफिक को टेंशन नहीं, बैकग्राउंड सीनरी समझिए. मैं हूँ आपके साथ आपकी रिया एंड ये है आपका रफ्तार वाइब्स मेरे साथ ऑन आरएम टू रेडियो मस्ती. आपके डेडिकेशन, आपके मैसेजेस आप भेज सकते हैं 5499-1294.
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स आरएम टू.

0: राइट फ्रेंड्स, अगर आप भी किसी खास इंसान को सरप्राइज देना चाहते हैं या खुद के लिए कुछ ब्यूटीफुल डेकोर क्रिस्टल्स या ज्वेलरी आप देखना चाहते हैं तो लेट मी टेल यू दैट मिस्टिक वर्ल्ड लेकर आया है एक जबरदस्त गिफ्ट वाउचर आपके नाम। और ये वाउचर अगर आप जीत जाते हैं, ये है 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर, अगर आप जीत जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ें आपको मिल सकती है। जैसे हमने आपको बताया गोल्ड एंड सिल्वर ज्वेलरी वहाँ पर उपलब्ध है, डेकोर आइटम्स है, क्रिस्टल्स है, ऑथेंटिक क्रिस्टल्स वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पर जो गेम हम आपके साथ खेलेंगे, इट्स अ बॉलीवुड क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल हम लेकर आए हैं एंड जवाब भी बहुत ही आसान होगा। सो आई नो कि दैट आप फिल्में बहुत देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फिल्म ये जवानी है दीवानी में, ये फिल्म ये जवानी है दीवानी में बनी का सपना क्या था, बनी का सपना क्या था। हम आपको ऑप्शंस भी दे रहे हैं, ए अपना रेस्टोरेंट खोलना, बी सिंगर बनना, सी दुनिया घूमना और ट्रैवल शो होस्ट करना, और चार यानी कि डी इट्स पायलट बनना। हम फिर से रिपीट करते हैं द क्वेश्चन और इसके जो ऑप्शंस है, फिल्म ये जवानी है दीवानी में बनी का सपना क्या था, ए अपना रेस्टोरेंट खोलना, बी सिंगर बनना, सी दुनिया घूमना और ट्रैवल शो होस्ट करना, डी पायलट बनना। तो अगर आपको सही जवाब पता है तो पूरे नाम और पूरे पते के साथ सही जवाब भेजो 5499-1294 और आप जीत भी सकते हैं ये 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय mysticworld.mu। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2

0: राइट, अभी अभी एक गेम हमने आपसे खेला था और पूछा था दैट फिल्म ये जवानी है दीवानी में बनी का सपना क्या था, बनी का सपना क्या था। और यहाँ पर बहुत सारे सही जवाब मिले हमें, क्या कि हमने ऑप्शन भी दिए थे आपको और सही जवाब है ऑप्शन सी, दुनिया घूमना और ट्रैवल होस्ट शो करना। एंड सही जवाब यहाँ पर बहुतों ने दिए हैं, लेकिन लकी विनर तो एक ही चाहिए और लकी ड्रो के बाद हमें मिल गई है हमारी लकी विनर। सो आप है शालिना रामचरण, आप है मौलाशु से और आप जीत चुकी है। सो कंग्रेचुलेशन आपको, आपने दिया है सही जवाब और यहाँ पर आपको मिल रहा है 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय mysticworld.mu, जहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत सारे अच्छी अच्छी चीजें, जैसे कि आपको ज्वेलरीज मिल सकती है, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी और ऑथेंटिक क्रिस्टल्स भी अवेलेबल है वहाँ पर। ऑल्सो आपको होम डेकोर के आइटम्स बहुत सारे मिल जाएंगे वहाँ पर, अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं या खुद को ही आप गिफ्ट करना चाहते हैं। दैट्स अ वंडरफुल पेज जो आप फॉलो कर सकते हैं, आप उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं एंड ऑल्सो आप किसी को रिकमेंड भी कर सकते हैं जो गिफ्ट्स ढूंढ रहे हैं। सो ये सब जीत चुकी है शालिना और इसी के साथ हम आपको वंस अगेन कंग्रेचुलेट करेंगे। वैसे जो लोग नहीं जीत पाए, अब दिल छोटा ना करें, क्योंकि बारी तो आपकी भी जरूर आएगी। सो स्टे ट्यून्ड विद द रेडियो मस्ती, क्योंकि हम बार बार ऐसे गेम्स लेकर ही आते हैं आपके नाम।
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
0: OMG। वैसे शालिना, हम आपको बता दें दैट ये वाउचर अब तक बाय पोस्ट पहुंचाया जाएगा। सो फिकर करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घर पर ही रही और आपका ये वाउचर अब तक पहुंच जाएगा।

0: नशे सी चढ़ गई।
1: ट्रैफिक अपडेट, ट्रैफिक अपडेट।
2: साढ़े 4 बज रही है और अब रफ्तार वाइब्स में समय हो गया है सड़कों की खबर लेने का। अगर आप इस समय ऑफिस से घर की तरफ निकल चुके हैं या अभी स्टीयरिंग व्हील के पीछे हैं, तो ये सेगमेंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ट्रैफिक का हाल है जानना हमेशा बेहतर होता है और इसलिए हम आपको अभी ले चलते हैं सीधा हमारे रोड सेफ्टी गाइड की ओर। जी हाँ, वी हैव पीसी सुकाय जो हमारे साथ कनेक्टेड है और अभी हमें देंगी ताज़ा ट्रैफिक अपडेट्स। हेलो, गुड आफ्टरनून, बन आफ्टरनून जी आपको।
3: बन आफ्टरनून जी रिया ए बन आफ्टरनून जी आ टू लेस ऑडिटर्स। अलो, ओ निवो डे ला सर्कुलेशन ए लेटा डू ट्रैफिक रूटियर पूर सेट फिन आफ्टरनून जी पा डे प्रॉब्लम आ सिग्नालर सुर नो रूट पा डैक्सीडेंट ओ ऑब्स्ट्रक्शन सेर लेस एक्स प्रिंसिपो की पे जेन व्रेमेंट ले फ्लो डू ट्रैफिक। Et à l'heure actuelle qui m'ont fait cause avec je, c'est la sortie des bureaux. Et il y a un bon nombre de véhicules qui quittent la capitale et ça fait créer un ralentissement à la sortie sud à la hauteur du rond-point de Coda et à la sortie d'eau à la hauteur du rond-point de Rochebois et Ristère vers le nord. Ensuite, nous verrons un temps d'arrêt à la hauteur du rond-point de Réduit et Highlands vers le sud, mais le trafic reprend le flot après le pont de Houghton. Sinon, dans d'autres secteurs de l'île, pour le moment, ça roule continuellement. Voilà un peu au niveau de la circulation et l'état du trafic routier pour cette fin d'après-midi. Je souhaite tout, bonne route, bonne rentrée. Merci de votre écoute et toujours, toujours, soyez prudents au volant. Évitez l'alcool au volant et les excès de vitesse. La police pousse à le terrain pour sévir ben ce qui n'est pas respecté la loi. Sur ce, je souhaite tout, bonne route et à très bientôt pour d'autres infos.
2: धन्यवाद पीसी सुकाई। और सभी ड्राइवर्स से हम एक ही छोटी सी गुजारिश करती है कि घर पहुंचने की जल्दी तो सबको होती है, लेकिन सुरक्षित पहुंचना सबसे ज़रूरी है। सीट बेल्ट आप लगाए रखिए, फ़ोन से दूर रहिए और ट्रैफिक में थोड़ा सा सब्र ज़रूर रखिए। रफ्तार ड्राइव्स और रेडियो मस्ती आपके सफ़र में साथ है, तो मूड को लाइट रखिए और म्यूजिक

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: चलिए घर में लाते चलिए 4:40 एंड स्टूडियो में वी हैव अरविंद जो हमें बताएंगे आज की चटपटी स्पोर्ट्स खबरें उनको सुनते हैं। गुड आफ्टरनून आपको अरविंद।
4: गुड आफ्टरनून आपको। गुड आफ्टरनून रेडियो मस्ती लिसनर्स। स्पोर्ट्स बुलेटिन शुरू करने से पहले इस वर्ल्ड कप में और खासतौर पर एमबीसी प्ले के बारे में आपको ये जानकारी दे दें कि एमबीसी प्ले में आप लोग ये जो मैच है न्यू वर्ल्ड चैनल 1 यानी NW1 या फिर न्यू वर्ल्ड चैनल 4 NW4 में देख सकेंगे। ये दो चैनल हैं जहां पर ये मैच ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं और कुछ एक ही समय यानी साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कहां पर आपको ये मैच देखना है। ये एमबीसी प्ले के लिए अप्लाई होता है तो आप ध्यान दीजिए। और एमबीसी 11 पर भी एक दो मैच दिखाए जा रहे हैं, इस पर आपको ज़्यादा जानकारियाँ हम लोग देंगे। आज ग्रुप डी, ग्रुप ई और ग्रुप एफ के आखिरी राउंड के मैच खेले जाएंगे। काफ़ी टेंशन है क्वालिफाई होने के लिए या फिर बोरिया बिस्तर बांध कर जाने के लिए। आज रात 12 बजे ग्रुप ई में इक्वाडो जो अभी काफ़ी निराश कर रही है उसका आखिरी मैच होगा जर्मनी के खिलाफ। इक्वाडो उसके पास केवल एक अंक है, हर हालत में जीतना है नहीं तो वर्ल्ड कप को अलविदा कहेंगे। कहना आसान है लेकिन जर्मनी के खिलाफ काम आसान नहीं होगा। द नेशनल मैनशाफ्ट 6 अंक के साथ क्वालिफाई हो गए हैं और ये लोग चाहेंगे कि इस रफ्तार को बरकरार रखना और पहला स्थान ले लेना। उसी समय यानी रात्रि के 12 बजे एमबीसी 11 पर लाइव मैच होगा कुआसाओ और आइवरी कोस्ट के बीच। कुआसाओ इस टूर्नामेंट में पहली बार भाग ले रही हैं और एक अंक कमा चुकी हैं। द ब्लू वेव चमत्कार करना चाहते हैं आज, लेकिन उनके सामने हैं आइवरी कोस्ट के हाथी जिनको हराना आसान नहीं होगा। अभी क्वालिफिकेशन आइवरी कोस्ट तक नहीं आया है और आज जीत कर वो क्वालिफाई हो सकता है, ड्रॉ से भी काम चल सकता है। और कल सुबह 3 बजे ग्रुप एफ के मैच होंगे। जापान के पास हैं 4 अंक, वो अभी तीसरे स्थान पे हैं और उसका सामना स्वीडन से होगा और ये दोनों स्वीडन के पास 3 अंक हैं तो टकरा मुकाबला होगा। इसी ग्रुप में चुनीजिया का सामना नेदरलैंड से, नेदरलैंड्स इस ग्रुप में आगे हैं, उसके पास हैं 4 अंक। चुनीजिया ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा पाएगा लेकिन इज्जत बचाने के लिए ये आखिरी मैच जीतना चाहेगा। और सुबह 6 बजे चाय या कॉफी के साथ ग्रुप डी वाला मैच होगा। इसमें कौन क्वालिफाई होगा और कौन जाएगा घर? यूएसए तो पहले से ही क्वालिफाई है, तुर्की के पास एक भी अंक नहीं है और यूएसए अपने मैदान में खेल रहा है और इसके लिए ये मैच आसान हो सकता है। उसी समय ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाराग्वे से होगा। दोनों बराबर अंक पर हैं, 3 अंक हैं दोनों के पास। जो जीतेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा और यूएसए के साथ बेस्ट ऑफ 32 में जा सकते हैं। ये भी बता दें आपको कि इन सभी मैचों पर और कल के खेले गए मैचों पर एक खास प्रोग्राम होगा आज स्पोर्ट्स 11 पर रात्रि के 9:30 En route vers New York, ये खास कार्यक्रम होने वाला है। और इतना कुछ वर्ल्ड कप के बारे में, इधर प्रीमियर लीग के बारे में भी आपको बता दें, खिलाड़ियों का आना जाना भी अब शुरू होने लगा है क्योंकि लिवरपूल एक दो खिलाड़ियों को साइन कर रहा है लेकिन जियोमान्दे को लेकर प्रॉब्लम, क्योंकि जितने पैसे भेजे गए या फिर दिए जा रहे हैं लेप्ज़िग को उससे वो संतुष्ट नहीं है। 100 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग तक जा सकता है ये उस खिलाड़ी के लिए। फिर अन्य टीम जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड भी कुछ नए नए खिलाड़ियों को साइन करना चाहता है। एलियट एंडरसन के पीछे हैं लेकिन मैनचेस्टर सिटी इस रेस में आगे हैं और इसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड एक गोलकीपर की तलाश में भी है। तो इतना आज के मैचों के बारे में, प्रीमियर लीग के बारे में, क्रिकेट के बारे में भी बता दें आपको कि वैभव सूर्यवंशी, कैन यू इमेजिन, टीम इंडिया में उसको जगह मिली है, अभी वो आयरलैंड 2 पे हैं, इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा, आयरलैंड के खिलाफ, लेकिन उससे जो ड्रेसिंग रूम है, चेंजिंग रूम, उसमें जाना मना है। क्यों मना है? क्योंकि वो केवल 15 साल का है और बच्चों को बड़ों के ड्रेसिंग रूम में जाना मना है, ऐसा कहा जाता है, इंग्लैंड में ऐसा होता है वैसे। सो उसके लिए अलग प्रबंध किया गया है, उसके फैमिली भी उसके साथ गए हुए हैं। तो ये संडे को ये सब शुरू होगा। फिलहाल अभी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा है, तीसरा टेस्ट मैच, वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के बीच भी। और आज मैच होगा बांग्लादेश वीमेन अगेंस्ट इंडिया वीमेन, ये T20 वर्ल्ड कप है, वीमेन्स T20 वर्ल्ड कप। दोनों के पास अभी 4-4 अंक हैं, तो क्वालिफिकेशन के लिए सेमीफाइनल में जाने के लिए ये मैच निर्णायक होगा। ऑस्ट्रेलिया इस ग्रुप में पहले से ही क्वालिफाई है, उनके पास है 8 अंक 4 मैच जीतकर। भारतीय टीम एक मैच हार चुकी है, उसके पास है 4 अंक। फिर 4 अंक लेकर साउथ अफ्रीका वीमेन और बांग्लादेश वीमेन, उनके पास भी 4 अंक हैं। पाकिस्तान की टीम और नेदरलैंड्स की टीम, ये लोग पहले से ही आउट हैं। दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड की महिला टीम क्वालिफाई हो चुकी हैं फॉर द नेक्स्ट राउंड वेस्ट इंडीज के साथ शायद, लेकिन और एक मैच खेलने के बाद ही पता चलेगा। तो इतना कुछ क्रिकेट के बारे में। सो डोंट फॉरगेट द मैच आज स्पोर्ट्स 11 पर, कुरासाओ इक्वाडो वाला मैच आप लोग देख पाएंगे, और बाकी मैच इन एमबीसी ऐप जो आप लोगों ने डाउनलोड किया है और साथ साथ में अभी नहीं किया है तो आप एमबीसी आकर डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट ताकि आप लोग ये सब मैच देख पाएंगे। जस्ट टू रिमाइंड यू, ये न्यू वर्ल्ड चैनल 1 NW1 या फिर न्यू वर्ल्ड चैनल 4 पे आप लोग देख पाएंगे। सो दिस आर द लेटेस्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड।
3: थैंक यू सो मच अरविंद।
0: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेको, द फ्लो एक्सपर्ट।
1: You're listening to RM2, a radio magazine.

सफर हमारे अपनों के साथ एन एवरग्रीन आफ्टरनून सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ। दो घंटों का सुनहरा सफर इस बार मोसलमों सैतान्द्रे कम्युनिटी सेंटर में, जहां बेजितोंबो कोई राची और मोसलमों सैतान्द्रे एसोसिएशन एक साथ इस म्यूजिकल सफर को मजेदार और यादगार बनाएंगे। ऑन दिस फ्राइडे 26 जून दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइव ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन, साथ ही टिकटॉक पर फॉलो कर पाएंगे। सो भूलिएगा मत, इस शुक्रवार 26 जून को दिन के 12 बजे से लेकर 2 बजे तक मोसलमों सैतान्द्रे कम्युनिटी सेंटर में सुहाना सफर हमारे अपनों के साथ।

0: यस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, वेलकम बैक। घड़ी हमारी बता रही है कि इट्स 5:09। रफ्तार वाइब्स के सेकंड आवर में आप सभी का स्वागत है। और कुछ लोग तो अब तक घर पहुंच भी चुके हैं, शूज निकाल चुके हैं, चाय बन रही होगी और थोड़ी देर में फैमिली के साथ बातें भी शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग अभी भी ट्रैफिक में है, सिग्नल से सिग्नल तक का सफर जारी है। और आज का मौसम, उसके बारे में क्या ही कहे। मौका के आसपास आसमान में खूबसूरत इंद्रधनुष आकाशीय नजर आ रहा है, बारिश की हल्की बूंदी, ठंडी हवा। वैसे अभी तो बारिश थम सी गई है और आसमान का जो रंग है, लगता है कि ऊपर वाले ने भी थर्सडे ईव को थोड़ा स्पेशल बना दिया है। तो आज जो प्लेलिस्ट भी मूड के हिसाब से चलेगी, ना ज़्यादा फास्ट ना बहुत स्लो, बस दिल को अच्छा लगे ऐसे गाने। वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ाइए और इस खूबसूरत शाम का मजा लीजिए, क्योंकि ये है आप ही का रफ्तार वाइब्स मेरे साथ हरिया के साथ। एंड आप ये डेडिकेशंस मैसेजेस ऑन 5499-1294।
1: फूल जब मांगते हैं बरसों दुआ, तब पहाड़ों की कली खिलती है। तुम तो आई हो कहीं जन्नत से, ऐसी महबूबा जमाने में कहां मिलती है।

0: such a beautiful gana aur ye humne khas hamare sabhi listeners ke naam dedicate kiya hai and I hope ki is khoobsurat gaane ke sath aapki khoobsurat chehron par ek khoobsurat smile aa gayi hogi. So yes, hum baat kar rahe the about mausam aur humne aapko bataya that bahar humne dekha ki rainbow nazar aaya hai aur indradhanush. जी हाँ, ये इंद्रधनुष, ये रेनबो, कभी आपने सोचा है कि ये जो रेनबो है हमेशा बारिश के बाद ही क्यों नजर आता है? शायद जिंदगी भी हमें यही सिखाती है कि कभी कभी थोड़े मुश्किल पल, थोड़ी भाग दौड़ और थोड़ी थकान के बाद ही सबसे खूबसूरत नज़ारे मिलते हैं. आज अगर आप मौका के आसपास और आसमान की तरफ देख रहे हैं, बट आई डोंट नो कि अभी तक रेनबो नजर आएगा, बट अगर नजर आ रहा है तो आप भी उस रंग बिरंगे इंद्रधनुष को देख लीजिए. शायद इससे एक दो सुकून के पल मिल जाएंगे. कभी कभी नेचर हमें सबसे सुकून भरे पल दे जाते हैं. और अगर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, हमारे गाने हैं एंड ये जो गाने हम लेकर आए हैं आपके नाम, ये ज़रूर आपको खुश करके ही छोड़ेंगे. थर्सडे है आज, फ्राइडे ईव, बट इट्स अ ब्यूटिफुल मोमेंट. आप इसे ब्यूटिफुल बना सकते हैं, ना सिर्फ हम, ना सिर्फ ये गाने, ना सिर्फ ये जो पल जो बीत रहे, बट हमारी खुशी हमारे हाथों में ही होती है. तो अगर हम खुद चाहें तो खुश रह सकते हैं. खुशी क्या है कि छोटी छोटी चीज़ों में ही मिल जाती है. बड़ी बड़ी चीज़ों की ताक में होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस छोटी छोटी चीज़ों, जैसे कि ये नेक्स्ट गाना जो हम खास चुनकर लाए हैं आप सभी के नाम.
1: रफ्तार वाइब्स, फिल्मी राइड्स,
2: RM2.

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments.
1: Well, आज की फैशन एडवाइस है कि अपनी सिग्नेचर स्टाइल आप ढूंढिए. हर ट्रेंड हर किसी के लिए नहीं होता. कुछ लोग एथनिक वे में कमाल लगते हैं, कुछ लोग कैजुअल आउटफिट्स में, और कुछ की पर्सनालिटी एलिगेंट क्लासिक्स में चमकती है. पर फैशन का असली मजा तब आता है जब लोग आउटफिट से पहले आपकी पर्सनालिटी नोटिस करें. इसीलिए अपने वार्डरोब में ऐसे कलर्स, कट्स और स्टाइल्स रखिए जो आपको सबसे ज्यादा सूट करते हैं. जब आप अपनी सिग्नेचर स्टाइल पहचान लेते हैं तो तैयार होना भी आसान हो जाता है और कॉन्फिडेंस भी नेचुरली बढ़ जाता है. याद रखिए, फैशन का मतलब किसी और जैसा दिखना नहीं बल्कि अपने बेस्ट वर्जन की तरह दिखना है. सो दिस फैशन टिप ऑफ द डे वाज ब्रॉट टू यू बाय Halkari Fashion, वेयर स्टाइल मीट्स कॉन्फिडेंस.
0: Fashion tips was powered by Halkari Fashion, house of ready-made garments. RM2 Radio.

थर्सडे इवनिंग, फ्राइडे ईव है आज, आज थर्सडे खुद है और इसका एक अलग ही मजा होता है ना, क्योंकि हमें पता है कि कल फ्राइडे है एंड अब तो फ्राइडे बस कुछ ही घंटों की दूरी पर है इस समय, या लोग शायद वीकेंड की प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई मूवी सोच रहा है, कोई आउटिंग, और कोई सिर्फ देर तक सोने का प्लान बना रहा है। लेकिन आज का आज हम आपसे कहेंगे कि एक ही काम कीजिए, आप घर पहुंचते हैं एंड थोड़ा सा टाइम खुद के लिए निकालिए और थोड़ा सा आराम कीजिए, थोड़ा सा, हम बहुत ज़्यादा नहीं मांग रहे, बस थोड़ा सा, और ये आपको ही अच्छा लगेगा। वैसे वीकेंड के बारे में सोचने से पहले इस शाम को आप एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये जो पल है इस पल में जीना बहुत ही ज़रूरी है, अनिवार्य है। क्या है कि कल तो किसने देखा है, अभी तो है आप, इस मोमेंट को आप जी। सफेदे जारी है और मौसम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये जो गाने हैं हम आपके नाम डेडिकेट कर रहे हैं और आशा करती हूँ कि गाने आपको पसंद आ रहे हैं, किसी ना किसी की याद जरूर आ रही है। तो जल्दी जल्दी वीकेंड तक तो हम पहुँच ही जाएंगे, लेकिन इस खूबसूरत थर्सडे शाम का भी आप पूरा मजा लीजिए और इसी मूड के साथ चलिए सुनते हैं नेक्स्ट गाना। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, आपके मैसेजेस की ओर बढ़ेंगे। क्या है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं बहुत सारे मैसेजेस वी हैव श्याम जी हमारे साथ कनेक्टेड है और आप गाने एंजॉय कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है, गाने आप एंजॉय कीजिए। और मैसेज था फ्रॉम कुमार तपिचरण जी और हम आपके नाम, आपके पापा के नाम जरूर नेक्स्ट ट्रैक डेडिकेट करेंगे। श्याम यली श्याम आप ऐसो के नाम से और हमारे साथ कनेक्टेड है। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, आई होप आपके यहाँ भी सब ठीक ठाक है एंड यू आर एंजॉइंग द ट्रैक्स ऑफ रेडियो मस्ती हमारे साथ। ललिता जीतन जी अभी तो आप खाना बना रही है और साथ ही गाने एंजॉय कर रही है, बहुत ही कॉम्बिनेशन बढ़िया है, बहुत ही अच्छी कॉम्बिनेशन है। सो टू ऑल योर कलीग्स टीचर्स रीमासी में रोहन रवि दिशिता लता रोमी पिंकी सरिका प्रीता ललिता आपके नाम भी एज वेल हम जरूर गाना डेडिकेट करेंगे। एंड ऑल्सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा नेक्स्ट ट्रैक गोज़ आउट टू यू एज वेल और लमे जल्दी इसी के बाद आप सुन पाएंगे समाचार बुलेटिन।

0: घड़ी मिला लीजिए शाम के 6 बजे हैं। सभी को नमस्कार। शाम 6 बजे के बुलेटिन में सबका स्वागत। सबसे पहले आज की सुर्खियां। ब्रिटेन ने एक बार फिर शागो समझौते के प्रति अपना समर्थन दिया है। अटर्नी जनरल लॉर्ड हमर ने कहा कि लेबर हब पार्टी इस समझौते को पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रीय सभा में स्पष्ट किया कि मीन्स टेस्ट प्रणाली को हटा दिया गया है। विपक्ष नेता जोरेशोंगो के पीएनक्यू का जवाब दे रहे थे। आज राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पेंशन सुधार पर गठित विशेषज्ञ आयोग के सदस्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्होंने आयोग से शुरू किए गए काम को पूरा करने का अनुरोध किया। विदेश में वेनेजुएला में आए लगातार दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई। अब तक 32 लोगों की मौत। बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। केयर स्टर्मर के बिना ब्रिटेन की सरकार ने एक बार फिर शागस समझौते के लिए अपना समर्थन दिया है। ये समर्थन ब्रिटेन के अटर्नी जनरल लॉर्ड हमर ने कल जस्टिस कमेटी के सामने अपने बयान के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी शागस समझौते को पूरा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। लंदन, पोटवी और वाशिंगटन इस समझौते से जुड़े विधेयक को दोबारा संसद में पेश करने की तैयारी पर मिलकर काम कर रहे हैं। लॉर्ड हमर ने उम्मीद जताई कि आने वाले हफ्तों और महीनों में इस पूरी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच हुए शागोस डील को रुके हुए लगभग 1.5 वर्ष हो चुके। ये समझौता उस समय अटक गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका विरोध करते हुए वीटो जैसा रुख अपनाया। उस समय कई लोगों का मानना था कि इस दस्तावेज को अनिश्चित अवधि के लिए अलग रख दिया गया और इसे फिर से आगे बढ़ाने के लिए एक नई विधायी प्रक्रिया शुरू करनी होगी जिसकी कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं। इस बीच हाल ही में ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल लॉर्ड हमर ने न्याय संबंधी संसदीय समिति के सामने इस संधि पर संभावित समय सीमा के बारे में जिक्र किया।
2: I very much hope that in the coming weeks and months we're able to sign the treaty again because it's in the national interest of this country to do so because of our national security concerns and the importance of the base in that part of the world. As you know, although the United States started off supporting under President Trump the deal, there has been a change of position. We remain determined to try and get it done.
1: इस लक्ष्य को हासिल कर

0: करने के लिए संधि से संबंधित विधायी प्रक्रिया को फिर से शुरू करना होगा। इसी महीने की शुरुआत में बरतानी मंत्री स्टीफन डाउटी ने विदेश मामलों की संसदीय समिति को बताया था कि बरतानी सरकार पोर्टवी और वाशिंगटन के साथ मिलकर इस विधेयक को दोबारा संसद में प्रस्तुत करने पर काम कर रही हैं। ब्रिटेन में चल रहे राजनीतिक पुनर्गठन के बीच सरकार की इन मंशाओं ने पोर्टवी को भी सतर्क कर दिया और अब निगाहें 10 डाउनिंग स्ट्रीट की अगली पहलों पर टिकी हैं। इन घोषणाओं के अगले ही दिन शागुस समझौते के सबसे प्रबल विरोधियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इनमें पूर्व कंसर्वेटिव मंत्री प्रीति पटेल भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अटोर्नी जनरल लॉर्ड हमर की टिप्पणियों के बावजूद कंजर्वेटिव पार्टी इस शागुस समझौते का कड़ा विरोध जारी रखेगी।
1: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने आज राष्ट्रसभा में स्पष्ट किया कि मीन्स टेस्ट प्रणाली को हटा दिया गया है। वे विपक्ष नेता जुले जोंगाव के PNQ का जवाब दे रहे थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 सालों में पेंशन पर होने वाला खर्चा 5.9 बिलियन रुपये से बढ़कर 55 बिलियन रुपया हो गया है। जरा विस्तार सुनिए।
2: प्रधानमंत्री के लिए ये एक निर्विवाद तथ्य है कि वर्तमान स्वरूप में बेसिक रिटायरमेंट पेंशन BRP प्रणाली अस्थिर है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा कि पेंशन पर होने वाला खर्च वार्षिक बजट का 25% है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक आवास के लिए किए जाने वाले संयुक्त खर्च के बराबर है। पेंशन से संबंधित खर्च 2010 में 5.97 बिलियन रुपए से बढ़कर 2025-2026 में 55 बिलियन रुपए हो गया है, जिस पर सरकारी नेता ने आंकड़े प्रदान किए।
3: Without reform, it is estimated that it will reach 100 billion rupees in 2035. At the percentage of GDP, BRP expenditure has increased from 1.9% in 2010 to 8.1%. In 2025-2026. Madam Speaker, in 2015, the IMF, in an expert report, projected that by 2050, expenditure on BRP, which is, I remind the House, a non-contributory pension, would be at an unsustainable level of over 8% of GDP. Because of the irresponsible decisions taken by the last government, we have already crossed that level now. This, the dependency ratio, measured as the number of workers per pensioner above the age of 65, was fast declining. From 16 in 1962 to 4.7 in 2025, and projected to decline to 3 in 2049 and 2.5 in 2064. Because, as we know, of an aging population, this means that fewer workers are supporting more and more, fewer workers are supporting more and more retirees, which therefore place an impossible public strain on the public finances.
2: प्रधानमंत्री ने ये तर्क दिया है कि पेंशन को लेकर चिंताएं नई नहीं हैं और इस बात पर जोर दिया कि ये विषय 20 वर्षों से अधिक समय से चर्चा का केंद्र रहा है।
3: As far back in the budget speech presented to the House in 2003, by the then Prime Minister Honorable Paul Béranger, it was stated at paragraph 161, and I'm quoting: An important component of our social welfare system is the basic retirement pension, which is both non-contributory and universal. The BRP in its present form from experts will exert severe pressure on the budget. The fast aging of the population will render the BRP unsustainable. In the longer term, according to projections, the proportion of those over 60 will double in 20 years' time and triple in the next 50 years. Therefore, reform of the

0: for decisions announced in the budget relating to pension reform. It is a matter of deep regret that some people, both in this House and outside, have made totally unacceptable and disparaging personal remarks on these professionals. Many of them are laureates, former laureates, three of them laureates, economists, statisticians, actuaries. They presented their report because we need experts to look at this.
1: Dr. Naveen Ram Gulam ne visheshagyon ki samiti dwara ki gayi sifarishon ki mukhya ruprekha di.
0: First, a unified, independent pensions regulatory authority will be established to make recommendations on policy reforms. B, a central pensions administrative bureau will regroup all state-sponsored schemes into one place to digitalize and facilitate service to members and pensioners. Three, with regard to the basic retirement pension, will be renamed as state age pension as on the 1st of January 2027. A universal means test will apply individually to eligible beneficiaries based on the taxable income above a threshold of 14,000 rupees. This threshold, Madam Speaker, of 14,000 rupees, that is the World Bank relative poverty line of 50% of median income, which is 28,000 rupees in 2025. Was. Fourth, a person will be able to elect to receive the SEP from the age of 60 to 70. The pension amount will increase by 9% for each year that the benefit is deferred beyond the age of 65. The recommendation seeks to bring fairness by providing individuals with greater choice, they have a choice, regarding the timing of the benefit while improving the long-term sustainability of the pension system. From 1st of July 2027, there will be revamped mandatory national contributory retirement scheme to replace the defunct National Pensions Fund.
1: विशेषज्ञों की समिति के सदस्यों के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के संबंध में जोले जोंगा के एक सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने ऐसे मॉरिशस वासियों को चुना है जिनके पास विशेषज्ञता है. डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने ये भी कहा कि उनके खिलाफ की गई टिप्पणियों के बाद सदस्यों ने इस्तीफा देने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने उनसे ऐसा न करने के लिए कहा.
2: बजट 2026-2027 में जरूरतमंद परिवारों के लिए एक और कदम उठाया गया है. सोशल रजिस्टर ऑफ मॉरिशस में 2300 से ज़्यादा नए परिवारों को शामिल किया जाएगा ताकि वे नेशनल एम्पावरमेंट फाउंडेशन की सामाजिक सहायता का लाभ उठा सके. इसके साथ ही इस योजना का लाभ पाने के लिए तय की गई आय सीमा को भी 1 जुलाई 2026 से बढ़ाया जाएगा. इसका मकसद ज़्यादा ज़रूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाना है. मॉरिशस को अफ्रीका में एक प्रमुख फिनटेक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक नया कदम. इसी उद्देश्य से नेशनल फिनटेक स्ट्रेटेजी 2026-2030 की औपचारिक लॉन्चिंग की गई. यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका के तकनीकी सहयोग से इसे तैयार किया गया है. लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर, वेनेजुएला में आए लगातार दो शक्तिशाली भूकंपों ने भारी तबाही मचाई. अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं. जरा विस्तार इस रिपोर्ट में.
3: वेनेजुएला में आए लगातार दो शक्तिशाली भूकंपों से भारी तबाही हुई है. अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं. राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. सबसे अधिक नुकसान देश के उत्तरी हिस्से में हुआ है जहां कई इमारतें ढह गई हैं. राजधानी में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं. राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं. कई स्थानों से लोगों के मलबे मलबे में दबे होने और मदद के लिए पुकारने की खबरें सामने आ रही है। अमेरिकी वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार दोनों भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। दोनों झटके 1 मिनट से भी कम समय के अंतराल पर हुए। दूसरा भूकंप वर्ष 1900 के बाद देश में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। दोनों भूकंप जमीन की सतह के काफी करीब आए, जिससे झटके बेहद तेज महसूस किए गए और व्यापक नुकसान हुआ। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने प्रारंभ

0: अधिक आंकलन में आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या काफी बढ़ सकती है। एजेंसी ने इस भूकंप के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जो सबसे गंभीर भूकंपों के लिए जारी किया जाता है। इस बीच कई देशों ने वेनेजुएला को खोज एवं बचाव दल, चिकित्सा सहायता और राहत सामग्री भेजने की घोषणा भी की है।
1: और वर्ल्ड कप की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका ने रच दिया इतिहास। दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंतिम 16 में शानदार अंदाज में अपनी जगह पक्की कर ली है। ये यादगार जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप ए में दूसरा स्थान हासिल किया है और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप चरण की आज आखिरी रात है। अंतिम 16 में जगह बनाने की दौड़ अब भी रोमांचक मोड़ पर है। हर टीम के लिए हर अंक बेहद अहम है। कुछ टीमें अगले दौर में पहुंचने की कोशिश करेंगे तो कुछ का सफर आज रात समाप्त होगा। अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
2: पूर्व से पाए जा रहे बादल धीरे धीरे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा हमारे इलाके पर अस्थिर हवाएं की लहर बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज रात बादल घिरे रहेंगे और देश भर में बारिश होगी। कभी कभी जोरदार से सामान्य बारिश होगी, खासकर पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्रांतों पर, और बादल भी गरज सकते हैं। कुछ इलाकों में कोहरे भी छाए रहेंगे, जिसके कारण दृश्यता कम होगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, तटवर्ती इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह बरसाती मौसम रहेगा, ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। दोपहर बाद को धीरे धीरे मौसम में सुधार आएगा। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँच सकते हैं। विपरीत हवाओं के कारण जनता से रास्ते पर सावधानी बरतने की मांग की जाती है और ऊंचाइयों पर काम करने से परहेज करने की मांग की जाती है। प्रवाल रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पूर्वी और दक्षिणी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। फिर भी कल दिन के दौरान धीरे धीरे दक्षिणी लगूनों की स्थिति में सुधार आएगा। कल सुबह 7:45 सूरज उगेगा और शाम 5:40 पर सूरज ढल जाएगा।

0: देश विदेश की इन्हीं खबरों के साथ ये बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसको आप तक पहुंचाने में पूरे न्यूज विभाग और तकनीकी पर शिव का साथ रहा। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। लारुई कुवां क्यूपिप में, लारुई कुवां क्यूपिप में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्डर के श्रीपन सामी रासेन जो कुमारन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थ ही कल सुबह 9 बजे उनके मकान लारुई कुवां क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगाहा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 9 AM। जुवांस डेपिने में 26 साल की 26 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती उर्वशी राम सिंह पैदाशी नाम गुचन और जो सेशना के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद उठाई गई। रामसुंदर लेन सुल्फेरिनो नंबर 3 वाकवा में तिरपन साल के 53 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती ईश्वरी जालिम पैदाशी नाम आगाती और जो गीता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पति राजेश जालिम के मकान रामसुंदर

0: सुंदर लेन सुल्फेगिनो नंबर 3 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बालों सुल्फेगिनो नंबर 5 वाकवा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। विक्टोरिया लेन होशनुआ में 57 साल के 57 ईयर्स ओल्ड के श्री संजीव ओहिसिंकला आपादू श्री संजीव ओहिसिंकला आपादू जो संजीव के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी माँ राधिका ओहिसिंकला आपादू के मकान विक्टोरिया लेन होशनुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। 58 साल के 58 ईयर्स ओल्ड के श्री दीपनाथ हरलुल जो शैलेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे मोहा फ्यूनरल पिचित्रिविया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। चातागुन लेन लिस्कालिये में 67 साल की 67 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती संताबाई कुशनिया गणेश पैदाशी नाम कुशनिया और जो सांता के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे मोहन गणेश के मकान चातागुन लेन लिस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बासा का रोंग लिस्कालिये की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 11 AM। तमिल टेम्पल रोड लाघेमां सेंट पियर में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सरादंबल मुथिया पैदाशी नाम मुथिया और जो देवी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 9 बजे उनके बेटे सदाशिवन मुथिया सिवन के मकान तमिल टेम्पल रोड लाघेमां सेंट पियर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कॉन्स्टांस सेंट पियर की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 9 AM। ऋषि दयानंद लेन मौलाशो में 76 साल की 76 ईयर्स ओल्ड के श्री सुलेश गोकुलक जो SSR अस्पताल में पूर्व अटेंडेंट थे और जो सुलेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: रफ्तार वाइब्स फिल्मी राइड्स
2: RM2
3: Radio

शाम अब अपने पूरे रंग में है, दिन धीरे धीरे रात की तरफ बढ़ रहा है और इस समय दिल भी कुछ अलग सा सुनना चाहता है। न बहुत शोर, न बहुत तेज धड़कने, बस कुछ ऐसे गाने जो शाम के साथ खूबसूरती से बहते चले जाए। आज का ये आवर यानी कि द थर्ड आवर ऑफ रफ्तार वाइब्स, हम उन्हीं गानों के नाम चलाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। सो यस, वी हैव गॉट द ब्यूटीफुल ट्रैक्स। यहाँ पर एक एक गाना हम चुनकर लाए हैं आप सभी के नाम। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान अभी हम लाते हैं और दिल को एक प्यारा सा सुकून देते हैं। बहुत सारे सॉफ्ट और सूदिंग गाने चुनकर लाए हैं, तो चाहे आप घर पर हो या बाहर हो, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, बस हमारे साथ कनेक्टेड रहिए एंड नेक्स्ट ट्रैक आप एंजॉय करते रहिए। जो लोग किचन से साथ निभा रहे हैं, आप को स्पेशल हेलो। क्या है कि खाना बनाते समय गानों का साथ मिल जाए तो बात ही कुछ अलग होती है। एंड जो लोग ऑलरेडी डिनर ले रहे हैं, आपको हम शुभ आहार बनावेची कहते हैं। खाना बहुत ही ज़रूरी है, खाने से ही तो हमें स्फूर्ति मिलती है। लेकिन ये जो नाइट का खाना होता है, डिनर टाइम होता है, कुछ लाइट आप ज़रूर ले सकते हैं। और अगर कुछ बढ़िया बन रहा है और आप सोच रहे कि आज तो जमकर खाना पड़ेगा, तो याद रखें कि खाने और सोने के बीच मध्य आप 4 घंटे का फासला ज़रूर रखें। एंड अगर आप चाहे तो नाइट वॉक पर निकल सकते हैं। और अगर नाइट वॉक पर निकल नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप

0: घर पर ही थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, इट्स गुड फॉर द हेल्थ. सो यस, सो लेट्स हियर द नेक्स्ट गाना. बहुत ही खूबसूरत गाना हम लेकर आए हैं नेक्स्ट, एंड हम डेडिकेट करेंगे आप सभी के नाम जो लोग काम कर रहे हैं कैंटीन्स में, काम कर रहे हैं बाहर, सभी पुलिस इंस्पेक्टर, सभी अस्पताल में नाइट ड्यूटीज कर रहे हैं, आप सभी को बहुत सारा प्यार एंड गुड विशेस ऑन दिस ब्यूटीफुल थर्सडे इवनिंग. दैट्स मी, आपकी रिया आपके साथ, एंड आप सुन रहे हैं रफ्तार वाइब्स ऑन RM2 रेडियो मस्ती.
1: RM2
2: रेडियो मस्ती.

0: दिन के हर हिस्से की अपनी एक आवाज होती है। आई एम श्योर कि आपको पता है, सुबह उम्मीदों की आवाज होती है, दोपहर जिम्मेदारियों की, और शाम थोड़ी खामोश होती है। लेकिन ये खामोशी खाली नहीं होती, इसमें पूरे दिन की कहानियां छपी होती है। कुछ पूरे हुए सपने, कुछ अधूरे इरादे, कुछ मुस्कुराहटे और कुछ यादें। शायद इसलिए शाम के गाने दिल को इतने करीब लगते हैं, क्योंकि वो हमसे बातें नहीं करते, वो हमारी बात समझते हैं। तो चलिए नेक्स्ट गाना कुछ इसी प्रकार है, जो जरूर आपको समझेगा।
1: RM2 Radio

एनवेल इसी गाने के साथ इस टाइम फॉर मी टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. आशा करती हूँ कि तीन घंटों का ये सफ़र, ये म्यूजिकल सफ़र आपको पसंद आया. और जाने से पहले बहुत सारा प्यार छोड़कर जाती हूँ. मेरे बाद आपको मिलेगा दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज. सो बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज.

0: अगर आप जानना चाहते हैं कि प्यार क्या है तो हमसे ना पूछें, क्योंकि हर किसी का डेफिनेशन ऑफ लव सेम नहीं होता है. अभी सेम नहीं होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कैसे शख्स से प्यार करते हैं. अगर आपको लगता है कि लव हर्ट्स, तो इसका मतलब यही है कि आप गलत इंसान से प्यार करते हैं. और अगर आपको लगता है कि प्यार से ज़िंदगी और भी खूबसूरत बन जाती है, हसीन बन जाती है, इसका मतलब आपने सही इंसान से प्यार किया है. इट्स ऑलवेज लाइक दिस कि आपका जो डेफिनेशन ऑफ लव होता है, जो फीलिंग्स आप बाहर निकालते हैं लव को डिस्क्राइब करने के लिए, वो हमेशा डिपेंड करेगा ऑन द पर्सन यू लव. लेकिन हमेशा हम कहते हैं ना कि प्यार का एक ही डेफिनेशन होता है, वो ये है कि प्यार प्यार होता है. चाहे इसको कोई भी नाम दे दो, बस ये ज़िंदगी में आता है कुछ अच्छे चेंजेस के लिए. वेल उतने ही प्यार से हम साथ देने के लिए आ चुके हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर दिव्या का साथ है इन योर इवनिंग लाउंज टिल 9 PM. सो चलिए यहाँ पर आपके मैसेजेस का हम एज यूजुअल वेलकम करेंगे ऑन 5499-1294. और साथ में एज यूजुअल लाइन खुली हुई है अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं ऑन 4028235-4235 पर हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं. बट एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग यूजुअल कॉलर्स हैं हमसे बात करते हैं, आज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप थोड़ा बहुत दूसरों को मौका दें. और वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम दोज लिसनर्स जो हमसे पहली बार के लिए बात करना चाहते हैं. तो चलिए डायल कीजिए द मैजिकल नंबर दैट इज़ 5499-1294 फॉर योर मैसेजेस और हमसे बात करने के लिए ऑन 4028235-4235.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: वेल फ्रेंड्स, शाम के 7:17 हो चुके हैं और चलिए यहाँ पर हमारे प्यारे से अंतिश जी ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड, एंड आई एम श्योर कि आपके मैसेजेस हम तक ज़रूर पहुँच रहे होंगे. जस्ट टू टेल यू कि अभी के लिए जो मैसेंजर पर शायद आप मैसेजेस भेज रहे हैं उनको देखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आजकल, और रीज़न आपको थोड़ी देर में हम ज़रूर आपको बताएंगे. चलिए थैंक यू सो मच अंतिश हमारा साथ देने के लिए. एंड यहाँ पर नाम तो आपने वाह क्या स्पेलिंग लिखा है आपने, पढ़कर बहुत ही मज़ा आ गया मुझे. थैंक यू सो मच. एंड यहाँ पर हमारी प्यारी सी टीना जी, नमस्ते आपको भी, गुड इवनिंग. एंजॉइंग द शो ऑन दिस रोमांटिक वेदर. यस, बिल्कुल, नॉर्थ में भी बारिश हो रही है और शायद आपके यहाँ भी बारिश हो रही है. इट्स रेनिंग आउटसाइड एंड हैविंग गर्मा गर्म डिनर विद फैमिली. एंड नेक्स्ट कहना जाएगा फॉर हबी जान, आपके बच्चे हैं, टू लव्ड वंस इंक्लूडिंग मेरी फैमिली के लिए. दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. आपको भी शुभरात्रि, लव यू टू. एंड नेक्स्ट कहना गुजार स्पेशली आपके नाम. हेलो जी, आज आपकी बहन का बर्थडे है और कहते हैं कि कैन यू प्लीज़ पुट फूलों का तारों का फॉर हर. हम ट्राई करेंगे. फिलहाल के लिए अभी के लिए चल रहा है रोमांटिक शो चिल 9 PM. उनका नाम है वैष्णवी. एंड भाई विशेष की तरफ से आपको ये मैसेज आया है. एंड यहाँ पर आप कहते हैं, हेलो दी, हाउ आर यू, प्लीज़ प्ले द सॉन्ग तुम्हारे सिवा. ओ माय गॉड, आई थिंक आई हैव दिस इन माय प्लेलिस्ट. दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस. चलिए इनको हम सबसे ऊपर डाल देते हैं ताकि हमारी बात करने के बाद यू कैन एन्जॉय दिस वन. सो The next one goes out for Habi Ravi, driving right now from wifey Karish. And ये ज़रूर गाना हम चलाएंगे क्योंकि ये already हमारे playlist में शामिल थी. तो चलिए कुछ और खूबसूरत messages की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन इन गानों के बाद.
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Masti.

0: हाय दिल है कि मानता नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर दिल को प्यार है ना तो एक ना एक दिन उसको मानना ही पड़ेगा। और आप भी मानेंगे कि प्यार में कितनी ताकत होती है, प्यार में कितना दम होता है। वेल 7:35 हो चुके हैं, दिव्या का साथ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहां पर नॉन स्टॉप ऐसे ही कूल म्यूज़िक चला रही हैं। और वैसे जब हल्की हल्की बारिश होती है और हमें मौका मिलता है कुछ और रोमांटिक गीत चलाने के लिए, वाई नॉट, क्योंकि इसको कहते हैं सोने पे सुहागा वाला सिचुएशन, जहाँ पर रोमांटिक वेदर भी है, बाहर ठंड है और ऐसे में आपको मौका मिल रहा है, शायद इस वक्त आप गर्मा गर्म चाय भी पी रहे होंगे। यस, टी लवर्स के लिए कोई भी वक्त स्पेसिफिक नहीं होता है, जब मन चाहे आप बस चाय की चुस्कियों को एंजॉय करते रहते हैं। चलिए यहाँ पर अगला गाना खास तौर से हम दरकेज करेंगे स्पेशली आपके लिए। आप कहती हैं, हाय दिव्या, ओ माय गॉड, आई वाज टाइपिंग टू रिक्वेस्ट द सॉन्ग चाहत फ्रॉम मूवी ब्लड मनी, थैंक यू सो मच फॉर योर सिलेक्शन। थैंक यू सो मच जी हमारा साथ देने के लिए। एंड चलिए, मुझे लगता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि इसको टेलीपैथी कहते हैं, और मे बी आपका फीलिंग्स आज के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। और आई गेस एक बार फिर से आपका जो सिलेक्शन है हमारे प्लेलिस्ट के साथ कोइंसाइड हो चुका है। एंड चलिए यहाँ पर कुछ और खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम। और यहाँ पर आप कहती हैं, हेलो डियर, मैं हूँ पूजा बीसे सर, मेरे पापा और मेरे पति काम कर रहे हैं और एक गाना उनके नाम और उनको विश करना चाहती हैं आप, बों कुहाज। तो चलिए उनको बहुत ही प्यार से बों कुहाज, और ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा। साथ में यहाँ पर अगला गाना हम ख़ास तौर से डेडिकेट करेंगे आदर्श के नाम। आपने कहा है, अ लिटल बर्थडे विश टू समवन एंजॉयिंग अ ब्यूटिफुल इवनिंग इन स्विट्जरलैंड, मे योर लाइफ ऑलवेज फील लाइक अ टाइमलेस 90s बॉलीवुड मेलोडी फुल ऑफ हैप्पीनेस, ब्यूटिफुल मेमोरीज एंड रीजंस टू स्माइल फ्रॉम अ सीक्रेट एडमायर ऑफ गुड म्यूजिक एंड गुड वाइब्स। क्या बात है, आपने तो अपना नाम भी नहीं बताया, लेकिन हमें शायद आपका नाम तो पता चल गया है। एंड बट चलिए, विल कीप इट डिस्क्रीट। एंड ये जो आपने अपने एडमायरर के लिए मैसेज भेजा है, टू योर स्पेशल समवन, आई जस्ट होप कि वो कहीं से भी कनेक्टेड हैं तो उनको ये मैसेज मिल जाए और उन तक ये मैसेज पहुंच जाए। चलिए, दिव्या का साथ इन योर इवनिंग लाउंज, और ऐसे ही हमारा साथ देते रहिएगा ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती।
1: इवनिंग लाउंज, इवनिंग लाउंज, RM2 रेडियो मस्ती।
2: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
3: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
2: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
3: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

प्यार में कभी कुछ लोग एक जिंदगी की सीख बनकर रह जाते हैं और प्यार में कुछ लोग उम्र भर तक आपका साथ निभाने के लिए ही आपका साथी बन जाता है या फिर आपकी साथी बन जाती हैं। चलिए यहाँ पर प्यार में हमेशा सबके साथ सही ही हो ऐसे हम दुआ करते हैं। इट्स ऑलरेडी 7:49 आपके कुछ और मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे एंड यहाँ पर गिरीश अरलोल ने हमें मैसेज भेजा है। कुमार सानू का एक गाना आपको सुनना है एंड इट्स डेडिकेटेड फॉर रोशनी जी एंड पॉसिबल हुआ तो हम कोई भी कुमार सानू का एक गाना चलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर किसी ने कहा है नमस्ते रिया जी, रिया नहीं बल्कि दिव्या साथ दे रही है। रिया बिल्कुल अभी के लिए तो घर चली गई है लेकिन आपका मैसेज उन तक ज़रूर पहुँचाएँगे। जब कोई बात बिगड़ जाए

0: फ्रॉम संगीत फॉर संगीता जी एंड उनकी फैमिली के लिए हम ट्राई करेंगे. फिलहाल के लिए कुछ और खूबसूरत गीतों के साथ हम और खूबसूरत गानों से आपके मन को बहलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे. एंड आई जस्ट होप कि इस रोमांटिक वेदर में आप हर एक रोमांटिक गीत को बेझिझक होकर बस महसूस कर रहे हैं, और जब आप ऐसे गाने सुन रहे हैं तो आपके फीलिंग्स को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी के नाम तो डोंट हेजिटेट. सेंड योर मैसेजेस ऑन द मैजिकल नंबर दैट इज 5499-1294. और आप हमसे बात भी कर सकते हैं ऑन 402-8035-402-8035.
1: Evening Lounge.
2: Evening Lounge.
3: RM2.
1: Radio Musti.

0: वेल 8:08 हो चुके हैं थर्सडे इवनिंग 25 जून ये महीना भी बस दो तीन दिनों में ख़त्म हो ही जाएगा टाइम इज़ फ्लाइंग टाइम इज़ रनिंग टाइम इज़ फ्लीटिंग और ये हम इसका एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि ये साल कितनी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है और देखते ही देखते विल बी वेलकमिंग द 7th मंथ ऑफ दिस ईयर एंड जुलाई महीना देखते ही देखते आ ही जाएगा तो चलिए टू ऑल दोज जिनके कुछ एंडिवेज हैं प्रोजेक्ट्स हैं आई जस्ट होप कि आपका काम टाइम पे ख़त्म हो जाए और जितने भी सारे आपने सपने देखे होंगे या फिर इस साल का कोई ना कोई ख़ास रेजोल्यूशन आपने रखा ही होगा आई जस्ट होप कि सारे पूरे हो जाए चलिए कहते हैं ना कि शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहो तो इसको मिलाने के लिए पूरी कायनात इसमें जुड़ जाती है All you need is a pure and a clear intention और वैसे नीयत हमेशा अच्छी होनी चाहिए खुद के लिए और दूसरों के लिए भी चलिए यहाँ पर पास आओ ना हमने आपको इतना पास बुलाया कि हमें फ़ोन कॉल्स आने लग चुके हैं तो चलिए डोंट फॉरगेट आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ऑन 4028235 4028235 पर आपके फ़ोन कॉल्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं फिलहाल के लिए अनीता जी लाइन पर हैं चलिए उनसे हम बात करेंगे नमस्ते अनीता जी
1: नमस्ते आपको आप कैसे हो
0: बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसी हैं
1: हम ठीक है थोड़ी सी ठंडी है
0: बहुत बहुत ठंड है एक्चुअली
1: बहुत ठंडी
0: यस और

0: से अनीता जी, आप फ्लिकॉफ्लाक रहती है राइट?
1: हाँ।
0: और वहाँ पर बात करें तो गर्मियों में तो हद से ज्यादा गर्मी होती है, एंड आई एम वेरी श्योर कि अभी तो हद से ज्यादा सर्दी भी है, तो चलिए आई जस्ट होप कि आप अपनी तरफ से पूरा प्रिकॉशन ले रही है।
1: और थोड़ी सी बीमार है।
0: ओ नो नो नो नो नो, ये तो हम बिल्कुल नहीं सुनना चाहते थे।
1: थोड़ी थोड़ी सी बीमार है, ठंडी है, फिर से गर्म होती है,
0: क्लाइमेट की वजह से। हाँ, सीजनल फ्लू तो सबको हो ही जाता है। तो अनीता जी, जितना हो सके आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, मुझे पता है कि कभी कभी अंदर का बचपना जाग उठता है और कोल्ड ड्रिंक्स को देखने के बाद रहा नहीं जाता है, या फिर हम सर्दियों में आइसक्रीम खा ही लेते हैं जैसे मैंने आज खाया है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। आप डोंट फॉलो माई फूड स्टेप्स, मुझे पता है ये गलत बात है।
1: कभी कभी आपको अच्छी लगती है थोड़ी सी आइसक्रीम खाने को के लिए।
0: हाँ, इसको विंटर स्टंट कहते हैं। मूवीज में जिस तरीके से बॉडी डबल होता है ना, जो बाकी के लोग होते हैं हमारे हीरोज के लिए स्टंट करते हैं, रिस्क लेते हैं, और इसी तरीके से चलिए लाइफ में थोड़ा बहुत रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन डोंट टेक आवर हेल्थ फॉर ग्रांटेड। और एक बार अच्छी बात होती है लेकिन बार बार नहीं। तो चलिए अनीता जी, आपको हम विश करेंगे अ क्विक रिकवरी, एंड काढ़ा पिएगा और जितना हो सके अदरक वाली चाय जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेगा।
1: हाँ, मैं पीती हूँ अदरक वाली चाय। सुबह सुबह को मैं गर्म चाय में थोड़ी सी कहती है अदरक वाली,
0: हाँ,
1: मैं डाल देती हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लगती है पीने के लिए।
0: वेरी नाइस। तो चलिए अनीता जी, आप किन के नाम डेडिकेट करेंगी अगला गाना और कौन सा गाना सुनेंगी?
1: तो हमारी बहन है सुबह, अनुराधा और लक्ष्मी के लिए।
0: हाँ जी,
1: आपके लिए, आपकी सभी टीम के लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: हाँ, फिल्म है हम है राही प्यार के।
0: हाँ,
1: वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो।
0: ओह हो हो हो, क्या बात है क्या बात है। तो चलिए ये गाना जरूर आपके लिए हम डेडिकेट करेंगे।
1: आपको बोन कुआल।
0: थैंक यू सो मच अनीता जी। थैंक यू, बाय बाय। तो चलिए गई थी हमारी प्यारी सी अनीता जी, एंड चलिए लाइन पर कोई थी या फिर कोई था जो हमें फ़ोन कर रहे थे, एंड एट द सेम टाइम हम अनीता जी से बात कर रहे थे। तो चलिए अगर पॉसिबल हुआ तो हम आप ज़रूर एक बार फिर से हमें फ़ोन करिएगा ऑन 4028035 कट सौ देखा तो मैथन सैंक पर।
2: Evening Lounge,
3: Evening Lounge,
4: RM2
2: Radio Masti।

0: अगर इस गाने को सुनने के बाद आप भी विश कर रही हैं और होप कर रही हैं कि काश आपकी भी जिंदगी में जादू है वो, और इस आपको हम बता देते हैं कि जादू तो है ही, क्योंकि यहाँ पर गाने का असर चल रहा है और इसका असर आप तक पड़े, ये तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा बहुत प्यार में पढ़ ही जाए। 8:32 ऑलरेडी एंड चल के यहाँ पर लाइन पर कोई है जो हमसे बात करना चाहती हैं। हेलो प्रीति, नमस्कार।
1: नमस्ते,
0: कैसी हो आप प्रीति?
1: अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल ठीक ठाक। और बताइए, आपने खाना खा लिया?
1: जी नहीं, अभी नहीं।
0: आपको पता चल गया ना कि ये मेरी फेवरेट लाइन है और सबसे मैं यही पूछती रहती हूँ। चलिए प्रीति, मुझे बताइए। हाँ हाँ, मैंने खाना खा लिया और एक्चुअली थोड़ी देर पहले अनीता जी भी बोल रही थी कि उनकी तरफ से क्यों नहीं खाया, तो मैंने उनको यही बोला कि मेरी वजन बढ़ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो प्रीति, आप मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं?
1: आमोगी से।
0: आमोगी से? ओह माय गॉड, वहाँ पे तो बहुत ही ठंड हो रही होगी ना?
1: बहुत ठंड है, बारिश हो रही है।
0: बारिश भी हो रही है? ओ माय गॉड, तब तो अच्छे अच्छे गाने आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है ना सुनने के लिए।
1: जी,
0: मज़ेदार वेदर और मज़ेदार गाने। चलिए यहाँ पर प्रीति, आप मुझे बताइए कि किसके नाम जोड़ना चाहेंगी नेक्स्ट गाने में?
1: अपनी मम्मी के लिए। अपने बेटे योहान।
0: हाँ जी।
1: नानी के लिए।
0: और
1: सभी सुनने वाले के लिए, आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच प्रीति। और कोई पसंद का गाना?
1: सिर्फ तुम।
0: हाँ जी,
1: सिर्फ तुम।
0: सिर्फ तुम, उसमें कौन
1: सा? दिलबर। दिलबर,
0: दिलबर। ओके, ये थोड़ा सा इतना भी रोमांटिक गाना नहीं है। अगर आपके दिमाग में कोई और भी रोमांटिक गाना है तो आप इसका रिक्वेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि ये थोड़ा हमारे शो में अभी के लिए सुटेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो आप मुझे कोई
1: संजय कपूर की,
0: संजय कपूर का कोई भी गाना, तो चलिए सिर्फ तुम का टाइटल ट्रैक चलाते हैं आपके लिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच प्रीति, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय
1: बाय।
0: तो चलिए, ये थी हमारी प्यारी सी प्रीति जी, एंड उन्होंने कहा कि अगर दिल

0: का गाना हो जाए फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुम, लेकिन अभी के लिए थोड़ा इम्पॉसिबल है क्योंकि इतना भी मतलब रोमांटिक गाना नहीं है, थोड़ा फास्ट भी है। तो चलिए हम ये गाना ख़ास तौर से आप तमाम लोगों के लिए डेडिकेट करेंगे और उन लोगों के लिए भी जो इस वक्त कनेक्टेड हैं हमारे साथ।
1: Evening Lounge,
2: Evening Lounge,
3: RM2,
1: Radio Masti।

0: ऑलराइट फ्रेंड्स, 8:47 ऑलरेडी एंड चलिए कुछ ही देर पहले हम सुनील जी से भी बात कर रहे थे और जैसे आपने सुना कि उन्होंने गाना डेडिकेट किया है स्पेशली अपने परिवार के लिए. चलिए कुछ और मैसेजेस की ओर हम ज़रूर बढ़ेंगे. और यहाँ पर हमारी प्यारी सी माला जी हैं ऑफ सुल्फेनो, आप कहती हैं कि सब कुछ होते हुए फिर भी मन उदास रहता है, लेकिन आपकी प्रोग्राम सुनने के बाद कुछ तो है. दैट्स यू दिव्या जी. थैंक यू सो मच माला जी. एंड आप लोग इतना प्यार देते हैं तो आई फील रियली ऑनर्ड एंड आई फील टच्ड. और चलिए उम्मीद करते हैं कि बाकी के गाने भी आप ऐसे ही एंजॉय करते रहेंगे. एंड चलिए वी ऑल्सो हैव भावना राम प्रसाद. आप हैं लव ऑन चुएस से, कहती हैं कि प्ले रोमांटिक सॉन्ग फॉर माई हबी एक लव. या दैट्स अ वेरी वंडरफुल नेम एंड यू जस्ट वॉन्ट टू टेल हिम दैट यू लव हिम सो मच. तो चलिए भावना, आई जस्ट होप कि ये स्पेशल मैसेज आपके हबी एक लव या तक ज़रूर पहुँच रहा है या फिर पहुँच चुका है. तो चलिए अगला गाना उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त प्यार में डूबे हुए हैं और प्यार की खातिर अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बयां करना चाहते हैं, डर रहे हैं, तो बिल्कुल आप डरिए नहीं, क्योंकि प्यार से डरा नहीं जाता है, प्यार से प्यार किया जाता है. तो चलिए कुछ और प्यार के एहसास को बढ़ावा देने के लिए सम ऑफ आवर ब्यूटीफुल गाने आप लोगों तक हम पहुँचाते रहेंगे टिल 9 PM.
1: Evening Lounge.
2: RM2.
1: Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Musti. आठ बजकर 55 मिनट हो चुके हैं और चलिए इसी खूबसूरत गीत के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू एंड चलिए थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन जिन्होंने टाइम निकालकर हमें फ़ोन किया एंड थैंक यू सो मच प्रीति जी, थैंक यू सो मच अनीता जी, आप लोगों ने वक्त निकाल के हमें याद किया, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ कुछ लोगों के फ़ोन कॉल्स हम उठा नहीं पाए क्योंकि एट द सेम टाइम हम दूसरे कॉल्स में थे और एंड में वी गॉट टू टॉक टू मिस्टर सुनील ऑफ त्रियुले जिनका फ़ोन आया और उन्होंने डेडिकेट किया द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर वाइफ शालिनी। तो चलिए आपसे भी बात करके अच्छा लगा एंड एक दिन आपकी वाइफ से ज़रूर हम मिलना चाहेंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करती हैं। तो चलिए एक ना एक दिन आपकी वाइफ से ज़रूर मुलाकात करेंगे, बहुत कुछ है आपके वाइफ के साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए इसी प्यार भरे फीलिंग्स के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं एक बार फिर से आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। कल सेम टाइम मुलाकात होगी 7 से लेकर 9 बजे तक, लेकिन एक अलग ही मूड के साथ बिकॉज कल इट्स फ्राइडे। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बाय बाय।

लवली पीपल विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग. प्यार भरा नमस्कार. नीतू का प्रणाम स्वीकार करें. कैसे हैं आप? ठीक ठाक. दिन कैसा रहा? अच्छे से बीता? वेल, यही हम कामना करते हैं. और अब आपकी रात्रि को और मजेदार बनाने के लिए आई एम विद यू टिल मिडनाइट. एंड ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ विद द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक मूड को ऐसे ही टकाटक बनाते रहेंगे इस सर्दी के मौसम में. तो चलिए, इस सुहाने सफर में आपका स्वागत है. इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स.

दिस इज सुहाना सफर। जिंदगी वाकई में एक खूबसूरत सफर है, और जब इस सफर में संगीत साथ हो तो हर मोड़ यादगार बन जाता है। कभी किसी लंबी सड़क पर चलते हुए जब पसंदीदा गीत कानों में गूंजता है तो मंजिल से ज्यादा सफर प्यारा लगने लगता है। संगीत सफर को सिर्फ छोटा नहीं करता, बल्कि उसे यादों का एक खजाना बना देता है। हर सुर और हर धुन हमें नए एहसासों से रूबरू कराती है।

मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि रास्ते की खूबसूरती महसूस करने के लिए होते हैं। और जब इन रास्तों पर मधुर संगीत का साथ मिल जाए तो हर पल एक कहानी सा बन जाता है। कभी पुराने गीत बचपन की यादें ताज़ा कर देते हैं तो कभी नए गीत भविष्य फ्यूचर के सपने सजा देते हैं। यही तो है संगीत और सफर का।

में से सुबह की ठंडी हवा, खुला आसमान और बैकग्राउंड में बजता कोई सुहाना गीत, इससे ज्यादा खूबसूरत सफर और क्या हो सकता है। संगीत दिल को सुकून देता है और सफर को रूहानी बनाता है। हर गीत के साथ लगता है जैसे कुदरत भी अपनी एक अलग ही धुन सुना रही हो।

थैंक यू सो मच हमारे हम सफर बनने के लिए। और सफर चाहे पहाड़ों का हो, समंदर के किनारे का हो, या फिर शहर की भीड़ भरी सड़कों का, संगीत हर जगह अपनी रंगत बिखेर देता है। गीत सफर के साथ ही बन जाते हैं और हर नजारे को और भी खास बना देते हैं। कुछ ऐसे गीत भी होते हैं जो सालों बाद भी हमें उस सफर की याद दिला देते हैं। That's why हमेशा कहती हूँ, old is gold, क्योंकि सोने की चमक

और कुछ ऐसे अनजाने मोड आ जाते हैं, कभी खुशियाँ मिलती हैं, कभी चुनौतियाँ, लेकिन जब दिल में संगीत बसा हो ना तो हर मुश्किल आसान लगती है। संगीत हमें हौसला देता है और याद दिलाता है कि सफर कितना भी कठिन क्यों ना हो, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना ही जिंदगी है।

रात के आप हमारे हम सफर बने हुए हैं। इट्स योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती। थैंक यू सो मच। वैसे ट्रेन की खिड़की से बाहर गुजरते खेत, पेड़ और गांव देखते हुए जब कोई मधुर गीत सुनाई देता है तो लगता है जैसे प्रकृति भी उस गीत के साथ गुनगुना रही हो। वैसे रात को मेट्रो तो चलती नहीं है, लेकिन हाँ अगर फिल्में देखे तो कई बार कई सीन्स ऐसे होते हैं जब ट्रेन चल पड़ी है और लंबे सफर पर निकल चुकी है। कितना मजा आता है ना। सफर और संगीत का ये मेल दिल को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है जहाँ सिर्फ सुकून और

really hope इन गानों के साथ आपको भी बहुत खुशी मिल रही है In your late night grooves with Neetu And कुछ गाने सिर्फ गीत नहीं होते हैं दोस्त बल्कि सफर के हम

सफर हो जाते हैं। वो हमारे साथ हंसते हैं, रोते हैं और यादों के पन्नों को सजाते हैं। जब भी वो धुन फिर से सुनाई देती है, पूरा सफर आंखों के सामने एक फिल्म की तरह ही चलने लगता है।

खूबसूरत सफर की असली पहचान उसकी मंजिल नहीं बल्कि उस दौरान जिए गए लम्हे होते हैं और उन लम्हों को यादगार बनाने में संगीत का बहुत बड़ा योगदान होता है। हर सुर दिल के किसी कोने को छू लेता है और सफर को और भी रंगीन बना देता है।

0: कभी किसी शाम ढलते सूरज के साथ गाड़ी में सफर करते हुए रोमांटिक गीत सुनना एक ऐसा एहसास है जिसे शब्दों में बयां करना वेरी डिफिकल्ट। ऐसे पल हमें जिंदगी की असली खूबसूरती का एहसास कराते हैं और दिल को सुकून से भर देते हैं।
1: लेट नाइट ग्रूव्स,
2: RM2, रेडियो मस्ती।

गीत नहीं जज्बात। जब दोनों साथ मिल जाते हैं तो हर पल एक उत्सव बन जाता है। हर नजारा और हर धुन दिल पर अपनी अमीट छाप छोड़ जाती है।

रैली होप आप ही इस सफर को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सफर और संगीत दोनों ही जिंदगी को बेहतर बनाना सिखाते हैं। सफर हमें नए रास्ते दिखाता है और

ready in the last hour till midnight in your late night grooves, my dost. वैसे रात का सफर और हल्की सी बारिश के साथ बजता कोई मधुर गीत और ऊपर से सर्दी का मौसम, ओहो, दिल को एक अजीब सी खुशी देता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो और हर बूंद संगीत की ताल पर नाच रही हो। ये लम्हे जिंदगी के सबसे अनमोल लम्हों में शामिल हो जाते हैं।

इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे सफर होते हैं जो हमेशा याद रहते हैं और उन सफरों के साथ कुछ खास गीत भी जुड़े होते हैं। जैसे ही वो गीत दोबारा सुनाई देता है, दिल फिर से उसी सफर में लौट जाता है और चेहरे पर मुस्कान, बिग स्माइल आ जाती है।

0: चाहिए।
1: माय डियर फ्रेंड, संगीत सफर को सिर्फ मनोरंजन नहीं देता बल्कि उसमें जान भर देता है। हर गीत एक नई ऊर्जा देता है और हर धुन एक नया उत्साह। इसीलिए चाहे सफर कितना भी लंबा क्यों न हो, अच्छे गीत के साथ वो कभी थकाना

वाला नहीं लगता। खूबसूरत सफर और बेहतरीन संगीत दोनों मिलकर जिंदगी को एक अनमोल तोहफा बना देते हैं। जब रास्ते सुंदर हो और गीत दिल के करीब, तो हर पल एक नई कहानी लिखता है। जिंदगी का असली मजा भी शायद इसी में है कि हम सफर का आनंद लें, गीतों को महसूस करें और हर लम्हों को दिल से जी लें। ठीक है, बाय बाय, शुभ रात्रि।